आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में

0: तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृवंदना से।

समूह स्वर में सुमित्रा नंदन पंत की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत सूरदास की रचना।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब सुनिए नंदनी शरण और हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत।

अंजलि जैन के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश के स्वर में ये शब्द रचना।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए जैन ग्रंथ ज्ञानार्वव से पाठ।
1: अहिंसैव जगन्माता हिंसैवानंद पद्धति अहिंसैव गति साध्वी श्रीरहिंसैव शाश्वती। अहिंसा ही संपूर्ण विश्व की माता है। अहिंसा का मार्ग वह मार्ग है जो शाश्वत सुख तक पहुंचाता है। अहिंसा ही उत्तम सदगति है और अहिंसा ही ऐसी लक्ष्मी है जो कभी नष्ट नहीं होती। अहिंसैव शिवम सूते दत्ते च त्रिदिवश्रियम् अहिंसैव हितं कुर्यात् व्यसनानि निरस्यति। अहिंसा से ही शिव पद की परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा के आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है और अहिंसा ही एक ऐसा आचरण है जिससे सब प्रकार के आपत्तियों से मनुष्य अपने को रक्षित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। तपस्रुत यमज्ञान ध्यान दानादि कर्मणाम सत्यशील व्रतादीनाम अहिंसा जननी मता। तप ज्ञान संयम ध्यान दान जितने भी सत्कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं उन सब के मूल में अहिंसा ही विद्यमान है। बिना अहिंसा के कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो सकता, ये भाव है। अभयम् यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीम् अनन्दिताम् पश्यात्म सदृशं विश्वं जीवलोके चराचरम्। हे प्राणी, तू प्राणियों को अभय प्रदान कर, उनका संरक्षण कर, सबके साथ निष्कपट होकर मित्रता रख, संपूर्ण विश्व को, इसमें रहने वाले प्राणियों को अपने समान देख, यही अहिंसा का आचरण है। अहिंसा व्रत सिद्ध्यर्थम यम जातम जिनैर्मतम नारोहति पराम कोटिम तदेवा सत्य दूषितम। दुनिया में जितने भी व्रत हैं वे सब अहिंसा की सिद्धि के लिए ही हैं। इन व्रतों में सत्य व्रत की तो बड़ी महत्ता गाई हुई है। सत्य व्रत के अभाव में अहिंसा व्रत की पूर्णता कभी संभव नहीं हो सकती। सुनृतम करुणाक्रांतम अविरुद्धम अनाकुलम अग्राम्यम गौरवाश्लिष्टम वचः शास्त्रे प्रशस्यते। जो वचन सत्य होने के साथ साथ निर्दयता से युक्त न हो, विरोध और आकुलता पैदा करने वाला न हो, सभ्यता और शिष्टता से भरपूर हो और गौरवपूर्ण हो, ऐसे ही वचन की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मौनमेव हितं पुंसाम सस्वत सर्वार्थ सिद्धये वचो वाति प्रियं तथ्यं सर्वसत्वोपकार्यत। ऐसे तो सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मौन रखना ही ठीक होता है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को अत्यंत प्रिय लगे और वह यथार्थ होने के साथ साथ सभी प्राणियों की उपकारक हो। धन्यास्ते हृदये येषां उदीर्णः करुणां बुधिः वाग्वीचि संचयोल्लासैर् निर्वापयति देहिनः। जिनके हृदय में दया का समुद्र हिलोरें लेता हो, जिनके वचन रूपी तरंगों से प्राणियों को शांति पहुंचती हो, ऐसे महापुरुष ही इस संसार में धन्य हैं।
0: धन्य धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे जैन ग्रंथ ज्ञानार्वव से पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान
2: एपिसोड 172।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं और धन्य हैं वे पर्वत वन गांव और ठौर जहाँ ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर वाणी जयराम का था और आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए डिजिटल खेती स्मार्ट खेती विषय पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे द्वारा दी गई जानकारी।
1: विभिन्न तकनीक आज के समय में उपलब्ध हैं जिसमें उत्पादन को बढ़ाया जाता है, लागत को कम कर सकते हैं और किसान अपने आय को वृद्धि कर सकते हैं। इसमें विशेष करके मोबाइल एप्लीकेशन, सेंसर, ड्रोन, GPS, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जिसको कहते हैं, रिमोट सेंसिंग और विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट का तकनीक का उपयोग करके यह डिजिटल एग्रीकल्चर किया जाता है। आज के समय में डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों को मौसम की जानकारी देना, बाजार भाव, रोग पहचान, सिंचाई प्रबंधन, फसल की निगरानी में इत्यादि में सहायता प्रदान करती है। डिजिटल एग्रीकल्चर के प्रमुख घटक प्रिसीजन फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेत के प्रत्येक भाग की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाता है। इससे संसाधनों की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, लागत में कमी आती है और पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। दूसरा तकनीक है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग फसल निरीक्षण, कीटनाशक छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण और रोग इत्यादि पहचान में किया जाता है। इस समय की बचत होती है, श्रम की लागत में कमी आती है, कीट जो है प्रभावित होते हैं वहां पर सटीक छिड़काव किया जा सकता है और फसल की निगरानी भी आसानी से हो सकती है। अगला तकनीक है सेंसर आधारित, खासतौर पर मिट्टी की नमी, तापमान, pH और पोषक तत्व इत्यादि की जानकारी सेंसर द्वारा प्राप्त की जाती है। इससे यह लाभ है कि सही समय पर सिंचाई करना, उर्वरक की संतुलित उपयोग करना और बेहतर उत्पादन प्राप्त करना। अगला तकनीक है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल इत्यादि का उपयोग करके किसान अपने फसल की उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं। इसमें सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं, जैसे किसान सुविधा एप्लीकेशन, PM किसान, ई-नाम, पूसा कृषि इत्यादि एप्लीकेशन को किसान उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं। इससे मौसम का पूर्वानुमान से लगाया जा सकता है, बाजार भाव इत्यादि

0: संबंधी पता लगाया जा सकता है, सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार के कीट रोग की समस्या को। अगला डिजिटल एग्रीकल्चर में घटक है इसका स्मार्ट इरिगेशन अथवा स्मार्ट कृषि प्रणाली। यह एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पानी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जाती है। इसके लाभ यह है कि जल संरक्षण, बिजली की बचत करना, उत्पादन में वृद्धि होना। अगला तकनीक है रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस का उपयोग करना। उपग्रह अथवा जीआईएस तकनीक द्वारा भूमि, जल, फसल और मौसम की जानकारी निगरानी की जाती है। इससे यह लाभ है कि बड़े क्षेत्र का विश्लेषण, फसल स्वास्थ्य की पहचान करना, प्राकृतिक की पूर्व चेतावनी इत्यादि किसानों को मिल जाती है। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह तकनीक को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पहल किए गए हैं। पहला है डिजिटल इंडिया मिशन, दूसरा है एग्री स्टैक, इसमें किसानों को डिजिटल रूप से डाटाबेस तैयार किया जाता है। तीसरा है ई नाम में किसानों को बाजार का जो भाव है वो पता लगाया जा सकता है और ऑनलाइन मंडी से किसान जुड़ भी सकते हैं। चौथा घटक है इसका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें डिजिटल के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डिजिटलीकरण के कृषि में उपयोग करने से विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होना, लागत में कमी होना, जल एवं उर्वरक की बचत होना, फसल में जो रोग और कीट इत्यादि की शीघ्र पहचान करना, बेहतर बाजार संपर्क करना, किसानों की आय में वृद्धि होना और पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ना। इसके विभिन्न चुनौतियाँ भी हैं किसान भाइयों, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी होती है, कई जगह मोबाइल की नेटवर्क के भी टावर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण किसान इसको आसानी से उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, तकनीकी ज्ञान का अभाव, बहुत सारे घटक इसमें अंग्रेजी भाषा में होने के कारण किसान समझ नहीं पाते और थोड़ा जानकारी का अभाव भी हो जाता है। डिजिटल कृषि उपयोग करने से प्रारंभिक लागत है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण किसान भी इसको उपयोग करने में थोड़ा असक्षम हो पाते हैं। छोटे किसानों का जो पहुंच है ये सीमित होने के कारण भी डिजिटल एग्रीकल्चर को उपयोग नहीं कर पाना भी एक चुनौती है। और अंतिम चुनौती यह है किसान भाइयों की प्रशिक्षण की कमी होना। कृषि विज्ञान केंद्र इत्यादि द्वारा अगर प्रशिक्षण प्रदान की जाती है तो किसान इसको आसानी से उपयोग भी कर सकते। मुख्य महत्व डिजिटल एग्रीकल्चर का पारंपरिक खेती से हटकर नए तरीके से आधुनिक खेती इसमें हम लोग कर सकते हैं, जिसमें फसल की उत्पादकता बढ़ना, बाजार तक सीधे पहुँच प्राप्त करना और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक तकनीक है, ड्रोन, सेंसर, मोबाइल एप्लीकेशन, इसका उपयोग किया जाता है इसमें।
1: कृषि चर्चा में डिजिटल खेती, स्मार्ट खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में रात 10 बजे सुनिएगा विवेक सोनार का बांसुरी वादन और रात 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर पेश करेंगे 7:05 पर और 7:10 पर देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिएगा आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ला से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। 8:30 पर बच्चों के कार्यक्रम किसले में आज बच्चों की डायरी का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। क्रम इन्हें भी जाने में प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरनाक क्यों, इस विषय पर वार्ताकार होंगी अनीमा श्रीवास्तव। साथ ही होंगे प्रेरक प्रसंग और बाल गीत। कार्यक्रम खेल संसार में 9:00 आप सुनेंगे साप्ताहिक खेल समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे धर्मदीप डोंगरे।

0: जिगरी, ये नाटक आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। कहानीकार श्रीमती निर्मला अग्रवाल, रूपांतरकार श्रीजीत कौशिक और निर्देशक होंगे सुदर्शन कुमार। दिन के 11:05 पर समय होगा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का। आप मन के गीत दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। क्रम सेहत की बातें में प्रसव के समय समस्या, कारण और निदान विषय पर डॉक्टर विनीता ध्रुवे से होगी भेंटवार्ता। साथ ही होंगे गीत संगीत और चर्चा। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आजकल का विषय होगा लक्ष्य निर्धारण और उसे हासिल करने की रणनीति। आज मेरी बारी है, मैं आज आप सुनेंगे हिमल पांडे को। साथ ही होंगे नए तराने। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर आज होगी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की चिट्ठी। आलेख विनायक नागवंशी का होगा। शाम 6:30 पर कानून की बात में जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ सेंद्र से होगी भेंटवार्ता। प्रस्तुति आकाशवाणी रायपुर की होगी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशों वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसङ्ख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिशृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीय यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयार्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम

0: से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

तमाम सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। और आज मैं हूं आपके साथ दीपा।

श्रोताओं, एक और सुकून भरी रविवार की सुबह, गर्मियों की छुट्टियां, अपनों का साथ, सुबह का समा, मीठी मीठी बातें और रंग बिरंगी तितली की तरह उड़ता आजाद ये मन।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। और श्रोताओं, अब समय है हमारे विशेष कार्यक्रम का। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ला से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है दीपक खटवार।

0: जून 1936, 9 दशक पूरे होने जा रहे हैं इस तारीख को जब भारत में रेडियो प्रसारण को ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला। बीते 90 सालों में इस नाम के साथ कई काम जुड़े उपलब्धियों के, कई नाम जुड़े कीर्तिमानों के, आकाशवाणी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाने वालों ने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन की आवाज को आवाम तक पहुंचाया, जिनकी सृजन यात्रा को यादगार बनाया उन्हें प्राप्त पुरस्कारों ने। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम मिलने जा रहे हैं आकाशवाणी की सृजन यात्रा के एक ऐसे ही पथिक से। आप हैं आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ल। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आपका भी धन्यवाद जो आपने याद किया।
0: समीर जी, अगर हम रेडियो से आपके जुड़ाव की बात करें तो आकाशवाणी में आपके आगमन के पूर्व आपके जीवन में रेडियो का आगमन किस तरह से हुआ?
1: बात बहुत पुरानी है, संभवतः 1972 और वो बरसात के दिन, और हमारे पिताजी एक छोटा सा रेडियो खरीद के घर आए, शाम को 7:30 बजा होगा, और जैसे ही उन्होंने रेडियो चालू किया उससे पहली आवाज़ जो निकल कर आई, आज भी वो गीत मेरे कानों में गूंजता है, वो गीत था डुआ डुआ पानी को कई काटा।
0: क्या बात।
1: गंगाबाई गेडाम जी का गाया हुआ ये गीत, और बस वहाँ से एक लंबी यात्रा शुरू हुई सुनने की, और बस रेडियो से एक चुपके से जैसे उम्र भर का साथ हो जाता है।
0: 1972 में जैसे कि आपने बताया कि आपकी उम्र बहुत कम थी, तो उसके बाद जब आपने होश संभाला तो एक उम्र ये भी होती है ना कि अपने करियर के लिए हम किसी राह के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि आपको करियर के लिए आकाशवाणी को ही चुनना है?
1: आकस्मिक हुई ये सब घटनाएं दीपक, रोजी रोटी की तलाश, और इस संदर्भ में यहाँ से उत्तर प्रदेश लखनऊ होते हुए दिल्ली होते हुए मैं मुंबई पहुँच गया, और एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवा की होती है, जो शायद सबसे बड़ी थी उस समय, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन हम छोटी जगह से गए थे तो बम्बई की चका जो आकर्षित करती थी, और आपको याद होगा कि उस समय दूरदर्शन का नया नया चलन चला हुआ था, और ख़ासकर एशियाड के बाद जो दिल्ली का एशियाड हुआ था, तो उसमें जो विज्ञापन आते थे मुझे बड़ा आकर्षित करते थे, तो मुझे लगता था कौन बनाता होगा ये विज्ञापन। और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान हम शाम को फाइल लेके निकल जाया करते थे, अचानक मेरी निगाह उस बड़े से बोर्ड पर पड़ी जिस पर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, और मैं बरबस अंदर चला गया, और वहाँ जाकर मैंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं भी आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ। तो पहले तो वहाँ बैठी जो महिला अधिकारी थी उन्होंने ध्यान से देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा, कितनी उम्र है तुम्हारी? तो मैंने कहा 21 साल। तो बोले, अगर आपको विज्ञापन एजेंसी से जुड़ना है तो आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, पहली आपकी भाषा, एक मातृभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, आपको भावनात्मक पक्ष किसी भी वस्तु का जो होता है उसके बारे में सोच आपकी होनी चाहिए, और तीसरी ये कि आपको ऑडियो मीडियम का अनुभव होना चाहिए। तो मैंने पूछा ऑडियो मीडियम क्या होता है? उन्होंने कहा रेडियो। तो मैंने कहा रेडियो क्यों, टेलीविजन क्यों नहीं? तो बोले इसलिए क्योंकि रेडियो में आप कोई चीज़ दिखा नहीं सकते, हर चीज़ आपको ध्वनि प्रभाव और आवाज़ से प्रस्तुत करना होगा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। बस उस सूत्र को लेकर मैं वापस आ गया, और ये कहा जाए कि किस्मत ने वापस रायपुर में जब लाया, तो चूंकि मैंने मार्केटिंग की ट्रेनिंग की हुई थी तो मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी की मार्केटिंग का मौका मिला, तो उसमें होता यह था कि जो भी वस्तु आती थी कहीं डिलीवर करने के लिए, तो हमारे तो कुरियर बॉय ना जाके मार्केटिंग के लिए मैं जाया करता था कि इसको डिलीवर भी कर दूंगा और मार्केटिंग भी करूंगा। उस बीच श्री लक्ष्मण चोपड़ा के नाम से एक पैकेट आया, जो आकाशवाणी रायपुर में काम करते थे उनके नाम से उनको डिलीवर करना था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यहाँ का माहौल देखा, बचपन की वो सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई मेरी इच्छा जागृत हो गई। एक तरफ बैठे हुए थे लक्ष्मण चोपड़ा जी, और एक तरफ बैठे थे कमल शर्मा जो मेरे पहले गुरु रहे, बस उनसे मेल जोल का सिलसिला चला और धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से मैं परीक्षा देकर उसमें सफल हुआ और यहाँ पर आकाशवाणी में मेरी पदस्थापना हो गई।
0: ये किस सन की बात थी जब आप आकाशवाणी में पदस्थ हुए?
1: ये 1991 की बात है।
0: आकाशवाणी रायपुर
1: जी।
0: समीर जी, 1991 में आकाशवाणी रायपुर से एक प्रसारण अधिशासी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई
1: जी,
0: और उसके बाद एक सफर जो चल पड़ा तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस सफर में केवल आकाशवाणी रायपुर ही शामिल रहा या अन्य केंद्र भी रहे?
1: दीपक, आकाशवाणी रायपुर से मैंने शुरुआत की। उसके बाद यहाँ करीब 7-8 साल रहने के बाद 1997 में मेरी पदस्थापना या कहे स्थानांतरण बिलासपुर के लिए हुआ। बिलासपुर एक छोटा स्टेशन था, FM स्टेशन था। वहाँ भी अपनी चुनौतियाँ थी, सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें थी। फिर 2 साल बाद मैं यहाँ वापस आ गया, लेकिन उसके बाद 2005 में फिर मेरा स्थानांतरण अंबिकापुर के लिए हुआ और ये स्थानांतरण लगभग 4-4.5 साल तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद वापस आकर यहीं पर रायपुर में फिर अपने, ये कहा जाए कि अपने करियर के आखिरी जो वर्ष थे मैंने बिताया और यहीं से सेवानिवृत्त हुआ।
0: इन स्टेशनों में रहते हुए समीर जी, आपके पास

0: कि जिस ऊंचाई पर कमल शर्मा जी ने युवाणी को पहुंचाया है, अगर मैं उसको मेंटेन भी कर लूं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैंने प्रयास किया और उसमें कहां तक सफल हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये था कि उस जमाने में रीना शर्मा नाम की एक कॉम्पियर हुआ करती थी, बड़ी प्रतिभाशाली। उन्होंने जब युवाणी से मेरी विदाई हुई संजय पांडे के आने के बाद, तो उन्होंने उस जगह पर यह कहा था कि समीर भैया, कमल भाई की कमी आपने खलने नहीं दी, और उसको मैं एक बड़ी प्रशस्ति के रूप में मानता हूँ। चुनौतियाँ छोटी बड़ी बहुत सी आईं, लेकिन मुख्य रूप से शुरुआती दौर में जो चुनौतियाँ आती हैं वो सचमुच आपको कुछ सिखा कर जाती हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी एक।
1: समीर जी, आप कार्यक्रमों के निर्माण से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। अगर हम कार्यक्रमों के निर्माण की बात करें या प्रतिभागिता की बात करें, तो वे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको याद आते हैं?
0: कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़ने की जहां तक बात है, तो सबसे पहले मुझे वो तमाम बड़े बड़े महान प्रसारक याद आते हैं जिनकी मदद से या जिनके मार्गदर्शन में मैंने कार्यक्रम निर्माण सीखा। और मैं बड़ी श्रद्धा से नाम लेना चाहता हूँ श्री किशन गंगेले जी का, श्री लाल राम कुमार सिंह जी का, श्री मिर्जा मसूद जी का। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जैसे किशन गंगेले जी, इनको प्यार से हम दादा कहा करते थे। सबसे पहले नाटक का पहला बीज मेरे अंदर उन्होंने रोपित किया और उसको पल्लवित पुष्पित किया श्री लाल राम कुमार सिंह ने। और डायरेक्शन और इन सब चीज़ों की पहली जो पाठशाला थी वो मिर्जा भाई से सीखने को मिला। उसके अलावा प्रसारण से संबंधित जो छोटी मोटी बारीकियाँ होती थी, जो चुनौतियाँ होती थी, उसमें अगर मैं श्रद्धा से और एक दो नाम लेना चाहूँ, तो उसमें श्रीमती कल्पना यादव का नाम याद आता है, श्रीमती सुषमा गांगुली का नाम याद आता है, कि कर्तव्यस्थ कक्ष में काम करते हुए इन लोगों का सानिध्य बड़ा मिला, बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। और बस इन्हीं सब भावनाओं के साथ और इन सब का निचोड़ अंत में, जो शुरू से आखिरी तक मेरे साथ एक हमकदम बन के रहा, मार्गदर्शक के रूप में, बड़े भाई के रूप में, और चुनौतीपूर्ण समय में किस तरह से अपने नजरिए के साथ कार्यक्रम को कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो परम श्रद्धेय मेरे कमल भैया, कमल शर्मा जी का। एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं दीपक जो मुझे याद आती हैं। मीटिंग में स्टेशन डायरेक्टर महोदय हुआ करते थे श्री कुलकर्णी जी। कुलकर्णी साहब ने कहा, एक कोई शेर पकड़े हैं यहाँ पर, वो नंदन वन में रखे हैं, वो बहुत चोटिल हो गए हैं। तो कमल भाई ने कहा, सर एक इंटरव्यू कर लेते हैं शेर का। तो उन्होंने बड़े सीरियसली कहा, ठीक है कमल, आज आप इंटरव्यू करिए, शाम को मैं सुनूंगा। मैं सुन के घबरा गया, मैं तो सीखने के लिए उन्हीं के साथ रहता था। दीपक आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उस जगह पे पहुंचे, मैं भी उनके साथ था वहां पर। अब चूंकि वो चोटिल था शेर, तो वो अलग अलग तरीके से दहाड़ता था, कभी बिल्ली की तरह मिमियाता था, अलग अलग तरीके से उसकी दहाड़ कमल शर्मा जी ने करीब 2 घंटे बड़ी पेशेंस के साथ रिकॉर्ड किया। फिर उसको जो शिकारी पकड़ के लाया था, उससे छोटा सा एक इंटरव्यू किया, छोटे छोटे सवाल। अब उन्होंने जो बताया था और शेर की दहाड़, इन दोनों को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चनेयर बनाया, प्रश्नावली बनाई, और उस दहाड़ को वो जो शिकारी थे उनकी कही गई बातों के साथ मिलाकर उन्होंने एक पूरा का पूरा एक ऐसा कार्यक्रम 10 मिनट का बनाया, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे शेर से वो बात कर रहे हैं। और उसकी टाइटल थी, एक साक्षात्कार वनराज से।
1: क्या बात।
0: एक छोटा सा उदाहरण उसमें प्रश्न का बताता हूँ। अच्छा, आप तो हैं इस बड़े से जंगल के राजा, तो जब बाहरी कोई आदमी आता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहरी आदमी आपके घर में आकर उसमें पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है? तो शेर उस समय जो गुस्से से दहाड़ता है, वो आवाज उन्होंने मिक्स की।
1: जी।
0: अच्छा, ये आपको ये रहते हुए चोट कैसे लग गई? ये तो बहुत दर्द होता होगा इसमें। तो बिल्कुल बिल्ली की तरह मिमियाने वाली आवाज उसमें मिक्स की। इस तरह से पूरा का पूरा इंटरव्यू और शाम को सुना गया, बहुत पसंद किया गया। इस तरह से हम लोगों ने सीखना आरंभ किया था।
1: समीर जी, जिन कार्यक्रमों को आपने एक अलग सोच के साथ बनाया, लीक से हटकर बनाया, विषय भी बिल्कुल लीक से हटकर थे, और उन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर के आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार भी मिले, अब हम चाहेंगे कि उन कार्यक्रमों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: वार्षिक पुरस्कार आकाशवाणी का जो होता है, वो बहुत ही, ये कहा जाए कि प्रेस्टिजियस एक अवार्ड होता है। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेशन, 300-350 स्टेशन से कार्यक्रम वहाँ पहुँचते हैं, और अलग अलग श्रेणियों में उनको पुरस्कृत किया जाता है। आम लीक से हट के अलग कुछ ऐसी सोच अगर आपकी है, तभी आप उसमें दखल दे सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। और इसका बीज सबसे पहले मेरे अंदर बोया, मैं श्रद्धा से नाम लेना चाहूँगा, श्री चंद्रमणि बेसेकर जी का, जो युवाणी में रहते हुए मेरे कार्यक्रम अधिशासी हुआ करते थे, और वो बहुत अच्छे पेंटर

0: रखे। तो ये कहा जाता है दीपक कि रचनात्मकता किसी को सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आप मेरा विश्वास करिए कि रचनात्मकता के बीज उन्होंने मेरे अंदर बोए, और उनके मार्गदर्शन में या उनके नेतृत्व में पहला पुरस्कार हम लोगों को 1992 में मिला था
1: जी,
0: और वो था नूपुर क्रंदन करके, नृत्य पेशा महिलाओं के ऊपर एक रूपक था, और वो चीज अंदर दबी छुपी थी हमारे। बाद में तो इस दिशा में काम करते हुए करीब 5 या 6 और पुरस्कार मैंने प्राप्त किया राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सबसे ज्यादा संतोष मुझे मिला वो था कि इनोवेटिव कैटेगरी एक होती है, अभिनव श्रेणी बिल्कुल अलग, और नवाचारी श्रेणी कहा जा सकता है जिसको, उसमें आपको रूपक बना के भेजना था। तो मैंने एक रूपक बनाया था जिसका टाइटल था मैं कुछ नहीं करती। घर में काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें और गृहणियां होती हैं, वो लोग संभवतः दुनिया का सबसे महान कार्य करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनसे पूछो कि आप क्या करती हैं, तो बहुत ही मासूमियत से वो कहेंगी मैं कुछ नहीं करती। और बस इसी विषय पर, इसी बिंदु पर केंद्रित वो कार्यक्रम था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था।
1: क्या बात।
0: और उसके बाद फिर एक नाटक पानी की कमी पर, पानी की कमी से आज से मतलब ये कहा जाए कि 50-60 साल बाद पानी नहीं होगा तब कैसे होगा, तो उस पर एक नाटक था, उसको पुरस्कार मिला। उसके बाद एक महिलाओं का समूह था जो नशा मुक्ति अभियान, और उस पर एक मतलब रायपुर के एक सबब इलाके में नारंगी गैंग के नाम से एक कार्यक्रम बनाया गया था, उसको पुरस्कार मिला था। उसके बाद दामिनी एक कार्यक्रम था युवाणी कैटेगरी में। दामिनी एक ऐसी बच्ची है जिसके बचपन से दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन अपनी जिद और कुछ करने की ललक के साथ वो बच्ची आगे बढ़ रही थी, और उसने एक मकाम हासिल किया अपने जीवन में, तो उसके जीवन पर केंद्रित यह कार्यक्रम था। और इसमें सबसे मज़ेदार बात दीपक ये थी कि जो लेखक थे वो मुझे समय नहीं दे पा रहे थे इस रूपक को लिखने के लिए, तो मैंने कहा चलो चुनौती स्वीकार किया जाए, एक नया नवाचारी तरीका इसमें अपनाया जाए, हम इस कार्यक्रम को बिना आलेख के बनाएंगे। और वास्तव में बिना आलेख के उस कार्यक्रम को हमने बनाया, और संभवतः वही चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर जो सुनने वाले थे उनको अपील की, और उसको भी पुरस्कार मिला। उसके बाद आखिरी पुरस्कार एक हम लोगों ने चौपाल या जो ग्रामीण कार्यक्रम होता है उसमें मोर संग चलोरे के नाम से बनाया था, जो पद्मश्री फुलबासन देवी जी जो हैं हमारी, उनके जीवन पर और कृतित्व पर केंद्रित था, और उसको भी पुरस्कार मिला था।
1: समीर शुक्ल जी आकाशवाणी में लंबे समय तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समर्पित रहे। जब समीर शुक्ल आकाशवाणी के कैंपस से बाहर जाते हैं, अपने परिवार के बीच, समाज के बीच, तब लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके साथ रही हैं, किस तरह का नजरिया रहा है, क्योंकि आप रेडियो से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं।
0: ये कहा जाए कि ये आवाज का माध्यम है, और जैसा मेरे पुराने बड़े वरिष्ठ रहे हैं जिन्होंने मुझे रेडियो में और आवाज की दुनिया में काम करने की प्रेरणा दी और सिखाया, वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, हर चीज आपको आवाज से, संगीत से और उस पदचाप से प्रस्तुत करनी है कि उसके दिमाग में एक ध्वनि चित्र बने। ये रचनात्मकता जो है आपको भीड़ में सामान्य तरीके से बात करने वालों से अलग करती है। मैं किसी दुकान में जाऊं, किसी शादी समारोह में जाऊं, किसी संस्था में जाऊं, मेरे बोलने के ढंग से एक ना एक सवाल अवश्य होता है कि आप थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, कहां से हैं आप, ये सवाल अक्सर आता है। और उस समय इस महान संस्था को मैं प्रणाम करता हूं, और एक ही चीज कहता हूं दीपक चलते चलते, वो यह है कि बचपन में माँ ने बोलना तो सिखा दिया था, लेकिन बोलने का शऊर इस संस्था ने सिखाया।
1: क्या बात है। तो समीर जी, आकाशवाणी को जिस वक्त आपने नौकरी के वर्ष पूर्ण होने के बाद जब आपने अलविदा कहा, तो उस वक्त उस दिन बहुत से ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कैसा लग रहा था आपको?
0: मुझे ऐसा लगा दीपक कि अलविदा तो अंत है, और अंत किसने देखा, ये जुदाई ही वो मिलन है जो हमने देखा।
1: क्या बात।
0: ये कहा जाए कि एक एक शुरुआत थी, एक नई शुरुआत थी, कि जैसे एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी चली जाती है, और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी की उंगली पकड़ के उसको थोड़े आगे तक चलती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे जैसे सूर्य अस्ताचलगामी होता है, उसकी लालिमा आकाश में बिखरती है, वो इस बात का सबूत नहीं होती कि थोड़ी देर में एक काली रात आ जाएगी, बल्कि इस बात का प्रमाण होती है कि सूर्य फिर से उगेगा एक नई

0: उम्मीद के साथ, नए बच्चों के साथ। तो वो पीढ़ी जो मेरे साथ, जिस पीढ़ी का अवसान हो रहा था प्रसारण के क्षेत्र में, उस दिन बड़ा संतोष यहाँ से जाते हुए ये हो रहा था कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो मजबूत हाथों में प्रसारण की दुनिया मैं शायद सौंप कर जा रहा हूँ, और आप भी मेरे बाद आए और मेरा समय समय पर हम लोगों ने हाथ भी एक दूसरे का थामा।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे मजबूत हाथों में प्रसारण को देखकर सुरक्षित और ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा आकर्षक होगा, इस संतोष के साथ मैंने इस संस्था को विदा कहा था।
1: समीर जी, सेवानिवृत्ति के बाद भी एक कार्यक्रम है जिससे आप बिल्कुल लगातार सक्रिय हैं उस कार्यक्रम में, और वो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद
0: जी,
1: जो आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: यह सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से वो लगातार अनवरत चल रहा है और आज भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ।
1: तो समीर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी आप यूं ही आते रहें, और आपके चेहरे पर अभी भी जो आभा झलक रही है, जो रौनक दिखाई दे रही है, और सृजन की जो संतुष्टि दिखाई दे रही है, उस संतुष्टि के साथ आप यूं ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ल से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार रायपुर जारी है और आइए अब रुख करें गीत संगीत की ओर।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं।
1: साइबर में सामान की खरीदी करने के नाम पर हम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। इसमें हर स्मार्ट आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के नाम पर अपने घरेलू करने की बात करते हैं या कोई महंगा एडवांस में सामान की खरीद बिक्री करने के नाम पर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास स्कैमर्स करते हैं। इसमें ठग समानता आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के नाम पर अपने स्थानांतरण कहीं अन्य जगह हो जाने से घरेलू उपकरण बेचने की बात करते हैं या कोई महंगा सामान सस्ते दर में देने की बात कर एडवांस में पैसे की मांग करते हैं और अपनी बातों में फंसाकर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। लोगों से आग्रह है कि ओएलएक्स में जब भी किसी सामान की खरीद बिक्री करते हों तो बिना सामान की डिलीवरी के पेमेंट ना करें और ओएलएक्स में सामान खरीदते समय ओएलएक्स के ऑफिशियल चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अपने पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप पर चैट ना करें। फिर भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं अथवा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं नमस्कार रायपुर। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन पा रहे हैं और श्रोताओं, आप और हम जुड़े हैं संचार के माध्यम से। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए संचार हमेशा से जरूरी रहा है। एक व्यक्ति अपनी बात, विचार, मत और इच्छाओं को बताने के लिए संचार के अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करता है और आज रियल ही नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए भी हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पहले जहां किसी सूचना या जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं हजारों किलोमीटर दूर की खबर आज मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। आज तकनीक के इतनी तरक्की कर ली है तकनीक ने कि हम दुनिया में कहीं भी रहे, संचार तकनीक के अलग अलग माध्यम अपनाकर हम आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश ने दूर संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व

अभूतपूर्व प्रगति की है। साथ ही डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन श्रोताओं, दुनिया भर में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में बाधाएं आती है, और दूर संचार में आ रही इन बाधाओं को दूर करने, कम विकसित देशों में डिजिटल परिवर्तन लाने, साथ ही संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के लिए इस वर्ष की थीम है डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रिजिलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, यानी ऐसी मजबूत डिजिटल व्यवस्था तैयार करना जो संकट, आपदा या तकनीकी बाधाओं के समय भी लोगों को जोड़ कर रख सके। साथ ही डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को अपनाते हुए तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और श्रोताओं, कोई कितनी भी दूर हो, दूर संचार के माध्यम से हम किसी भी पल अपनी बात अपनों तक पहुंचा सकते हैं। और अब आप तक पहुंचा रहे हैं हम ये गीत।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్ చే.

श्रोताओं, दिल की धड़कनें अगर जिंदगी का संगीत है तो रक्तचाप उसकी लय। लेकिन जब लय बिगड़ने लगे तो धीरे धीरे सेहत पर असर पड़ने लगता है। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, अनियमित खान पान, नींद की कमी और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण शरीर में कुछ खामोश सी समस्याएं जगह ले लेती है, जिसमें सबसे ज्यादा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण कई बार दिखाई नहीं देते। और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते रक्तचाप की जांच और इस पर नियंत्रण न किया जाए तो हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी संबंधी और अन्य समस्याएं शरीर में जन्म ले सकती है। इसीलिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण बेहद जरूरी है। संतुलित आहार, कम नमक का सेवन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी, ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से दूर रख सकती है। श्रोताओं, रिसर्च के अनुसार संगीत भी तनाव कम करने का एक जरिया है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सुकून के करीब और सुनाते हैं ये गीत।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की

0: मृत्यु हुई। कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मानसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़

पेड़ है तो जीवन है, प्रकृति है तो कल है, धरती माँ का मान करो, पर्यावरण का सम्मान करो। इन्हीं विचारों के साथ आज के किसले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी तृप्ति दीदी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और जीवन प्रदान करता है। बच्चों, नदियाँ, पेड़ पौधे, पर्वत, जीव जंतु, ये सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारा पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है, जिससे हमारी धरती और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर का पिघलना, जलवायु में अधिक बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे कारण हो रहे हैं। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में अपना जीवन जी सके। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, बिजली की बचत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कम प्रयोग, वाहनों का कम उपयोग करें, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ना करें। बच्चों, पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये भी आवश्यक है कि हम और लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप पर्यावरण संरक्षण करेंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

0: प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्या असर डालता है? प्लास्टिक का उपयोग करने से हमें क्या क्या हानियां होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, आज हम अपने अगले क्रम इन्हें भी जानेंगे में जानेंगे प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरनाक क्यों है, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगी अनिमा श्रीवास्तव। तो आइए बच्चों, सुनते हैं ये जानकारी।
1: बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्लास्टिक हमारे जीवन में खतरनाक क्यों। बच्चों, प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा प्लास्टिकोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बनाना। इसका आविष्कार 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्किस ने किया था। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्किस ने करीब 150 साल पहले प्लास्टिक की खोज की थी, तब इसे हाथों हाथ लिया गया था। आगे चलकर दूसरे वैज्ञानिकों की खोज इसमें जुड़ी, लेकिन अब यही उपलब्धि अभिशाप बन चली है। सारी दुनिया में प्लास्टिक उत्पादों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है। बच्चों, दैनिक जीवन में इसके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिकित्सक एवं वैज्ञानिक चिंता एवं चेतावनियां जारी कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से कैंसर तक होने की आशंका जताई जा रही है। प्लास्टिक एक प्रकार का पॉलीमर यानी मोनोमर नाम की दोहराई जाने वाली इकाइयों से युक्त बड़ा अणु है। प्लास्टिक थैलों के मामलों में दोहराई जाने वाली इकाइयां एथिलीन की होती हैं। जब एथिलीन के अणु को पॉली एथिलीन बनाने के लिए पॉलीमराइज किया जाता है, वे कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला बनाती हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन को हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोजित किया जाता है। बच्चों, प्लास्टिक की बनी हुई चीजों का भारत में जितना उपयोग होता है उतना शायद ही दुनिया में उपयोग होता हो। लेकिन आपने कभी सोचा है जिन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सही है नहीं? बच्चों, आज हम आपको प्लास्टिक के बने सामान से हमारे शरीर में हो रहे नुकसान को बताएंगे। हम प्लास्टिक के बने कप और डिस्पोजेबल में खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्लास्टिक में रासायनिक तत्व मिले होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल में हम चाय कॉफी लेकर पीते हैं, उसका जो ऊपरी भाग होता है उसका एक परत मोम का होता है, जो गर्म चीज के पड़ते ही पिघलने लगता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। प्लास्टिक धूप और गर्मी में पिघलती है, उसका जहरीला रासायनिक पदार्थ पिघलने लगता है, जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर को जन्म देता और भी बीमारियों को जन्म देता है। बच्चों, प्लास्टिक से बने बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें जिन रंगों का इस्तेमाल होता है वह भी बहुत खतरनाक होता है। इसके रंगों में शीशा और आर्सेनिक का उपयोग होता है, जिसे छोटे छोटे बच्चे मुंह में लेकर खेलते हैं, और इनके उपयोग में आने के कारण उन कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। बच्चों, प्लास्टिक की बोतल में जो हम पानी लेकर रखते हैं और पीते हैं, उन बोतलों में रासायनिक तत्व होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार प्लास्टिक के उपयोग से 90% कैंसर की संभावना होती है, जिसको वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है। बच्चों, कई शोधों से यह बात सामने आई है, प्लास्टिक से सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जमीन, जलवायु सबको नुकसान हो रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। बच्चों, प्लास्टिक के थैले स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिप्रद होते हैं। प्लास्टिक के थैले रंग और रंजक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है, जिनमें कैंसर व अन्य बीमारियों को जन्म देने के गुण होते हैं। यह जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें भी विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। बच्चों, प्लास्टिक थैलियों का निपटान यदि सही ढंग से नहीं किया जाता तो जल निकास प्रणाली में यह अपना स्थान बना लेते हैं। रिसाइकिल किए गए अथवा रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो निथर कर जमीन में पहुंच जाते हैं और मिट्टी और भूगर्भी जल को विषाक्त बनाते हैं। कुछ थैलियां जिनमें बचा हुआ खाना पड़ा होता है उन्हें प्रायः पशु अपना आहार बना लेते हैं, जिससे पशुओं की मौत तक हो जाती है। बच्चों, प्लास्टिक इंसानों, जानवरों समेत प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक थैली के दूध, पानी की बोतलें, लंच बॉक्स या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, सच्चाई तो यह है कि प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्लास्टिक के ज्यादा प्रयोग के कारण खून में थैलेक्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिलाओं का शिशु का विकास रुक जाता है और प्रजनन अंगों का भी नुकसान होता है। बच्चों, प्लास्टिक उपयोग में प्रयोग होने वाले बिस्फेनाइल रसायन शरीर में मधुमेह, लीवर एंजाइम को असंतुलित कर देता है। इसी तरह कचरा, पॉलिथीन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्सर्जित होती है और इससे त्वचा और सांस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। पिछले वर्ष प्लास्टिक बैगों से जानवरों की मौत और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को चिंता का विषय बताते हुए केंद्र सरकार 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। 40 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ जुर्माने की राशि में वृद्धि करने के साथ ही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक संबंधी एक परियोजना पर काम शुरू हुआ है। इससे देश को प्लास्टिक थैलियों के कचरे से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी। आमतौर पर कैरी बैग कचरे में पहुंचते ही इनके कारण तरह तरह की समस्याएं पैदा होती है। सबसे पहले तो साफ सफाई में बाधा उत्पन्न होती है। इसके

0: अलावा नालियों में पॉलिथीन के फंसने के कारण नालियां जाम हो जाती है, पानी में गंदगी जमा हो जाती है जिससे पानी प्रदूषित होने लगता है और उनमें मच्छर कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं जिससे कई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। हमारे देश में कूड़ा कहीं भी फेंक देने की आदत के कारण प्लास्टिक हमारी समस्या बन गया है, क्योंकि इस पूरे कचरे में अधिकतर प्लास्टिक ही तो होता है जो मनुष्य, जानवर और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। कभी भी पूरी तरह से प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, इसलिए इसके इस्तेमाल से बचें। यदि प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो वायुमंडल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। बच्चों, इस समस्या का सबसे बड़ा हल यह है कि प्लास्टिक के उपयोग की आदत को धीरे धीरे कम करते हुए समाप्त करें, क्योंकि आज प्लास्टिक का उपयोग हमारी आदत सी बन गया है। रसोई घर हो, ड्राइंग रूम हो, बच्चों के खिलौने हो, फर्नीचर हो, सभी जगह प्लास्टिक ने अपनी पैठ बना ली है। इस आदत को धीरे धीरे कम करके इससे हमें छुटकारा पाना होगा, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए श्रेयकर होगा। बच्चों, सबसे पहले पॉलिथीन बैग के उत्पादन और इस्तेमाल को भी पूरे देश में बंद करना होगा।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे इन्हीं भी जाने क्रम में प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरनाक क्यों विषय पर जानकारी, और इसकी वार्ताकार थी अनिमा श्रीवास्तव। बच्चों, सच में प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है, इसलिए ज़रूरी है कि प्लास्टिक का प्रयोग ना ही करें। और बच्चों, आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

बच्चों अब समय हो चला है हमारे अगले क्रम प्रेरक प्रसंग का और आज मैं सुनाती हूँ आपको दो दोस्तों की कहानी। बच्चों एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र हमेशा पेड़ लगाता और उनकी देखभाल करता था जबकि दूसरा कहता था एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों कुछ वर्षों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ी और पानी की कमी हो गई। खेत सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। लेकिन जिस मित्र ने पेड़ लगाए थे उसके घर के आसपास हरियाली बनी रही। बड़ा ठंडी हवा वहां चलती थी और पानी भी उसके पास पर्याप्त था। तब दूसरे मित्र को यह अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये कहा, आज मैं समझ गया कि प्रकृति की रक्षा करना केवल एक काम नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है। बच्चों उस दिन से पूरे गांव ने मिलकर पेड़ लगाए और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। बच्चों इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए, अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि हरी भरी है धरती प्यारी, लगती जैसे माँ हमारी, पेड़ पौधे इसकी शान है, इनसे ही तो सबकी जान है। पेड़ कटे तो वर्षा रूठे, धरती के सारे सपने टूटे, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती माँ का मान बढ़ाएं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे, अपने पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, साथ ही लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। तो बच्चों आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

गाइए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और दीजिए अपनी तृप्ति दीदी को इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम किसलय अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे से बातचीत। प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।

0: श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे जी से। तो मृणाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। आपका हॉकी की ओर रुझान कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए सर।
1: पहले तो मैं तभी खेलता था स्कूल स्तर पर, उसके बाद एक कोच है जो मुझे ऑब्जर्व किए और देखे कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है, इसमें खिलाड़ी का गुण है। तो मनीष गौतम उनका नाम है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कोई एक खेल को अपना कर उसमें महारत हासिल किया जाए, क्योंकि वो खुद एक हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने सजेस्ट किया हॉकी खेलने के लिए
0: जी।
1: कुछ दिन मैंने अभ्यास किया उनके अंदर में
0: जी,
1: मुझे हॉकी पसंद आया और वहां से मेरे हॉकी खेल की शुरुआत हुई
0: जी। तो सर, खेल के शुरुआती दिनों में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: एक्चुअली बेसिकली जो जब हमारा हॉकी खेल का प्रारंभिक समय था, उस समय सबसे मेन दिक्कत तो हमें एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की आई, क्योंकि हॉकी का जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस होते हैं ये एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर होते हैं। और प्रारंभिक स्तर पर जब हमने प्रारंभ किया इस हॉकी खेल के अभ्यास को, तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी एस्ट्रोटर्फ का मैदान नहीं था। तो एक ये चुनौती थी कि एस्ट्रोटर्फ मैदान के अनुकूल अपने आप को ढालना और उस हिसाब से प्रैक्टिस करना। तो कुछ अपना अभ्यास कोचों के मार्गदर्शन में कुछ ऐसा अभ्यास किए जिसमें एस्ट्रोटर्फ के मैदान में अभ्यास किया जाता है, और हम साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर किए और फिर चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़े
0: जी। सर, इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुंचे हैं, उसमें सर परिवार का आपके खेल जीवन में कितना सहयोग रहा?
1: मेरे परिवार का मेरे कैरियर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और शुरू से ही परिवार का सपोर्ट मिला है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे हिम्मत मिला। और स्पेशली मेरे फादर जो है शिवा चौबे जी, उनका आशीर्वाद मिला और उनका मार्गदर्शन और मोटिवेशन प्राप्त हुआ। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हुए कहते थे कि किसी भी स्तर पर यदि मैं खेलना चाहूँ, स्टेट के बाहर जाना चाहूँ, तो किसी भी मतलब परेशानियों का सामना उनके द्वारा हर चीज की पूर्ति की जाएगी, और वो एक मोटिवेशन था। उसी मोटिवेशन के तहत मैंने अपना प्रैक्टिस जारी रखा और मतलब आगे बढ़ता गया
0: जी। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने तक का सफर जो रहा वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के पीछे का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जैसा कि आपने पूछा था कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे मेन चुनौती तो एस्ट्रोटर्फ मैदान की थी, और हमारा जो कैंप था इंडिया का कैंप, वो एस्ट्रोटर्फ मैदान में लगा था, तो वो एक चुनौती था। और उसके बाद फिर उस चुनौती का सामना करते हुए जो एक नेशनल कैंप होता है जिसमें सेलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं पूरे देश के, और उन सेलेक्टेड प्लेयर्स के मैचेस को और गेम को मैच कर पाना, तो ये सभी चीजें थी। उस समय जब हम शुरुआत किए थे हॉकी खेल का, तो उतना जो बोला जाए कि जो एक गेम का जो एक स्किल है, टेक्निक है, मैच पर डर्ट के बारे में बताने वाले बहुत कम कोच थे उस समय। वहां जा करके बहुत सारी नई चीजें देखने और सीखने मिली, तो वहां से फिर जो है वो चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते गए, और बस धीरे धीरे परिवार का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता गया। और पहला मैंने जो इंडिया टीम में जो सिलेक्शन हुआ था वो सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में हुआ था, और पहले ही टूर्नामेंट में हमारी इंडिया की टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, तो कहीं ना कहीं वो सिल्वर मेडल भी आगे पुश करने का काम किया।
0: जी जी सर, जैसे खेल के साथ पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन को आपने कैसे संतुलित किया?
1: खेल के साथ पढ़ाई को मतलब एक मैच करना और पढ़ाई को कंटिन्यू करना एक चैलेंजिंग तो था, क्योंकि जब एक लेवल पे प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं उसके बाद फिर खेल पर बहुत समय देना पड़ता है खेल के लिए, और पढ़ाई में कहीं ना कहीं समय कम हो जाता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छे से अगर किया जाए तो मतलब पढ़ाई और उसको दोनों को समानांतर हम जारी रख सकते हैं। वैसे ही मैंने टाइम मैनेजमेंट करते हुए पढ़ाई को भी तवज्जो दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप 10th क्लास, 12th क्लास, आईएससी बोर्ड से फर्स्ट डिवीजन 72 और 70 परसेंट में पास करने के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में फिर मास्टर डिग्री MBA HR में कम्प्लीट किया। तो डिफिकल्ट था लेकिन असंभव नहीं था, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम मैनेजमेंट के ही तहत मैंने पढ़ाई और खेल को समानांतर जारी रखा।
0: जी सर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का आपका अनुभव कैसा रहा, और साथ ही किसी यादगार मैच की उपलब्धि के बारे में बताइए सर।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव बहुत ही शानदार रहा, इसलिए शानदार रहा क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया सभी टूर्नामेंट में मेडल जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यदि यादगार मैच की बात करें तो एशिया कप का फाइनल मैच जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था, उसमें गोल कीपिंग के साथ साथ स्ट्राइकर की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह एक ऐतिहासिक क्षण था और विश्व रिकॉर्ड था उस समय कि कोई गोलकीपर स्ट्राइकर की भूमिका फाइनल मैच में निभाया हो, तो वो एक अवसर प्राप्त हुआ था, तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था। और वो ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक तब हो गया जब उस टूर्नामेंट में हमारी इंडिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीता और आगामी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया।
0: जी जी सर, हॉकी में फिटनेस और अनुशासन की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर।
1: फिटनेस तो बहुत ही अच्छा, फिटनेस से ही अनुशासन भी, अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है, खेल खेल ही नहीं जीवन में अनुशासन होना चाहिए और अनुशासित अभ्यास अनुशासित दिनचर्या की बदौलत किसी मुकाम को कोई इंसान हासिल कर सकता है। और फिटनेस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, डाइट है और स्ट्रेंथ है, स्किल है, टेक्निक है, सभी चीजों का जो है आवश्यकता है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।
0: जी सर, एक खिलाड़ी के रूप में मानसिक दबाव को आप कैसे संभाल पाते हैं सर?
1: मानसिक दबाव को वही है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करके ही अपन, मतलब फिजिकली तो हम प्रिपेयर नहीं थे उसके, क्योंकि एस्ट्रोटर्स जैसे मैं बताया कि हम लोग एस्ट्रोटर्स में अभ्यास के अभ्यास नहीं कर रहे थे और एरिया कैंप में एस्ट्रोटर्स मिला, तो वो एक साइकोलॉजिकल चैलेंज था। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर किए और मनाए कि एक मौका है जो ईश्वर और ईश्वर ने दिया है, सबसे आशीर्वाद से मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन में वो बात थी क्योंकि तो बार बार यहाँ सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय अपने माइंड को सेट करके जो है इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो इंडिया के कैंप लगते हैं उसे कहीं ना कहीं हम सबको प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए। हमारे साथ में साइकोलॉजिस्ट रहते हैं और बाकी सभी सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं, वो हमको प्रिपेयर करते हैं और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मैच।
0: जी सर, वर्तमान समय में भारतीय हॉकी को आप किस स्तर पर देखते हैं?
1: बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा स्टेज चल रहा है भारतीय हॉकी का, विगत दो ओलंपिक्स में हमने मेडल जीता है काफी लंबे अंतराल के बाद में, और सीनियर टीम जूनियर टीम सभी एक अच्छा

0: परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप में भी हमारी इंडिया टीम ने मेडल जीती है, तो एक अच्छा सुनहरा फेज चल रहा है इंडियन हॉकी का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी भारतीय हॉकी टीम और अच्छा करेगी, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी सामने आ रहे हैं, बहुत स्किलफुल प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: जी सर, युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्कूली स्तर पर जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए। वो इंटरेस्ट पैदा करने के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि उनको टेलीविजन में मैच दिखाया जा सकता है या कहीं पे आस पास कहीं पे हॉकी का मैच चल रहा है तो मैच दिखाया जा सकता है, हॉकी के बारे में उनको एजुकेट किया जा सकता है, उनको इतिहास बताया जा सकता है, बहुत सारे माध्यम है रुचि जागृत करने के लिए। और उन माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए यदि हम तब कहीं ना कहीं स्कूल स्तर पर अगर हॉकी को प्रमोट करेंगे और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हॉकी स्टिक है बॉल है वो प्रोवाइड करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों की रुचि हॉकी के प्रति बढ़ेगी।
1: जी जी सर, आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक क्षण कौन सा रहा अभी तक का?
0: बहुत सारे ऐसे क्षण थे जीवन में जो प्रेरणादायक थे। एक समय था जब एक चैलेंजिंग फेज से मैं गुजर रहा था, मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ था और साउथ एशियन गेम्स चैंपियनशिप लखनऊ में खेलने के लिए हमारी प्रशिक्षण शिविर भोपाल में लगी हुई, इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एनपीसीक्लिन किट्स के तहत रिकवरी जो प्रोटोकॉल थे उसका पालन करते हुए फास्ट रिकवरी मुझे प्राप्त हुई और साउथ एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ मेरा। हम लोगों ने खेलने वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उस टूर्नामेंट में हमने सिल्वर मेडल जीता, तो वो एक चैलेंजिंग फेज था, बहुत ही एक यादगार फेज था वो।
1: जी सर, आपके अनुसार भारत में खेल सुविधाओं में क्या सुधार होना चाहिए?
0: खेल सुविधाओं में सुधार जो है वो स्कूल स्तर पर बच्चों में रुचि बढ़ा करके उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हॉकी है बॉल है इन सब चीजों फैसिलिटीज प्रोवाइड करके सुधार किया जा सकता है। एक प्रॉपर कोच मुहैया करा सकते हैं हम जो उनको हॉकी सिखाए।
1: जी जी,
0: बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे हमको काम करने की आवश्यकता है और ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे तो उसको चैनलाइज करेंगे और तब ऑटोमेटिक हमको ऊपर लेवल पे अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी।
1: जी सर, भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं?
0: भविष्य में मैं अब कोचिंग की ओर जाना चाहता हूँ और जो बच्चे हैं उनमें हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाकर उनको ट्रेन करके एक हॉकी गेम में जो भी अचीवमेंट्स हैं वो प्राप्त करे ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आने वाले समय में एज अ कोच में वर्क करने का प्लान कर रहा हूँ।
1: जी सर, रेडियो श्रोताओं और अपने प्रशंसकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर?
0: मैं आपके श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी श्रोता जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो कोई किसी ना किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी अपने दिनचर्या में अपनाएं, फिजिकली फिट रहें। गवर्नमेंट भी इस ओर सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, सबको जागरूक कर रही है, फिट इंडिया है तो हिट इंडिया है, इसीलिए हम सबको फिट रहना बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो कोई भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे योगा हो, चाहे जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, जुम्बा हो या कोई खेल हो, तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी सबको करना चाहिए और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश की प्रगति है, हमारा देश प्रगति करेगा, इसलिए सबका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि सभी फिट रहें और फिजिकल एक्टिविटी करें।
1: जी सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: ठीक है, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे जी से। तो आज का सफर यही तक, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम खेल संसार अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
0: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जावेद अली की आवाज़ में लीजिए सुनिए पुष्पा फिल्म का गीत। गीतकार रकीब आलम, संगीतकार देवीश्री प्रसाद।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना।

0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मिस्टर एंड मिसेस माही। आइए अब सुने इस फिल्म का गीत, आवाजें बनी और सागर की है। गीत के बोल लिखे हैं सागर ने और इस गीत की धुन तैयार की है हनी बनी ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं नेहा भसीन की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत विशाल शेखर का है और फिल्म है सुल्तान।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए राहत फतेह अली खां को, बोल मनोज मुंतशिर के, संगीत तनिष्क बागची का, फिल्म है रेड।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में सुबह 10 बजे भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं राजकुमार मरकाम और साथी। आइए पहले सुने भगवती मरावी और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजकुमार मरकाम और भगवती मरावी के स्वर में कर्मा गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए राजकुमार मरकाम के स्वर में ददरिया।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे राजकुमार मरकाम और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आएंगे और कल शाम रायपुर सहित अनेक जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन स्थापित करना है। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य पदाधिकारियों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य के शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और ईंधन खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैठकों में वर्चुअल माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपायों को भी अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे। श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सुबह 6 बजे दंतेश्वरी मंदिर के सामने से हुआ, फिर संजय मार्केट, चांदनी चौक और कमिश्नर कार्यालय होते हुए यह आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, कर्मचारियों के परिवारजन तथा आम नागरिकों सहित लगभग 300 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी केवल प्रसारण का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक सशक्त सांस्कृतिक धरोहर है। वाकथान के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। SSP शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने संगठित सट्टा और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए गोवा में छापेमारी कर 6 सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया है। यह नेटवर्क रायगढ़, रायपुर, सक्ती और खरसिया समेत कई शहरों से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सिंघनपुर गुफा में का रिसर्च करने के लिए निरीक्षण करने पहुंची रायपुर की एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की 5 सदस्यीय टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज रायगढ़ के एक अस्पताल में जारी है। मौसम। कल रात शाम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। शाम को हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इससे कई स्थानों पर पेड़ गिर गए जिसके कारण बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और पिंडरा रोड सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। उसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आएंगे और कल शाम रायपुर सहित अनेक जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में 11:55 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, नगमानिकार अजीज कासी, मौसिककार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म है दयावान।

0: चांदनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और विनोद राठौर की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार थे शिवहरी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

मोहरा, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें साधना सरगम और पंकज उधास की, शब्द रचना इंदीवर की और संगीत है विजू शाह का।

श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, और इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित

30 मिनट पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लव स्टोरी, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अलीशा चिनाय और किशोर कुमार के स्वर में जावेद अख्तर की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म है मिस्टर इंडिया।

मिस्टर इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक जिगरी। श्रीमती निर्मला अग्रवाल की कश्मीरी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है श्रीजीत कौशिक ने। प्रस्तुति सहायक महफूज हसन और निर्देशक है सुदर्शन कुमार।

0: वाह वाह अलीजू, अब खिलकर निकला है हाक, साथ से कियारियां भरी हुई हैं।
1: खुदा का फजल है बशीर साहब, आपने जो दवा छिड़कने के लिए दी थी बखुदा उसी की करामात है।
0: अलीजू, वक्त पर दवा का छिड़काव ना करते तो कीड़े सारे पत्ते सफा चढ़ कर जाते, फिर हाक के डंठल ही नजर आते।
1: बजा फरमाया आपने, जरा ये बैंगन की कियारियां भी देखिए, पौधे कुछ पीले से पड़ गए।
0: अरे ये क्या हो गया, जरा एक पौधा तो उखाड़ कर देना।
1: जी
2: बशीर साहब, बशीर साहब, बशीर साहब।
0: अरे क्या हुआ नब्बा, इतना घबराया क्यों है, खैरियत तो है?
2: गजब हो गया बशीर साहब।
0: अरे हुआ क्या है, कुछ कहो भी।
2: आप जल्दी से मेरे साथ अमीरा कदल थाने चलिए।
0: अमीरा कदल थाने?
2: हाँ।
0: माजरा क्या है?
2: गजब हो गया, जिगरी को पुलिस पकड़ कर ले गई है।
0: क्या, शबनम को?
2: हाँ।
0: क्या किया था उसने?
2: खुदा के लिए आप चलिए तो, रास्ते में मैं सब कुछ बता दूंगा।

0: हराम मौड़ का हिमायती साला हर जगह टपक पड़ता है, और इस नब्बा की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा जब देखो इस बशीर भट्ट को पकड़ लाता है।
1: अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब।
2: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बशीर साहब, आइए तशरीफ रखिए। कहिए कैसे जहमत की? अरे रमजाना दौड़ का चार बाकर खानी ला।
1: नहीं चाय वाय रहने दीजिए, नब्बा ने बताया शबनम को यहाँ आना पड़ा, ऐसा क्या हो गया जनाब?
2: अरे अब क्या बताऊं साहब।
0: जनाब रहम कीजिए, मेरे भाई को देखिए, सरकार क्या हालत बना दिया है इन लोगों ने।
3: दो मुक्कों में जबड़ा हिला दिया जनाब।
4: अरे शुक्र कर ताउनजत, तेरी गर्दन नहीं हिल गई, एक एक की हड्डियां धुनकर रख दूंगी। हाँ मेरे वालिद का नाम सुना है? हबीबुल्ला पहलवान, ये मुक्केबाजी उन्हीं की सिखाई हुई है।
2: देखा देखा आपने बशीर साहब?
1: शबनम कानून को अपने हाथों में लेना गुनाह है, ये पुलिस थाना है गगरी बल नहीं।
4: और पुलिस तब कहां गई थी जब मेरे नाव में गुल बदमाश के भाई ने मछली काट काट कर ढेर सारा कचरा फेंक दिया था। अरे ताजा सब्जी नाव में सजाकर बेचने निकल रही थी, सब बर्बाद हो गई।
1: ओ शबनम,
0: सरकार इसने मेरी सीनी पाए की देख क्यों छीनी?
4: चोर डाकू, अरे तेरी देख थी वो बूढ़ी फातिमा ने अपने पोतों के लिए सिरी पाए पकाए थे और तू?
2: खामोश, ये मछली बाजार नहीं है, जो बात कहनी है आराम से कहो।
4: अरे हुजूर, एक बेकसराट बेवा समझकर ये बदमाश जब तक परेशान करते हैं। अरे इन्हें पता है मेरा ससुर लकवे का मारा है और मेरा देवर ये पगला नब्बा अभी नादान है, मसे भी नहीं भीगी अभी इसकी। और ये गुल बदमाश मेरे शौहर का चचेरा भाई रातों रात डल झील में तैरती हमारी खेती में से टुकड़े काट काट कर अपने खेत में मिला लेते हैं। सोचते हैं कि शबनम हार जाएगी, टूट जाएगी, और ये अपने मरे भाई का हिस्सा हड़प जाएंगे और नब्बा और मेरे ससुर को डल झील में धकेल लेंगे। मगर हुजूर मैं कमजोर नहीं हूँ, सुन लीजिए। हाँ तू भी सुन ले।
1: थानेदार साहब, औरत जात है मुसीबत की मारी है,
4: जब देखो तो परेशान करते रहते हैं।
1: अच्छे अच्छों का दिमाग इन हालात में बिगड़ जाता है। बेचारी मेहनत करती है, सब्जी उगाती है, घाट घाट पर बेचती है, शरीफ औरत है, खुददारी से जीना चाहती है।
4: आपकी बात थानेदार साहब, इन्होंने कुछ किया तो देख लीजिएगा।
2: ओफो, अब देखिए ना, कम से कम मारपीट तो ना करें।
4: पर हुजूर,
2: अरे अब फौजदारी की नौबत आ जाएगी तो फिर आप कैसे बचाएंगे? ठीक है, अब तो मैं आपकी जिम्मेदारी पर इसे छोड़ देता हूँ।
1: शुक्रिया।
2: और वो हाँ बशीर साहब
1: जी,
2: करीम की मरहम पट्टी के लिए उसे कुछ दे दिला दीजिएगा।
1: बेहतर जनाब।
5: जिगरी बैल जिंदाबाद, जिगरी बैल
6: जिंदाबाद,
5: जिगरी बैल
6: जिंदाबाद,
7: बशीर भट्ट
6: जिंदाबाद,
7: बशीर भट्ट
6: जिंदाबाद।
8: अरे रुकिए बशीर साहब, स्कूटर स्टार्ट मत कीजिए, सब लोग जिगरी के साथ डल गेट जा रहे हैं हबीब के शिकारा होटल में चाय पीने, आपको भी जरूर चलना है, जिगरी ने कहा है।
1: अच्छा भाई नब्बू मियां, जो हो।
8: लाओ स्कूटर, मैं ठेलता हूं।
1: शबनम, तुम्हारे हुक्म की तामील तो इस खाकसार को उम्र भर करनी ही है। तुम्हें देखने के बाद मेरा मन यही करता था कि तुम्हें सामने बिठाकर घंटों निहारता रहूं, तुम्हारी गोद में मेरा सर हो और मेरे चेहरे पर तुम्हारी घनी जुल्फों का साया। रोज तुम्हारे घर के चक्कर लगाता, लगा तुम्हें भी मेरा इंतजार रहता है। एक दिन हिम्मत कर।
2: शबनम।
4: अरे बशीर मियां, आइए तशरीफ लाइए, चाय तैयार है।
2: चाय की जहमत ना कीजिए, वो बात यह है कि बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था।
4: शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं तो समझती थी आप बोल ही नहीं सकते।
2: आप भी तो कुछ नहीं बोलती।
4: हाजी लीजिए, मैं तो सारा दिन बोलती रहती हूँ, रोजी तो देख कर जाते हैं आपकी मैं क्या कर रही हूँ। कभी आटा गूंथ रही हूँ, कभी कपड़े धो रही हूँ, चावल फटक रही हूँ, और कुछ नहीं तो बाली सुखा रही हूँ। देख तो चुके हैं आप, आज आदू नहीं आया आपके साथ?
2: नहीं, मैं खुद भी तो नाव चला लेता हूँ ना। शबनम, मैं पास हो गया हूँ।
4: अच्छा, तो ये बात इतनी रोड़ी सूरत बनाकर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, और मेरी मिठाई कहाँ है?
2: मिठाई
1: कितने टोकरे मिठाई खा सकती हैं?
4: मैं
1: कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहता हूँ कि तुम बैठी बैठी खाओ और नौकरों पर हुक्म चलाओ मेरी अम्मी की तरह। मगर अफसोस अब्बा कहते हैं अभी मुझे और पढ़ना है।
4: तो इस तरह कांप क्यों रहे हैं आप? आपको तो पसीना भी आ रहा है।
1: हाँ, वो बात यह है शबनम, मैं आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ।
4: दिल्ली?
1: हाँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा खेती बाड़ी का डॉक्टर बनकर। मैं जरूर आऊंगा शबनम।
4: दिल्ली?
1: देखो कुछ ही बरस की तो बात है शबनम, मैं तुम्हें कितना मानता हूँ वल्ला बयान नहीं कर सकता।
4: शुक्रिया, आप बड़े लोग हैं।
1: ऐसा मत कहो। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू?
4: नहीं कुछ नहीं, आज वो हवा तेज है ना, लगता है कुछ पड़ गया है आंख में। कब जाना है आपको?
1: कल।
4: कल ही?
1: हाँ। वो तुम्हारे अब्बा की तबीयत अब कैसी है? आदू बता रहा था काफी बीमार रहते हैं।
4: हाँ, बहुत कमजोर हो गए हैं।
7: शबनम, शबनम, सबो बेटी।
4: अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा आइए ना इधर। अब्बा आप हैं बशीर साहब।
1: अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अरे हमारी पागल बेटी आपकी बड़ी तारीफ करती है। आपके वालिद को भी मैं जानता हूँ। आओ बेटा अंदर आओ, चाय पी कर जाना है।
1: इस वक्त तो माफ कीजिए, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे, कल ही मुझे दिल्ली जाना है।
7: अच्छा इतनी दूर, कल ही?
1: जी हाँ, कई रोज से सोच रहा था आपसे आकर मिलूं, आपकी तबीयत का हाल पूछूं, बस यूं ही झिझकता रहा।
7: बेटा इस गरीब खाने को अपना ही घर समझो, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, आबाद रखे।
1: अब इजाजत दीजिए, चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलने आऊंगा। खुदा हाफिज।
7: खुदा हाफिज बेटे, अपने अब्बा को मेरा सलाम कहना।
1: जी
4: खुदा हाफिज बशीर मियां।
1: खुदा हाफिज।
9: तुम्हारी पूर्णम आंखें, सुर्ख सुनहरी परेशान जुल्फें, दहकते अंगारे सा चेहरा मेरी रग रग में बसे थे। मैं दिल्ली शहर के भीड़ भड़क के शोर शराबे में भी डल झील, बर्फीली रुपहली चोटियां और झील में खिली कमल सी अपनी शबनम को भूल ना पाया। पहली बार छुट्टियों में श्रीनगर लौटा तो एक और हादसा हुआ।
10: क्या हुआ, क्या हुआ शबनम को?
11: बशीर मियां, गुलनार हाउस बोट में जो बंबई का सेठ ठहरा है ना, उसकी इकलौती बच्ची पानी में गिर गई है। उसे बचाने के लिए शबनम ने भी झील में छलांग लगा दी है, वो अब पानी से ऊपर आ ही नहीं रही।
10: पीछे हटो, पीछे हटो, मैं देखता हूँ, पीछे हटो।
11: आप क्या कर रहे हैं मालिक, आगे मत जाइए। बशीर मियां भी पानी में कूद गए।
7: मेरी बच्ची शबनम पानी में दिखाई नहीं दे रही।
12: वो रही वो उसके लाल सुर्ख बाल, खुदाया रहम।
13: अरे उसने बच्चे को पकड़ रखा है, जल्दी से रस्सी डालो।
12: बड़ी बहादुर है हमारी जिगरी, अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे।
11: अरे अरे मर गए, उसका सर लकड़ी के लट्ठों से टकरा रहा है।
12: अरे वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रही।
7: जाल्मो हट जाओ, मेरी बेटी, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाने दो।
11: घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बशीर मियां ने उसे पकड़ लिया है, वो उन दोनों को खींच कर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ने सबको बचा लिया।
14: बच गए, सब बच गए। बेटी तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूँ।
7: बेटी शबनम, अब बेटी शबनम तू ठीक तो है ना?
14: हाँ अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबरा मत, मुझ सक्षण को कुछ नहीं होगा।
7: ओफो, तो क्यों कूद गई थी गहरे पानी में?
14: अब्बा, मैं तो कूदी ही थी, ये बशीर साहब क्यों कूदे थे? अरे जरा पूछे ना, ये दिल्ली से कब वापस आ गए झील में कूदने के लिए?
7: देखो इस लड़की को इस वक्त भी हंसी चट्टा सुन रहा है।
11: बशीर साहब घर चलिए, ये लीजिए डोसा उड़ लीजिए, सब कपड़े तर हो गए, अम्मी गुस्सा करेंगी और मुझे भी डांट पड़ेगी।
14: अरे बशीर साहब आपको तो सूट खराब हो गया,
10: सर से खून बह रहा है, तुम्हारे लट्ठों से टकरा कर चोट लग गई है, हाथ में बेहोश बच्ची, कुछ हो जाता तो।
14: पानी टपक रहा है आपके कपड़ों से, घर जाकर कपड़े बदल डालिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
12: ठीक तो है
14: जाइए ना।
11: बशीर साहब घर चलिए, आप भीगे हुए ठंड लग जाएगी, चलिए चलिए ना, चलिए।

0: क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ भट साहब? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बिरादर। बशीर की अम्मी, सुनती हो? देखो हबीबुल्ला आए हैं।
2: आए हैं? किस लिए आए हैं?
0: बशीर मियाँ कैसे हैं? सुना है पानी में भीगने से बुखार हो गया है।
1: हाँ भाई, बहुत तेज बुखार है। फिर भी शुक्र है जान बच गई। तुम्हारी बेटी की जान भी बच गई और उस मेहमान लड़के की जान भी अल्लाह ने बख्श दी।
0: उसकी रहमत का साया सब पर रहे, हमारे बशीर साहब भी ठीक हो जाएं। बट साहब, आप जानते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बीमारियों ने इस कदर खोखला कर दिया है, न जाने किस वक्त टूट करके।
1: अरे रे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते हबीबुल्ला। अभी तो तुम्हारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं।
2: किसकी जिम्मेदारियां?
0: सलाम भाभी जान।
2: सलाम।
0: मेरी बेटी की बात कर रहे थे बट साहब शायद।
2: अरे हांजियों में लड़कों की कमी है क्या? जवान हो गई है तो शादी कर दो फटाफट।
0: गुस्ताखी माफ, बात दरअसल ये है कि आपके साहबजादे बशीर मियाँ भी खुदा रखे शादी लायक हो गए हैं। हमारी शबनम को पसंद भी करते हैं। अगर आप बुरा न माने, इस गरीब की आप ही लाज रख ले।
2: क्या कहते हो हबीबुल्ला, तुम्हारी बेटी और हमारे घर की बहू? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सठिया तो नहीं गए हो?
1: अरे बेगम, जरा ऐसा बोलो, बच्चा बुखार में पड़ा
2: है। तुम चुप रहो जी। रेशमी कपड़े में टाट का पेबंद, कुछ कहने से पहले अपनी हैसियत तो देखी होती। आए हो रिश्ता करने और तुम्हारी फुअड़ अनपढ़ गवार लड़की से मैं अपने पढ़े लिखे लड़के की शादी करूंगी? या खुदा, अब तो आसमान से काली बर्फ गिरेगी। अरे यहाँ सोने चांदी से भरी थैलियां लिए लड़की वाले घूम रहे हैं, लड़के को मोतियों से तोल रहे हैं। ये आए हैं फकीर हकीर अपनी मुंह फट अनपढ़ गवार लड़की हमारे सर मरने।
0: बच्चों की मर्जी समझकर आपके दरवाजे आया था अपनी झोली फैलाए।
2: अरे अरे अरे, कुछ गैरत बाकी हो ना तो बेटी को डल झील में धकेल दो। उसकी नजर मैं जानती हूँ हमारी दौलत पर लगी होगी। ए, चले जाओ यहाँ से, कहीं मुझे नौकरों से निकलवाना ना पड़े। अगर आइंदा मेरे इकलौते बेटे को बाप बेटी ने बहकाया तो फिर देखना।
1: सुनो तो सुनो भाई।
0: बस कीजिए बस कीजिए, जा रहा हूँ। याद रखिए, गरीब की भी इज्जत होती है। खुदा हाफिज़।

0: ओ शबनम, उस दिन बुखार में चकराता लड़खड़ाता मैं बैठक में आया तो तुम्हारे अब्बा जा चुके थे। अम्मी मेरे अब्बा को फटकार रही थी, वो चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। मैं वापस दिल्ली जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब्बा ने वादा किया कि सब ठीक कर देंगे, मैं पढ़ाई पूरी करके ही लौटूं। लेकिन कुछ भी तो ठीक ना हुआ। मेरे दिल्ली से लौटने से पहले ही तुम्हारे बीमार अब्बा ने, पढ़ने से पहले तुम्हारा निकाह अपने पड़ोसी नब्बा के बड़े भाई गुलाम अली से कर दिया। मेरी तो दुनिया ही लुट गई, ख्वाब तार तार होकर बिखर गए। बस एक जुनून था तुम्हारे दीदार करने का, तुमसे बात करने का। और एक दिन मेरे पांव मुझे तुम्हारे नए घर का रास्ता दिखाते हुए तुम तक ले ही गए।
1: अब्बा देखो तो कौन आया हमारे घर।
2: कौन आए हैं?
3: ओ, बशीर भट्ट साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए।
0: सलाम हज।
3: वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, खुदा उम्र दराज करे। अरे नब्बा, मुंह क्या देख रहा है, मुड़ा इधर कर, अपनी भाभी को बुला, कहो तो चाय बना कर ला, कुछ खाने को भी मंगवा ले। और देख नब्बा, तू दौड़ कर नान भाई के यहाँ से गर्म गिरदे ले आ।
0: आप तकल्लुफ ना करें, वो दिल्ली से आकर सुना शबनम के वालिद साहब गुजर गए, बहुत अफसोस हुआ। बहुत दिनों से सोच रहा था आप सबसे आकर मिलूं।
3: बड़ी मेहरबानी जनाब, आप लोगों का हाथ सिर पर रहना चाहिए, मैं माजूर लाचार बिस्तर पर पड़ा हूँ। ये नब्बा दिन भर कंचे खेलता है या घाट घाट घूमता है लड़कों के साथ, बचपना है इसमें। बस गुलाम अली पर ही दारोमदार है, वो बेचारा मेहनत करके हम सबको पाल रहा है, मंडी गया है सब्जी लेकर, आपसे मिलकर बड़ा खुश होता।
0: मैं भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता। खैर फिर सही, अब चलो।
3: वाह जनाब, ये कैसे होगा, चाय जो बन रही है। शबनम बहू, जल्दी चाय लाओ बेटी। बशीर साहब
0: जी,
3: बड़ी किस्मत से ऐसी बहू मिली है, बेचारी हम सब की खिदमत में लगी रहती है। लकवे ने मुझे तो कहीं का रखा नहीं।
1: ले आया गर्मा गर्म गिरदे ले आया, और नुक्कड़ के हलवाई से कमल ककड़ी के पकौड़े भी, देखिए कैसे चटपटे और खस्ता है।
3: बड़ा शरीर है।
1: आइए बशीर साहब, उस कमरे में चलिए।
0: हाँ चलो।
4: सलाम हस बशीर साहब।
0: ओ शबनम, कैसी हो? बड़ा अफसोस है तुम्हारे वाले सब इतनी जल्दी हम सबको छोड़ गए। नहीं नहीं नहीं ना, हिम्मत रखो, तुम तो बहुत बहादुर हो, और फिर यहां सब तुम्हें।
4: हाँ बशीर साहब, मेरे वालिद की जगह बैठे ना ससुर जी, मुझे क्या गम है, खाती हूँ पीती हूँ आबाद हूँ।
0: खुदा तुम्हें आबाद ही रखे, सलामत रखे। वो भाई गुलाम अली से मुलाकात नहीं हुई, चलो फिर सही।
4: बहुत नेक है, मुस्तुखिया बिन माँ बाप की यतीम को उन्होंने ही सहारा दिया है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
0: खुश रहो।
4: बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
1: भाभी भाभी, ये क्या कर रही हो, उबलती चाय सारी बशीर साहब के हाथों पर बह रही है, प्याला तो कब का भर चुका, हटा समावार को।
4: ये क्या हो गया, मैं कैसी बेअकल हूँ मैं। नब्बा

0: सर दवाई तो ला।
1: हाँ, अभी लाता हूँ।
0: उबलती चाय प्याले से बहकर आपके हाथ पर गिरती गई। अल्लाह, आपने भी ना रोका।
2: कितनी बदल चुकी थी तुम, सर्द चेहरा, रूखे होंठ, मगर आंखें वही डल झील की गहराई लिए। मैं उन्हीं आंखों में डूब गया था, हाथ पर गरम चाय पड़ने का एहसास कहां होता। तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद देखकर शायद मैं अपने दिल को धीरे धीरे समझाता, कुदरत का खेल, कुछ ही महीनों में बिजली गिरी।
0: छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो।
3: सब कर बेटी, सब कर, मुझे मर जाने दो। ये देख बेचारा नबक कैसे तेरे कदमों में लौटता है।
4: क्या हो गया, क्या
5: क्या हाल हो गया है? तेरे सिवा कौन है इनका? हिम्मत कर जिगरी, हिम्मत कर।
4: आइए बशीर साहब। अरे जगह दो ही नहीं।
2: शबनम, तुम्हारी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने की कोशिश करता रहता। एक हल्की सी उम्मीद जागने लगी, मुझे जिंदगी की तरफ धकेलने लगी।
0: अरे बशीर साहब, आप नानबाई की दुकान पर? हाथू या किसी नौकर को भेज देते, ये भी भला अफसरों के काम है क्या?
2: क्यों सताती हो शबनम, जानती तो हो तुमसे मिलने की तदबीरें करता रहता हूं।
0: अरे आप भूले नहीं उस बचपने को? जी जी, बड़े ठीक ही सोचते हैं। अब भूल भी जाइए, अपनी अम्मी को और ना सताइए। कर लीजिए ना शादी उन्हीं की मर्जी से।
2: अम्मी तो रो पीट कर अब थक चुकी, टांट टपट कर भी हार गई। मैं किसी रुपए की थैली को गले बांधने वाला नहीं। हाँ, अगर मेरे इल्तिजा पर तुम गौर फरमा।
0: पागल तो नहीं हो गए आप? आपके लिए बड़े बड़े घरानों की दसियों लड़कियां हाजिर हैं, फिर ये बेतुकी बातें क्यों? मैं तो, मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। ससुर जी, नब्बा, भला ऐसी बात सोची कैसे आप?
2: शबनम मेरी बात तो सुनो, मैं सब कुछ, रुको तो।
1: बशीर साहब क्या सोच रहे हैं?
2: हाँ?
1: आप तो बहुत पीछे रह गए, सब लोग तो हबीब के होटल पर पहुंच भी गए।
2: खो गए हैं कहीं मोहब्बत के नकुश, हम अपने ही शहर में बेगाने हो गए।
1: हुजूर चलिए भी, शेर वहां पढ़ लेना, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं।
2: नहीं नब्बा, मेरी तरफ से माफी मांग लेना, मेरा जी ठीक नहीं है।
1: नहीं, आपको मेरी कसम, चलिए चलिए ना बशीर साहब।
5: मुझे मालूम था ये बड़े साहब तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे। हाँ, ये क्यों हमारे जैसे हांजियों के साथ चाय पियेंगे?
2: शबनम, तुम ये क्या कह रही हो?
5: तो चलिए ना फिर, ये सामने तो रहे सब लोग, चाय भी तैयार है। नब्बा तू आगे चल और सबको बता दे कि आ रहे हैं।
1: अच्छा
2: शबनम, ये क्या हालत बना रखी है?
0: क्यों बशीर साहब, ठीक ही तो हूँ।
2: मेरी आंखों से देखो तो पता चले

0: कितनी जर्द।
1: जाफरान का पीला फूल बहुत खूबसूरत होता है। आपको पसंद था ना पीला रंग? आप ही ने तो कहा था मुझ पर बहुत फपता है।
0: अपने को संभालो शबनम।
1: मेरी बात छोड़िए, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी कर लीजिए, सच मैं उसी दिन ठीक हो जाऊंगी।
0: क्यों दो जिंदगियां वीरान कर रही हो?
1: आप समझते हैं मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूं? वक्त के सैलाब ने हमें अलग अलग किनारों पर पटक दिया है।
0: शबनम, मैं खुदगर्ज नहीं हूं। मुझे मालूम है बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पर। बाकी दुनिया के झमेलों में क्यों पड़ती हो? किस किस से लड़ोगी तुम?
1: यही तो झमेला है बशीर साहब। मुझसे ज्यादती, जोर जबरदस्ती, जुल्म नहीं देखा जाता। पागल हो जाती हूँ, होश नहीं रहता मुझे।
0: ठीक है, इस जिहाद में मेरी भी मदद लो ना, मुझे भी शरीक कर लो। अब सहा नहीं जाता, मैं तुमसे भीख मांगता हूं।
1: फिर वही बात,
0: जब भी मिलोगी, जब भी, मैं यही सवाल दोहराता रहूंगा।
1: कल मेरा क्या जवाब होगा कह नहीं सकती बशीर साहब। हम गरीब सिर्फ आज के लिए जिंदा रहने के आदी हैं।
0: मैं आज जो कह रहा हूं वही कल दोहराऊंगा। हालात की इस भीड़ में तुम मुझे मुंतजर पाओगी। हो सके तो अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा।

0: जिगरी। अभी आप श्रीमती निर्मला अग्रवाल की कश्मीरी कहानी जिगरी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री जीत कौशिक। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, तरुण बजाज, रईस मिर्जा, राजेंद्र वर्मा, राम मैनी, ओपी रॉय, बीएस भटनागर, बीआर नागर, मोहम्मद अय्यूब, उमराव सिंह, ललिता शंकर, सपना सैनी, सलीना कक्कड़ और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: जिगरी, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। निर्मला अग्रवाल, श्रीमती निर्मला अग्रवाल की कश्मीरी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतरण किया था श्री जीत कौशिक ने। प्रस्तुति सहायक महफूज हसन और निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना

0: भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7 अरब 75 करोड़ डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडू में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है शुभ्रा ठाकुर।

गीतों की मिठास में अपनापन सा घुल जाता है, हर मीठा तराना दिलों को छू जाता है। फोन इन फरमाइश में जब मिलता है श्रोता।

0: भावनाओं का साथ, तो ये साथ ही कार्यक्रम को और सुंदर बनाता है। फोन इन फरमाइश सुन रहे सभी श्रोता साथियों को शुभ्रा का नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं कि पहला कॉल किनका है। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: जी, मैं कमलेश साहू बोल रहा हूँ, पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से।
0: जी कमलेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, मैं दृष्टि बाधित हूँ और मैं प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ।
0: अच्छा, आज पहला कॉल आपका लगा है, बताइए कैसा लग रहा है पहला कॉल लगा है तो?
1: सबसे पहले तो मैडम जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, और क्योंकि मैं बहुत अंतराल के बाद लगा हूँ आकाशवाणी रायपुर में फोन। इससे पहले मैं कम लगभग 6 महीने के बाद मतलब पहले लगा है।
0: जी, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं?
1: मेरे स्कूल में मैडम जी 130 बच्चे हैं।
0: अच्छा, तो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं?
1: हाँ, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश अभी चल रही है, और अभी बच्चों के अभी अंक सूची भी प्राप्त हो चुके हैं, अभी वितरण करना है। अब
0: कैसा रहा रिजल्ट आपके स्कूल का?
1: स्कूल का रिजल्ट 100%।
0: क्या बात, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की कुछ खास बातें बताइए, और कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं ये भी बताइए।
1: मैडम जी, मैं जांजगीर जिले के पामगढ़ से लगभग 7 किलोमीटर दूर पर रहता हूँ, मेरा गांव का नाम है भिलौनी, और मैं जहाँ पदस्थ वहाँ पर मेला लगता है, सरसा मेला, और वहाँ 15 से 20 दिन का मेला लगता है।
0: अच्छा,
1: यहाँ पर नीलागर नदी है, और नीलागर नदी का मतलब जांजगीर जिले का लास्ट बॉर्डर कहना चाहिए। तो आज का जो मेरा गीत है, ना कजरे की धार, मोहरा फिल्म का।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार मैडम, मैं मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं मुकेश जी?
1: अमलेश्वर महादेव घाट रायपुर से।
0: अमलेश्वर रायपुर से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ और पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं दृष्टिबाधित हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाते हैं?
1: मैं जो है हिंदी इंग्लिश पर्यावरण

0: तो कितने दिनों बाद आपका कॉल लगा है?
1: अरे मैं पिछली बार फरवरी में लगाया था, उसका अब लगा रहा हूँ।
0: अच्छा
1: जी
0: जी, तो कौन कौन है आपके घर में?
1: मैं हूँ, मेरी वाइफ गायत्री जी है और मेरा बेटा छोटा सा लड्डू।
0: अच्छा, पीछे आवाज आ रही है। कैसा मौसम है अभी अमलेश्वर में?
1: अमलेश्वर में तो आज मस्त बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले।
0: आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं और आपको पसंद है?
1: मैं जो है आकाशवाणी रायपुर के लगभग सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे फोन इन फरमाइश है, फोन करे छत्तीसगढ़ी की सुने हैं, युववाणी है, आपके पत्र है, उसमें मुझे युववाणी और कहते हैं आपके पत्र जो पत्रों पर आधारित होता है वो अच्छा लगता है।
0: तो ये बताइए कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब बारिश हो जाती है तो कैसा लगता है?
1: अरे तब तो फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मस्त इस मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े बना के खाए जाए।
0: तो आपके घर में गर्मा गर्म पकौड़े बने हैं कि बन रहे हैं?
1: गर्मा गर्म पकौड़े तो नहीं बने, लेकिन हाँ मुरमुरा जो बोलते हैं उसको अभी तल के खाया हूँ, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए इतने दिनों बाद आपका कॉल लगा है, कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये वाला गीत।
0: जी बिल्कुल, तो हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ, मैं निर्मल साहू बोल रहा हूँ मैडम, धमतरी जिले से।
0: निर्मल साहू जी का बहुत बहुत स्वागत है फोन इन फरमाइश में। क्या करते हैं निर्मल जी?
1: मैं वैसे तो टेलर हूँ मैं,
0: और
1: संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: संगीत से भी जुड़े हुए हैं आप, सीख भी रहे हैं संगीत?
1: वैसे तो ये संगीत जो है जीवन भर सीखने का है, लेकिन मैं कार्यक्रमों में रहता हूँ। मैं बेंजो प्लस फ्लूट जो है बजाता हूँ।
0: अरे वाह, धमतरी के बारे में कुछ बताइए।
1: धमतरी में तो अपना गंगरेल बांध है, और अपना जो वहीं पे अंगार मोती माता का मंदिर है, किलाई माता का मंदिर भी है, विंध्यवासिनी का लगा हुआ राजिम भी है हमारे, लेकिन वो गरियाबंद में आ जाता है।
0: अभी कैसा मौसम है धमतरी का?
1: अरे अभी तो अब क्या बताएं मैडम, पिछले एक सप्ताह से इधर बूंदाबांदी बारिश भी चल रही है, और इधर धान का फसल भी लगा हुआ है। अपना जो धमतरी एरिया है
0: जी,
1: उसमें बहुत रबी फसल का धान का लगा होता है, किसानों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है अभी प्रकृति जो अभी चल रहा है। तो हमको पहले जानकारी नहीं थी मैडम, लेकिन बाद में हमें पता चला कि कम से कम 2 माह का डिस्टेंस रखना होगा करके, तो हमने उसको पालन किया है
0: जी। कितने दिनों बाद आपका कॉल लगा है?
1: जी ये मेरा लगभग 3 महीना हो गया।
0: अच्छा लगता है जब श्रोता साथी संयम बरतते हैं और 2 से 3 महीने के अंतराल में फोन लगाते हैं। तो ये बताइए किस तरह के गीत आपको पसंद है?
1: मुझे जो कुछ न कुछ जो संदेश देता है जो गीत, वो गीत मुझे अधिक पसंद है।
0: तो कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं ये संदेश देता हुआ ये गीत सुनना चाहता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा।
0: क्या बात है, आप संगीत से जुड़े हुए हैं, आप तो बहुत मीठा गाते भी हैं सुर में। आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म का यही गीत।

0: जी ऐसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। आजकल आप लोग जो नए नए तकनीक मतलब नए नए प्रोग्राम जो चालू कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा है आपका ये हेलो इंडिया और होनी फरमाई सभी कार्यक्रम ऐसे अच्छा लगता है। हेलो युवानी
1: जी, कांकेर में क्या कुछ खास चल रहा है?
0: अभी तो कुछ वही है, मौसम के हिसाब से सब अपना अपना देख रहे हैं। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, आज बदल छाया हुआ है।
1: क्या आपने पढ़ाई की है?
0: 12वीं तक की हूँ।
1: 12वीं तक पढ़ाई की है आपने। सिलाई का जो काम करती हैं उसके लिए आपने प्रशिक्षण भी लिया है या आपको शौक था और उस हिसाब से आप करती हैं?
0: ये क्या है, मेरे पापा जी करते थे, उनके साथ मैं मतलब मैं भी सीख गई, ऐसे ट्रेनिंग लेने नहीं गई थी। घर में पहले से ही पापा सिलाई करते थे, उनके साथ सिलती थी।
1: अच्छा,
0: ये मेरा पहली बार लगा है मैम।
1: आपका पहली बार कॉल लगा है आज, क्या बात है। तो
0: पर नहीं लगा, लेकिन इस बार पहली बार एक ही बार में लग गया।
1: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको।
0: धन्यवाद
1: जी। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
0: प्रेम रोग का कोई भी गाना सुना दीजिए।
1: तो हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म प्रेम रोग से।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: उत्तम सिंह जंगेल, आर्य नगर कोहका भिलाई से।
0: उत्तम सिंह जंगेल जी का बहुत बहुत स्वागत है फोन इन फरमाइश में। कैसे हैं आप?
1: ठीक है।
0: ठीक है कि अच्छे हैं?
1: अच्छे हैं, ठीक है। और क्या है, जब तक मेरे को अच्छे गीत नहीं मिलते तब तक लगाते भी नहीं हो। समय जैसे हो जाता है 2-3 महीने के ना, तो अच्छे गाने नहीं मिलते तब तक लगाता भी नहीं हो।
0: तो इसका मतलब आपको कोई बहुत अच्छा गाना मिल गया है।
1: जी जी जी।
0: तो पहले वही बता दीजिए, कौन सा अच्छा गाना आपको मिला है जो आप सुनवाना चाहते हैं सबको?
1: मेरे को फिल्म बाजी 1984 का फिल्म है
0: जी।
1: लता मंगेशकर, सबीर कुमार की आवाज है। मेरे साथी जीवन साथी, ऐसे बोल है गीत के।
0: बहुत ही प्यारा गीत है ये वाकई। तो अब बताइए क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: ठीक है, अपना अप्रैल महीना तो बहुत गर्मी निकला और मई में थोड़ा राहत मिला, फिर भी 2 दिन पहले खूब गर्मी था। अभी सवेरे सवेरे अच्छे बारिश हुआ है, थोड़ा राहत मिला है अभी।
0: जी, इसका मतलब घर में पकौड़े बन रहे हैं?
1: नहीं, अभी नहीं बन रहे।
0: तो बनने वाले हैं?
1: नहीं, गर्मी में थोड़ा तेल का वो ध्यान देना पड़ता है ना।
0: जी, बहुत सही कह रहे हैं आप। जी, जी। क्या होता है, बारिश में अक्सर घर में पकौड़े और अदरक वाली चाय बनती है।
1: हाँ हाँ, बारिश लगेंगे ना, उसके बाद सोचेंगे कि क्या।
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम आपकी पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म बाजी का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम
0: जी. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपाद डिस्ट्रिक्ट एकाचार असम से. कोई कहता है दोस्ती प्यार है, कोई कहता है दोस्ती जिंदगी है, बात दोस्ती दोस्ती है, इसके बढ़कर प्यार भी है जिंदगी भी है.
0: क्या बात है, आसाम से आप बोल रहे हैं, इतनी दूर से बोल रहे हैं. आकाशवाणी रायपुर आप सुनते हैं?
1: बहुत ही बढ़िया लगता है आकाशवाणी रायपुर को, मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. और तो आपका वहाँ पर मौसम कैसा है आज?
0: मौसम तो यहाँ बहुत अच्छा है, आप बताइए आसाम का क्या हाल?
1: आसाम में तो आज बारिश हो रहा है, बहुत बारिश है
0: जी. यहाँ भी आज काफी बारिश हुई है.
1: हमारा वहाँ पर तो 5-6 बजे से बीच से बारिश हुई, अभी तो 11:20 हो गया, अभी बारिश हो रहा है.
0: तो आसाम से आपने कॉल किया है, आसाम में तो बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, तो बताएंगे आप कहाँ कहाँ घूमने जाया जा सकता है?
1: असम में बहुत जगह है, जो हमारा जो असम में चाय के बगान है, बहुत है, मंदिर भी है, बहुत मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और हमारा जो शिव मंदिर है बहुत बढ़िया बढ़िया है, श्री राम का मंदिर है बहुत अच्छा
0: जी.
1: गुवाहाटी में हमारा कामाख्या मंदिर है, दर्शन करने के लिए जाऊंगा
0: जी. जी, तो कौन सा गीत आज सुनवाना चाहते हैं?
1: मैं गीत सुनूंगा कुमार सानू का, फिल्म का नाम है गिरजाले, और गाने का बोल है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन.
0: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये.
1: बहुत ही प्यारा सा गाना भी है, और मैं ये गाना कुछ मेरा परिवार में सुनेगा. मेरा पिताजी है जितन कुमार दास, और मेरा माता जी है शिल्परणी दास, बड़े भैया है जयजीत दास, और आपके लिए दीदी गाना भी. और ये गाना कुछ मैं दोस्तों के साथ डेडिकेट करूंगा. मेरा आसाम से है मेरे बड़े भैया अनिल कुमार भट्टाचार्य, और दीदी है छोटे

0: बाबर खैसर जी और हैलाकंदी से मेरा बहन है लवली दास और बबली दास और है मेरा दादा है राजा मलाकार और है कचर से है मेरा दादा है
1: जी
0: वर्मा
1: जी। तो चलिए आपकी पसंद पर हम सुनवाते हैं ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं गौरव फेकर ग्राम मोरा जिला बुलौदा बाजार से बोल रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, बोल रहे हैं गौरव जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: छठी क्लास में पढ़ता हूँ मैडम।
0: रिजल्ट आ गया आपका?
1: अभी नहीं आया मैडम हमारा।
0: कब आएगा रिजल्ट आपका?
1: स्कूल खुलने के बाद आएगा मैडम हमारा।
0: स्कूल खुलने के बाद आएगा? तो अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं आपकी?
1: हाँ मैडम।
0: तो ये बताइए कि छुट्टियों में क्या क्या करते हैं?
1: वैसे तो हम कर्नाटक रहते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए ना कि अभी गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करते हैं? खेलते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते हैं कि थोड़ा बहुत माता पिता को सहयोग भी करते हैं? क्या क्या करते हैं?
1: दिन में हम हमारी मम्मी पापा की मदद करते हैं मैडम, और रात में पढ़ाई करते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: राजा हिंदुस्तानी मैडम।
0: कौन सा?
1: कौन सा भी हो मैडम।
0: कौन सा भी हो? अच्छा, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद आपको भी।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से,
0: मोहनलाल देवांगन जी।
1: जी जी जी, आदरणीय आदरणीय सादर प्रणाम। आपकी आवाज में ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है मेरा। इंटरव्यू देते हैं आप जब बड़े बड़े सब कलाकारों का, और हम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मैं बहुत खुशकिस्मत वालों जो आपसे बात भी हो रहा है आपसे हमारा।
0: तो मोहन जी, कितने दिनों बाद आपका कॉल लगा है?
1: 2 महीने से ऊपर हो गया मेरा जी।
0: 2 महीने से ऊपर हो गया
1: आपसे तो बहुत समय के बाद बात हो रही है। 2 महीने तो अलग बात है, लेकिन आपसे बात करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि विविध भारती से हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है।
0: तो बताइए क्या चल रहा है अभी जिंदगी में?
1: जिंदगी में तो ऐसा है, जब से हम रेडियो से जुड़े हैं तब से हम कार्यक्रम फरमाइशी देखते रहते हैं, और उसके बाद जब फोन इन कार्यक्रम जब चालू हुआ तो उससे जुड़े, तो सब लोग अब हमसे जुड़ने लगे। पत्र कई लोग पत्र भेजे, मेरे पास 10,000 पत्र का संग्रह है मैडम जी।
0: क्या बात है।
1: और लोग मिलने अलग आते हैं, लोग मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद 2010 में सबसे पहले कार्यक्रम रायपुर में रेडियो स्वतंत्रता दिवस हमारे द्वारा शुरुआत किया गया है। अब ये पूरा भारत में हो रहा है
0: तो बहुत अच्छा लगता है जब रेडियो के माध्यम से इतने सारे लोगों से आप जुड़ते हैं।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो जिंदगी अलग बदल गया है। अब मैं जहाँ जाऊँ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सभी तरफ से श्रोता मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात की कमी नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ है, वहाँ है, जहाँ देखो वहाँ वहाँ है, ऐसा लगता है।
0: जी, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है रेडियो की वजह से श्रोताओं का।
1: जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। अब देखो ना, जब हम श्रोता दिवस हम रखते हैं तो लोग वो तारीख को याद करते हैं और पहुंच जाते हैं उस तारीख में। हम लगता है कि देखिए हम सब श्रोताओं से मिलेंगे और साथ में उद्घोषक भी वहाँ पर मौजूद होंगे, मुलाकात होंगी, सबसे बातें होंगी, और ऐसा होता है।
0: अगर रेडियो को एक शब्द में बताना हो तो आप क्या कहेंगे रेडियो के लिए?
1: अब ऐसा है, रेडियो तो मेरा दिल की धड़कन है। अब रेडियो मेरी जान है, जहान है। हमारे परिवार में भी रेडियो से कभी वंचित नहीं रहते। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, उसमें फर्क पड़ता, उसमें हम लोग ब्लूटूथ में यूट्यूब में करके हम लोग बात चला सुनते रहते मैडम जी।
0: जी, तो अभी आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों में काफी कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, कैसा लग रहा है ये सब सुनते हुए आप?
1: मुझे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कार्य मतलब समय के हिसाब से कार्यक्रम बदलना भी बहुत जरूरी है।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का और बोल है बार बार ये दिन आए।
0: हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई थी 15 मई 2026 को। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर शुक्रवार 11 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक। अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। तो अब फोन इन फरमाइश से शुभ्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी शुभ्रा ठाकुर। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज जगदलपुर में आकाशवाणी ने किया वक्थान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह डायल 112 आपातकालीन सेवा के तहत 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात देंगे। श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास

दौरान इस केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ जिले के कुसमुरा में करीब 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न विभागों के 24 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ में जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिलों के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में ईंधन बचत और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए जांजगीर चांपा और कोरबा के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आज दोपहर सुशासन तिहार के तहत धमतरी की पुराना कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए जगदलपुर में जल्द ही बस्तर की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू की जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने कल जगदलपुर पहुंचकर अकादमी की तैयारियों का जायजा लिया। इस अकादमी में बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए जल्द ही चयन ट्रायल का आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ ही आवास, डाइट और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। यह दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर और कर्मचारियों तथा परिजन के अलावा आम नागरिकों सहित लगभग 300 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि वॉकथॉन के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने उच्च रक्तचाप की जाँच करें और इस बीमारी को हराएं है। कल शाम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। शाम को हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इससे कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिसके कारण बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है, उसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज जगदलपुर में आकाशवाणी ने किया वॉकथॉन का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं हंस राज हंस।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं, क्षमा कीजिएगा 25 मिनट हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:30 पर और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे विवेक सोनार का बांसुरी वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा शाम 5 बजे। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत शाम 6:05 पर आप सुनेंगे खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की चिट्ठी, आलेख विनायक नागवंशी का होगा।

शाम 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विविधिक अधिकार विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग के श्री सौरभ शेंद्रे से भेंटवार्ता। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम बिंदिया दोपहर 1:30 पर, जिसमें आज सुनेंगे आज की बात महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता विषय पर। क्रम सेहत की बात के तहत सुनिएगा डिलीवरी के समय समस्या कारण और निदान विषय पर डॉक्टर विनीता ध्रुवे से भेंटवार्ता। साथ ही आनंद लीजिएगा गीत संगीत का। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसके मुख्य आकर्षण आज होंगे क्रम आजकल

शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम के तहत सुनेंगे क्रम आज की बात। अच्छे स्वास्थ्य खातिर पोषण पर ग्रह वाटिका अपनाएं। क्रम आज की सलाह का विषय होगा फसलों में रोग पहचान के आसान घरेलू तरीके। सलाहकार होंगी डॉक्टर सोनल कुमार चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा दुर्ग। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात 8:15 पर, कलाकार होंगी सुमन शुक्ला।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। बहनें अब सुनेंगी कार्यक्रम बिंदिया।

अनगिनत सपने और उम्मीदों की डोर बांधे नए सफर की करते हैं शुरुआत। बिंदिया सुन रही सभी श्रोता बहनों को आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना किसी को पसंद नहीं। जब सब्जी लेना हो तो पर्स अपनी खाली हो तो अनायास ही निगाहें जीवन साथी की तरफ मुड़ ही जाती हैं। मेरे घर के सामने रहने वाली भाभी सब्जी लेना हो तो भैया की तरफ देखती, कहीं जाना हो तो भैया की तरफ देखती। एक दिन भैया ने उन्हें जोर से कहा, खुद भी कुछ कर लिया करो। ये बात भाभी को चुभ गई। उन्होंने बहुत हिम्मत करके मुझसे कहा, मैं जानती थी कि भाभी पाक कला में पारंगत हैं। मैंने भाभी से कहा, आप तो इतना अच्छा केक बनाती हैं, अब से हमारी किटी का केक आप ही बनाया करें। उस दिन सभी को उनके हाथ का बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया। उस दिन से ये तय हुआ कि सोसाइटी में जिस घर में भी किटी होगी या किसी का जन्मदिन होगा, केक भाभी से ही लिया जाएगा। इस तरह से शुरुआत हुई उनकी आर्थिक निर्भरता की। आज सिर्फ केक ही नहीं बल्कि भाभी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, नान खटाई, चॉकलेट और घर पर साज सज्जा के सामान भी। इस आर्थिक निर्भरता ने भाभी को एक नई पहचान तो दी ही, साथ ही उनके भीतर के आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। एक सही मार्गदर्शन, थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए तो भाभी की तरह आप भी खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं। महंगाई के युग में स्त्री और पुरुष दोनों ही घर की जिम्मेदारी यदि बांट लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। घर से ही आजीविका की व्यवस्था की जा सकती है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को जोड़कर भी आप आत्मनिर्भर बनने की इस योगदान में अपना योगदान दे सकती हैं। वैसे आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए तत्पर रहती हैं और वो हमेशा कोशिश करती हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। आर्थिक स्वतंत्रता देश को मजबूती देता है। कामकाजी महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं, इसलिए इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो फिर मन की आशाओं को पंख दीजिए और देखिए कि आपके भीतर कौन सी खूबी है, क्योंकि आप भी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए इस सफर की करते हैं शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

0: फिल्म रोजा का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थे मिनमिने की, पीके मिश्रा के लिखे बोल थे और संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। इस गीत की फरमाइश थी हमारी इन श्रोता बहनों की, धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू। गातापारा सिर्री से ये श्रोता बहने थी। साथ ही सिमगा से इस गीत की फरमाइश आई थी सविता जैन, मोना जैन और शिवानी जैन की तरफ से। सिमगा से इसे सुनना चाहती थी भारती सेन, विजया सेन, ललिता, रामेश्वरी, मीरा और सुनंदा। साथ ही गातापारा से इसे सुनना चाहती थी लावण्या साहू और उपासना साहू। बहनों, आपकी सेहत का हमें ध्यान रहता है और इसलिए सेहत की बातें में हम आपके लिए लेकर आते हैं भेंट वार्ता। जचकी के दौरान होने वाली समस्याएं, कारण और निदान, इस विषय पर चलिए सुनते हैं भेंट वार्ता। विशेषज्ञ है डॉक्टर विनीता ध्रुवे और भेंट करता है डॉक्टर आकांक्षा दुबे। सर पर जो हाथ फेर दे तो हिम्मत मिल जाती है, वो साथ होती है तो हर दुआ कबूल हो जाती है, तभी तो माँ माँ कहलाती है। नव दंपत्ति को घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध आशीर्वाद यदि मैं कहूँ कौन सा है, तो आप कहेंगे दूधो नहाओ पूतो फलो। एक स्त्री की पूर्णता भी तभी मानी जाती है जब वो माँ बनती है, और माँ बनने का ये सफर आसान नहीं होता। इसलिए तो एक लड़की के लिए माँ बनने की अवस्था उसका पुनर्जन्म कहलाता है। आज सेहत में हम बात करेंगे माँ की उस अवस्था के बारे में जब एक गर्भवती स्त्री माँ बनने की प्रक्रिया में होती है। लेकिन इस विषय पर प्रकाश डालने के पहले हम बात करें उस अवस्था की जिसे हम जचकी कहते हैं। उस अवस्था में जो महिलाएं आती हैं उन्हें कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता ध्रुवे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता ध्रुवे, जिला चिकित्सालय दुर्ग।
0: जी, अनगिनत लड़कियों को महिला बनते देखा और महिलाओं को आपने माता बनने का सौभाग्य दिया। आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, आपने 223 जुड़वा बच्चों की डिलीवरी कराई है, तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो सवाल मन में ये उठता है कि सामान्यतः एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसे कब डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना प्रारंभ करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे ही महिला गर्भवती होती है तो उसको जैसे ही पता चलता है, कई बार आजकल तो लोग घर में ही यूपीटी करा लेते हैं, पेशाब की जांच करते हैं
0: जी,
1: तो जैसे ही उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या उसको थोड़ा शक होता है, उसका महीना वो डिले हो जाता है
0: जी,
1: तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए
0: जी। अब तो परीक्षण की बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं और अब महिलाएं जाती भी हैं, और हमने ये भी देखा है कि प्राचीन समय से मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इसमें काफ़ी कमी आई है। कहीं ना कहीं शिक्षा जगत का और स्वास्थ्य जगत में जो तरक्की हुई है उसका योगदान इसमें बहुत रहा है। प्रसव काल यानी कि जचकी का जो समय है, निकट आने पर महिला और उसके परिवार को पूर्व में क्या तैयारी करनी चाहिए?
1: देखिए, जैसे डिलीवरी का टाइम आता है
0: जी,
1: तो महिला को डिलीवरी के सामान की तैयारी करना चाहिए। जैसे एक थैले में साफ सुथरे कपड़े को डिटॉल में धो के बच्चे के लिए और माँ के लिए उसको रख लो। हॉस्पिटल में रहने वाले जो जरूरत के सामान रहते हैं
0: जी,
1: चादर है, साबुन है और जो भी रखता है वो सबको रख, सैनिटरी पैड वगैरह है उनको रख लेना चाहिए, और आधार कार्ड रख लेना चाहिए। आजकल हर चीज में आधार कार्ड लगता है। थोड़े बहुत उनको अपन बताना चाहिए कि थोड़े बहुत पैसों की व्यवस्था भी करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था। बोलते ना कि माँ का दूसरा जन्म होता है, कभी भी कोई अच्छी खासी डिलीवरी में कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था भी रहना चाहिए कि क्या पता उनको क्या जरूरत पड़ जाएगी, है ना
0: जी।
1: तो वो सारी चीजें उनको पहले से रख लेना चाहिए। और यदि ब्लड की खून की कमी है तो ब्लड डोनेट कराने को रखना चाहिए। जिसका निगेटिव ब्लड ग्रुप वो रेयर होता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप तो मिलता नहीं है, तो वैसे यदि कोई महिला है तो उसको पहले से किसी का इंतजाम करके रखो कि भाई हमको जरूरत पड़ेगी तो आप देंगे क्या करके, ये सारी व्यवस्था करना चाहिए।
0: आपने बहुत बारीक बारीक चीजों पर सबका ध्यान केंद्रित किया कि किस तरह से कपड़े रखने हैं, पैसों की व्यवस्था करनी है, दवाई के इंतजाम के लिए रखना है, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का भी आपने जिक्र किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। वैसे जचकी यानी प्रसव के समय महिला जब पहली बार माँ बन रही होती है तो क्या कुछ विशेष सावधानी उन्हें रखनी चाहिए, आप कोई सलाह देती हैं उन्हें?
1: हाँ, उनको समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, हर महीने चेकअप कराना चाहिए उनको, उनको ब्लड ग्रुप अपना पता होना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, है ना, और भारी काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग उनको बोलते हैं सावधानी बरतना है, बाइक में नहीं घूमना है, पति से संबंध नहीं बनाना है, और सीढ़ी नहीं चढ़ना है, भारी काम नहीं करना है, और सारे जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वायरल मार्कर, आजकल तो हेपेटाइटिस बी, एचआईवी वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, इसी भी, तो वो सारी भी जाँच कराना है, सारे ब्लड टेस्ट की जाँच कराना है, उन लोगों को खून पेशाब की जाँच पूरा कराना चाहिए उन लोगों को। और क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं पाइनएप्पल, पपीता, कटहल, मुनगा वगैरह नहीं खाना चाहिए
0: जी, जो गर्म तासीर वाली सब्जी
1: ये
0: है।
1: एबॉर्टिफिशियंट होते हैं, इनसे एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। कई बार महिलाओं को क्या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गर्म होते हैं ना ये, इसलिए। और शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने में हम पति से संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, इसमें भी एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और हर महिला को बेड रेस्ट करना चाहिए, दोपहर को कम से कम 2 घंटे उसको आराम करना चाहिए
0: जी।
1: और हल्का फुल्का खाना खाए जो सुपाच्य हो, बाहर का तला भुजा ज्यादा नहीं खाना चाहिए
0: जी। आमतौर पर इस समय पे यानी कि जब वो गर्भवती महिला होती है तो उसे बीपी या शुगर की शिकायत होती है, और यदि किसी को पहले से ये शिकायत है तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: देखिए, जिसको पहले से शिकायत रहती है तो लोग तो बीपी की दवाई शुरू से खाते ही रहते हैं ना
0: जी।
1: और आजकल तो आप जानते हैं एकदम लेट मैरिज होती है
0: जी,
1: तो एज भी बहुत डिफेक्ट करता है, मतलब 30 से ज्यादा की महिलाएं रहती है तो अक्सर उनको बीमारी होने का डर रहता है, बीपी शुगर होते ही है
0: जी,
1: है ना। तो जिन महिलाओं को ऐसे बीपी शुगर की यदि शिकायत रहती है तो उनको समय समय पर मतलब जाँच कराते रहना चाहिए, दवाई टाइम से लेना चाहिए उनको, और हर विजिट में जितने बार भी डॉक्टर के पास जाते हैं उनको बीपी शुगर की जाँच कराना चाहिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, मीठा और ये नमक कम खाना चाहिए, है ना। कैल्शियम की दवाई खाना चाहिए, जैसे कैल्शियम की दवाई दिन में 2 बार खाना है, ऐसे अपन जनरली 1 बार देते हैं, आजकल तो वैसे सबको 2 बार देने बोलते हैं। कैल्शियम क्या बीपी को कम करता है
0: जी,
1: तो कैल्शियम की दवाई खाएं, आयरन कैल्शियम जो सरकार गवर्नमेंट सप्लाई भी होता है
0: जी,
1: गवर्नमेंट नहीं है तो मार्केट से भी जैसे उसको खाना चाहे, है ना। पैर को लटका के नहीं बैठना है क्योंकि पैरों में सूजन आ जाती है अक्सर बीपी वाली महिलाओं को, तो पैरों को लटका के नहीं बैठना है, उसको नीचे पालती मार के बैठे या पैर के नीचे तकिया लगा के सोना है तो पैर नीचे तकिया लगा के सोएंगी, या फिर जैसे एक स्टूल रखें और पैर को ऐसे ऊपर करके बैठेंगे
0: जी।
1: और हमेशा हम लोग जैसे अक्सर ऐसा होता है ना बीपी शुगर वालों को लीवर इवर भी डिसफंक्शन होने का, किडनी लीवर खराब होने का डर रहता है
0: जी।
1: तो हम लोग उसको LFT RFT कराते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन में पेशाब में एल्ब्यूमिन वगैरह तो नहीं आ रहा है
0: जी,
1: ये सब देखने के लिए। और उसको ब्लड विजन तो नहीं हो रहा है, जैसे यदि आंखों में धुंधलापन आ रहा है बीपी ज्यादा होने से होता है अक्सर, तो हम उसको फिर आंख की जांच करने की भी सलाह देते हैं और अपने बीपी और शुगर को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं
0: जी। अब सीजेरियन और नॉर्मल की भी बात करते हैं, अक्सर महिलाएं चाहती हैं कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि सीजेरियन भी करना होता, तो ये जो निर्णय होता है सीजेरियन का ये किस समय पर निर्धारित होता है?
1: देखिए, डिलीवरी कैसी होगी अपन ना आखिरी तक कुछ नहीं बता सकते
0: जी।
1: जो डिलीवरी होती है, जो जज की रहती है ना, वो एन वक्त पे कई बार हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और वो सीजर में चली जाती है
0: जी।
1: और कई बार हम लोग को लगता है इसका सीजर लेंगे और अचानक उसको पेन्स आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी आती है
0: जी।
1: लेकिन जैसे कोई प्रीवियस स्कार है, प्रीवियस स्कार मतलब जिसका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है या जिसका बच्चा उल्टा है, है ना, या बीपी की शिकायत है या जिसको झटके आ रहे हैं या जिसको हम लोग पीवी करके देखते हैं अंदर से जो जांच करते हैं, तो यदि जांच करके देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि उनकी हड्डी छोटी है ना, CPD बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यदि उस टाइप का है तो हम लोग उसको पहले से बोलते हैं कि तुमको सीजर में जाओगे करके
0: जी।
1: और बाकी ऐसे तो पहले तो नॉर्मल ट्राई करते हैं
0: जी।
1: जब नॉर्मल नहीं होता या लगता है फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है
0: जी,
1: धड़कन कम, नॉर्मल जो धड़कन रहती है बच्चे की वो 120 से 160 के बीच में रहती है, यदि 120 से कम हो रहा है या 160 से ज्यादा हो रहा है तब हम लोग सोचते हैं कि इसका ऑपरेशन करेंगे। या कई बार क्या होता है, समय से पहले पानी की थैली फूट जाती है तो उसमें भी बच्चे को रिस्क रहता है कि बच्चा गंदा पानी पी लेता है, या कई बार बच्चा पेट में मेकोनियम पास करना बोलता, मतलब पेट में लेटरिन कर देते बच्चा, तो तब भी हम लोग फिर सीजर की सलाह देते हैं
0: जी। मैम, एक और चीज जानना चाहेंगे, आमतौर पर जचकी में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो खास तौर पर पहली बार माँ बन रही होती है उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन क्षण होता है, तो एक चिकित्सक के रूप में आपको क्या लगता है किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
1: देखिए, मैंने पहले ही बताया कि माँ बनना मतलब एक दूसरा जन्म होता है
0: जी,
1: इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि विद इन मिनट्स मतलब अनइवेंटफुल इवेंटफुल हो जाता है। हम लोगों को लगता है हम लोग सब एकदम बधाई देते रहते, बधाई हो बच्चा हुआ, माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, और सडन महिला की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और बाकी क्या होता है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, कई बार ज्यादा खून जाता है, उसको PPH बोलते हैं, डिलीवरी होने के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है महिला को, कई बार APH होता है, मतलब जो प्लेसेंटा जो फूल जिसमें बच्चा रहता है वो समय के पहले छूट जाता है, जिसको हम लोग एब्रप्ट प्लेसेंटा बोलते हैं, तो वो APH होता है, उसमें मतलब डिलीवरी होने के पहले ब्लीडिंग होना वो हो सकता है, उसको मरीज को झटके आ सकते हैं। कई बार जो गांव की महिलाएं रहती है उन लोगों को साधन नहीं मिलता, आजकल तो 102-108 रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को कई बार पता भी नहीं रहता है, या गाड़ी बुलाते कहीं इंगेज है तो
0: वो, और कई बार नॉर्मल दर्द समझ कर भी डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है,
1: नॉर्मल दर्द होकर करके उनको समझ में नहीं आता कि जो पहला बच्चा रहता है तो उनको लीवर पेन क्या होता पता नहीं रहता, तो वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, कई बार कई जगह पर डॉक्टर नहीं रहते होते हैं जी, है ना, कई बार खून की कमी आ जाती है, सूजन आती है, किसी किसी महिला को थोड़ी ज्यादा वोमिटिंग होती है, मतलब प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि जो चीज नहीं होता वो सब होता है
0: जी,
1: इस टाइप का, और सारी चीजें ज्यादा होती है मतलब
0: इस टाइप, इसलिए सावधानी बहुत,
1: हाँ इसलिए सावधानी बहुत जरूरी होती है और पहले से उनको, इसलिए तो हर महीने जांच कराना है और हर महीने गर्भवती जांच होती है, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सारे जो सरकारी संस्था तो वहां पे होती है और 9 तारीख और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चालू हुआ है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचाना है, इस टाइप की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, बीपी बढ़ा है, ट्विंस है, ट्विंस भी हाई रिस्क ही कहलाता है ना, बीपी, खून की कमी है, ब्रीच है, तो इन सबको छांटना
0: जी,
1: छटनी करना, तो उसमें पूरा मतलब गाड़ी मिलती है 102 से उन लोगों को फ्री में लाने ले जाना करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को नाश्ता खाना वगैरह भी मिलता है
0: जी,
1: और मितानी लोगों को मतलब सबको फ्री रहता है ये 9 तारीख और 24 तारीख को होता है
0: जी। ये जचकी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, क्या खास ख्याल परिवार के सदस्यों को रखना चाहिए?
1: देखिए जचकी के बाद जच्चा और बच्चा बहुत ही नाजुक होते हैं, है ना, और महिला में भी इम्यूनिटी कम होती है, तो लोग हम लोग को खास ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों की साफ सफाई रखना चाहिए, उन दोनों को, दोनों को गर्म रखना चाहिए, है ना, और उन लोग के दोनों के कपड़ों को डिटॉल में धो के करना चाहिए, बच्चे को हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए, हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए और एक एक तरफ के दूध को 20-20 मिनट कम से कम पिलाना चाहिए, मतलब शुरू का दूध और जो आखिरी का दूध रहता है वो, और जैसे डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के आधे घंटे के अंदर हर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं हम लोगों को, तो वो जरूर देना चाहिए, स्तन को अच्छे से साफ करके और तुरंत उसको पिलाना चाहिए हम लोगों को, डब्बे का दूध नहीं पिलाना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद हमको उसको डकार दिलाना चाहिए बच्चे को, और कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना है, हमेशा बैठ के दूध पिलाना है, रात को भी दूध पिलाना है तो उसको बैठ के दूध पिलाएंगे, है ना, और जो घाव वगैरह रहता है जैसा नीचे नॉर्मल डिलीवरी में कई बार नीचे एपिजोटॉमी लगा रहता है और सीजर में तो ऊपर पेट रहते, उसको डेटॉल से धोके अच्छे से ट्यूब वगैरह लगा के घाव को सूखा रखना है हमको
0: जी,
1: ऐसे करके, और बच्चे लोगों को साफ सफाई, ज्यादा लोगों को छूना नहीं चाहिए, चूमना नहीं चाहिए, उससे ही बच्चे को इन्फेक्शन होता है, जो नाल रहती है नाल में जैसे लगाते हैं कई लोग कुछ लगाते रहते
0: हैं,
1: हमको कुछ भी चीज लगाना, नाल को सूखा रखना है, ज्यादा है तो अपन ऐसे पाउडर जो रहता है बीटाडीन पाउडर वगैरह वो बस छिड़क सकते हैं अपन
0: जी,
1: बाकी कुछ नहीं लगाना
0: जी। एक और सवाल उठता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस समय में खाने की चाहत बहुत ज्यादा होती है और इसी समय रोक टोक भी बहुत ज्यादा होती है, परहेज भी इसी समय कहा जाता है, तो एक चिकित्सक होने के नाते आपको क्या लगता है गर्भावस्था के समय किस खास बात का ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए?
1: देखिए हम लोग तो हमेशा उनको पौष्टिक आहार खाने की सलाह देते हैं
0: जी,
1: जो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जैसे आयरन और कैल्शियम रिच होना चाहिए
0: जी,
1: है ना, तो हर कोई तो काजू बादाम तो नहीं खा सकते ना, तो जैसे महिला आ जाता है हम लोग को चना गुड़ खाने के लिए बोलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं, जैसे अंकुरित है अंकुरित कर लो उसको खा सकते हैं, अंजीर है उसको दूध में अंजीर को भिगा दे और 2-3 अंजीर और 6-7 किशमिश को डाल के उसको खा लो, उससे खून की कमी पूरी होती है, सलाद खाना चाहिए
0: जी,
1: तो ये चीज हम लोग पौष्टिक आहार खाने के लिए देते हैं सलाह
0: जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है मानसिक रूप से स्वस्थ होना महिला का, और वो कितना असर डालता है, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा कि आपने कहा भी अपने जवाब में कि आजकल जो महिलाएं हैं, एक तो विवाह बहुत देर से हो रहे हैं, उस वजह से मां बनने की प्रक्रिया भी काफी देर से होती है, उस समय जब खुद के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उस समय माँ को मानसिक रूप से खुद को कैसे स्वस्थ रखना है और परिवार की क्या भूमिका उस समय होनी चाहिए?
1: देखिए उस समय जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद और पहले का समय जो रहता है
0: जी,
1: उसमें बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, पूरे हार्मोन्स चेंजेस होता है महिला को, जो मतलब खुद एक लड़की होती है वो माँ बनती है
0: जी,
1: तो उनके शारीरिक में भी बहुत चेंजेस आता है
0: जी,
1: और फिर उसमें भी एक जिम्मेदारी आ जाती है ना
0: जी,
1: जो कभी जानती नहीं, छोटे से बच्चे को पकड़ना, उसको संभाल के खिलाना वो करना, तो उसमें हम लोगों को सबको जो घर वाले रहते हैं उन लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए किस टाइप से करना है क्या करना चाहिए, और पौष्टिक आहार लेने की सलाह देना चाहिए। अक्सर महिलाएं तो साइको टाइप की हो जाती है कई बार, और कई महिलाएं ऐसे थे जो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर होती है वो एकदम तेज हो जाती है, मतलब हार्मोन इम्बेलेंस होने के कारण बहुत सारा उनके दिमाग पर असर करता है महिलाओं पर
0: जी।
1: और कई बार एकदम, तो हम लोग को उनको मेंटली सपोर्ट देना है और लोगों को समझाना है कि भाई जो बुजुर्ग रहते हैं वो बुजुर्ग नहीं बता सकते ना कि आपको ऐसे रहना है, ये चीजें खाने पीना है, आराम करना है, बच्चे को ऐसे देखना है, वो हम लोग यदि मतलब घर वाले यदि साथ देंगे तो महिला मुझे लगता है कि वो अच्छे से कर सकती है उसको
0: जी। एक और समस्या जो आमतौर पर सुनने को आती है कि बहुत सारी महिलाएं जचकी के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या उन्हें ये लगता है कि हमको हर कोई सलाह देने लगा है, तो वो दूसरों से अपना संवाद नहीं करती या वो अंदर ही अंदर घुटती चली जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो जीवन जो है उनका समाप्त हो चुका है, अब वो परतंत्र हो गई है, उन्हें दूसरे के हिसाब से जीवन जीना है। ऐसी महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: इसलिए तो मैडम अपने को काउंसलिंग करना चाहिए उनकी
0: जी,
1: उनको काउंसलिंग करके उनको समझाना है कि ये जो चीज़ें वो आपके भलाई के लिए ही है, है ना। कई बार उन लोग को लगता है, वैसे भी आजकल के बच्चे तो सुनना नहीं चाहते हैं ना
0: जी,
1: उन लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं
0: जी,
1: तो लेकिन अपन को उन लोग को ना मतलब समझाना है कि भाई ये आपकी भलाई के लिए और आपके बच्चे की भलाई के लिए, इससे ये फायदे होंगे, नुकसान हो सकता है यदि ऐसा करोगे करके। तो इसलिए हम लोग हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब सरकारी संस्थाओं में काउंसलर रहती है
0: जी,
1: तो वो काउंसलर उनको बताती है, समझाती है अच्छे से, और घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनके अच्छे से काउंसलिंग करें और उनको समझाएं
0: जी। हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: सेहत की बातें इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जचकी के दौरान होने वाली समस्याएं, कारण और निदान। विशेषज्ञ थी डॉक्टर विनीता धुर्वे, भेंटकर्ता थी आकांक्षा दुबे। स्वस्थ जचकी हो और नन्हे मुन्नों की किलकारियां घर आंगन में गूंजे, इसी पर आधारित थी ये भेंटवार्ता। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें है खूबसूरत सा संदेश।

फिल्म अनाड़ी का गीत समीर के लिखे बोल थे और संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। और घर पर बेटे का जन्म हो या बेटी का स्वागत उसका दिल से होना चाहिए था, ये था इसका संदेश। और इस गीत की फरमाइश थी हमारे इन श्रोता बहनों की, मान की बाई देवांगन, ओमलता, आशा, लक्ष्मी, सेजल, काव्या और तेजस्वी देवांगन, ये श्रोता बहनें हैं धमतरी से। इस गीत को सुनना चाहते थे शीतला नगर दुर्ग से अर्पा, पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर, साथ ही मां माया पारा दुरचुरा से इसे सुनना चाहती थी भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन और कामेश्वरी कुमारी। बहनों आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। दुनिया भर में लाखों लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर को लोग बहुत हल्के में लेते हैं जबकि इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। यदि दिल का दौरा पड़ता है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, किडनी से जुड़ी कोई समस्या होती है तो ऐसा माना जाता है कि इसका कारण है हाइपरटेंशन जो कि गंभीर बीमारी कहलाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, नमक सीमित मात्रा में खाएं, डॉक्टर की सलाह लें, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक ज़रूर करना चाहिए। योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। 30 वर्ष की आयु के बाद नियमित व्यायाम करना जरूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अगली बिंदिया का इंतजार करें। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सभी को आकांक्षा का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। बोल लिखे हैं SH बिहारी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है शूरवीर।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: मरते दम तक। आइए सुनते इस फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी

0: जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर

0: से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोर कुमार और सपना मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जाबाज़।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा है गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है उलझन।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में लीजिए सुनते हैं फिल्म निशान का ये गीत। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है राजेश रोशन का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

आपस की बात। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के स्वर में। बोल लिखे हैं दयानाथ पांडे ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना वर्मा मलिक का लिखा है गीत। आवाजी थी किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, अब ये सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में हम अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं कक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता पर प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन का शुल्क कम कर दिया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बू जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands elevated their ties to a strategic partnership and inked 17 agreements to boost cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
3: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
2: His remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah termed AI and deep tech as the main pillars of the future economy, inaugurating the Million Minds Tech Park Phase 1 and Gremi City Campus in Ahmedabad, Gujarat. Today, he said that India has become a leader in every emerging sector of the world.
4: In the coming 25 years, the sectors that will give direction to the global economy and the global financial system, in all those sectors, India is today marking its strong presence as a founder. And this itself shows that the future of India is very bright. For the future of AI and deep tech, tech parks like these will do a very great job and will also take this forward.
2: Mr. Shah, who is on a two-day visit to Gujarat, will also inaugurate the Innovation and Incubation Center of the National Institute of Design in Gandhinagar today. The field operations for house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in five states and union territories. These states and UTs are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving two rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in two rear coaches, which include one guard coach and one AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO, in a social media post, clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has created history by climbing Mount Everest for a record 32nd time today. The 56-year-old climber broke his own record for the highest number of ascents of the world's tallest peak. Born in Solukhumbu district of Nepal's Koshi province, Kami Rita began his mountaineering career in 1992 and first climbed Everest in 1994. He completed his 31st ascent on May 27 last year. And that is the end of this news bulletin.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश अमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया। वहाँ मिला मैं उनको लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ, तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, अब मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया। बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है। तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदाताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा। और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
2: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: अबुझमाण में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय, फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुझमाण में गए थे। और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं, बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना और उसको जहाँ ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबुझमाण में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे तो उनका आना ही इतना कठिन था। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गिदम है, मैं 4-4 महीना में गिदम नहीं आता था, मैं बारसूर में ही बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है, ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
2: मैडम आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ आपने क्या देखा और वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
3: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तकत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़

0: करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है कभी कभी, कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे, सब जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा? आबूझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए।
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी आबूझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है। और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। आबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद, तो 3 दिन के बाद जाते तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया। तो बोला हमारा एक साला है दूर से आया, आबूझमाड़ से, वो आया है, वो देखा और वो 4-5 के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। आबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो आबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया था?
0: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांवों में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी गुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है, वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं, वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया, उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास नाम से अलग स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम आबूझमाड़ या आबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, तो वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं, उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देख

0: जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है, और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है, उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2006। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

लीजिए सुनिए नगमा फिल्म कारवां से, स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और समय हो गया है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
1: मैं काशवी अहूजा।
2: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं राध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मैं लक्षिता शर्मा।
9: मैं अनाया जैन।
10: मैं सौम्या।
11: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम तुषार अत्री है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
0: अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं, काम के लिए रेडी हो रहे हैं या ट्रैफिक में फंसकर सिग्नल का वेट कर रहे हैं, तो बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि कुछ पल सिर्फ शुरू नहीं होते, वो दिन बना देते हैं, वो वाइब सेट कर देते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही एक खास पल है।
6: मैं हूँ आराध्या। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज रेडियो स्टेशन पर कब्जा है हम बच्चों का।
4: बिल्कुल सही कहा आराध्या। और हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी के छात्र।
5: आज हम बात कर रहे उस देश की जिसे आजाद हुए 89 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी की ज्वाला 150 वर्ष पहले ही वंदे मातरम के रूप से धधकना शुरू हो गई थी।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें यह गीत पहली बार आया था, वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। यानी वह गीत महज एक कविता नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति की गूंज थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज इस गीत से इतना डर गए थे कि उन्होंने इसके गाने और छपने दोनों पर बैन लगा दिया था। उस दौर में अगर आप सड़क पर वंदे मातरम बोल देते तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती। पर कहते हैं ना, जिस चीज पर पाबंदी हो उसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रांतिकारियों ने तो विदेशों में तिरंगे झंडे पर वंदे मातरम लिखवा दिया। यह महज एक नारा नहीं, आजादी का विजुअल सिंबल बन गया था। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 की उस ऐतिहासिक दिन पर, जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ लफ्जों में कहा कि भले ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम को भी उसके बराबर का सम्मान दिया जाएगा, इसलिए आज इसे हमारा राष्ट्रगीत कहा जाता है।

0: दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे की, जिसने 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए आज मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ। आज हम 5G के युग में हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का असली जन्म आज से 161 साल पहले यानी 17 मई 1865 में हुआ था। उस वक्त ना इंटरनेट था ना कोई स्मार्टफोन, सिर्फ एक तार के जरिए संदेश भेजे जाते थे जिसे आज हम टेलीग्राफ कहते हैं। इसी दिन पेरिस में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की नींव रखी गई थी, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। तो अब तुम बताओ राध्या, क्या कहना चाहती हो?
1: सोचो रिद्या, उसे छोटे से तार से शुरू हुआ सफर आज सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर तक पहुंच गया है। आज दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, और इसमें हमारा रेडियो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो बिना किसी डाटा पैक के आप तक हर जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। तो आज अपने फोन या रेडियो को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि वही तो वो जरिया है जिसने हमें अकेला नहीं होने दिया।

0: अब समय है एक सुंदर और गर्व से भरी प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है काशवी, कविता के साथ जिसका विषय है मेरा प्यारा भारत। ये कविता हमारे देश की एकता, संस्कृति और शान को दर्शाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए काशवी का।
1: मेरी कविता का नाम है मेरा प्यारा भारत अपना। इस संसार की अद्भुत रचना, इस संसार की अद्भुत रचना मेरा प्यारा भारत। इस भारत की धरती से निकला, इस भारत की धरती से निकला अप्रतिम ज्ञान प्रकाश, अप्रतिम ज्ञान प्रकाश। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, ऋषियों मुनियों की तपोभूमि और मानवता का आस। वेद उपनिषद पुराणों ने दिया, वेद उपनिषद पुराणों ने दिया विश्व को ज्ञान भंडार। योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार, योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार। जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार, जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार। शांति हो त्रिभुवन में, शांति हो त्रिभुवन में, प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के कण कण में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। तेन तेन पूंजिता हमें उपनिषद ने सिखलाया, महावीर और बुद्ध ने करुणा दया का मार्ग बतलाया। अहिंसा के पुजारी बन गांधी ने सत्य का मार्ग बतलाया। अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया, अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया। विचार भेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं करना है, लेकिन मन भेद नहीं करना है। यही भारत भूमि का सपना है मेरा भारत अपना है। यही भारत भूमि का सपना है मेरा भारत अपना है। धन्यवाद।

0: तो दोस्तों अब प्रस्तुत है राजा राम मोहन रॉय पर एक स्किट।
1: नहीं नहीं, मुझे चिता पर नहीं बैठना।
2: यही हमारा धर्म है, इस विधवा को अपनी पति की चिता पर बैठना ही होगा, यही संस्कार है।
3: नहीं, ये संस्कार नहीं, ये हत्या है। कौन सा धर्म एक निर्दोष की बलि मांगता है? शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, वो प्रेम सिखाते हैं, क्रूरता नहीं।
2: तुम हमें सिखाओगे? तुमने अंग्रेजी पढ़ ली तो क्या धर्म भूल गए?
3: मैंने अंग्रेजी पढ़ी ताकि मैं दुनिया को जान सकूं, और उपनिषद पढ़े ताकि अपने मूल को पहचान सकूं। तर्क ही मेरा ईश्वर है।
4: राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा का ही विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की, बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला। उन्हें मॉडर्न इंडिया का जनक भी कहा जाता है।
0: वाह, क्या व्यक्तित्व था। दोस्तों क्या तुम्हें पता है, राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट ने दी थी। वो कई भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश। आज CRPF स्कूल रोहिणी के छात्र इस किट के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
4: राजा राम मोहन रॉय ने हमें सिखाया कि तर्क के बिना कोई भी परंपरा सिर्फ एक बोझ है। उनकी विरासत आज भी हमें एक बेहतर समानतावादी समाज बनाने की प्रेरणा देती है।
0: तो दोस्तों कैसा लगा हमारा छोटा सा सफरनामा?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नाडो और डेनियल मॉर्थिन की जोड़ी ने 12-21, 23-25 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक

सशक्त माध्यम रहा है जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: News in Hindi. समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। अर्नेट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। अर्नेट इंडिया नियमित आधार पर कुछ पदों को भरना चाहती है। पद का नाम वरिष्ठ प्रबंधक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग के लिए स्तर 13 के अंतर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह क, एक स्थान अनारक्षित स्तर 10, तकनीकी सहायक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग स्तर 6, सहायक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग स्तर 6, निजी सहायक समूह क, एक स्थान अनारक्षित स्तर 6। आवेदन इस विज्ञापन के प्रसारण के 30 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए। कोई भी संशोधन परिवर्तन अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली नियम के तहत अनुमत पात्र भारतीय अन्य नागरिकों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 26 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपलब्ध पदों, निर्धारित भर्ती नियमों और इन पदों के लिए सामान्य नियम एवं शर्तों के बारे में विस्तार में जानकारी अगर आपको चाहिए तो एम्स नई दिल्ली की दो वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, www.aimsexams.ac.in, www.aims.edu। इस संबंध में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप वेबसाइट विजिट करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख होगी 11 जून 2026। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विकास स्कंध में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद को प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित द्वारा भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि 7वें सीपीसी के अनुसार लेवल 12 एक सामान्य केंद्र सेवा समूह का राजपत्रित पद है। ये आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक क्वालिफिकेशन अनुभव इससे संबंधित विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर करियर लिंक के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों के आवेदन इस प्रसारण के 60 दिनों के अंदर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कमरा संख्या 439 परिवहन भवन 1 संसद मार्ग नई दिल्ली 110001 को भेजे। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस, रिक्ति 1 होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु ये है कैंपस, रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है, हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा।

श्रोताओं, आज 17 मई है और आज का दिन भारतीय संगीत की दुनिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज जयंती है उस फनकार की जिन्होंने गजल को बड़े बड़े दीवान खानों और महफिलों से निकालकर सीधे आम आदमी के स्टीरियो और वॉकमैन तक पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखमली आवाज के शहंशाह पद्म भूषण पंकज उदास जी की।

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम पंकज उधास के साथ साथ अन्य कई प्रमुख हस्तियों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले आज के डेटलाइन में हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की। आज हाई ब्लड प्रेशर दिवस है। हर साल 17 मई को दुनिया भर के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो जया। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Jaya Bharti.

0: And today we of course celebrate his birth anniversaries, and also Jaya was mentioning, we have a lot to look forward to in a program, and we will of course talk about Pankaj Udas later in a program, but first we begin with the news headlines at this hour.
1: बिल्कुल अभिषेक, तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्नस के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे।
0: India Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership, 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas.
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक इन कॉन्गो एंड युगांडा अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। एंड आईएमडी इश्यूज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अलर्ट एट आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टुडे।
1: और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा।
0: And now listeners, it's time for a segment, Dateline India.

0: which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about World Hypertension Day. Well, Ajaya, every year on 17th of May, the world comes together to observe World Hypertension Day. The day is about a health condition that quietly enters millions of lives without warning, without pain, and often without symptoms.
1: बिल्कुल, और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है चिकित्सा जगत में, क्योंकि कई सालों तक इसके कोई चेतावनी संकेत नहीं दिखाई देते हैं. ना कोई दर्द, ना कोई साफ साफ बेचैनी, और ना ही कोई ऐसा संकेत जिससे कि पता चले कि कुछ गड़बड़ है.
0: बट व्हेन द ब्लड प्रेशर राइजेस डेंजरसली हाई, योर बॉडी में स्टार्ट सेंडिंग डिस्ट्रेस सिग्नल्स लाइक सीवियर हेडेक्स, chest pains, dizziness, blood vision, seizures or confusion. And if your BP shoots up to extremely high levels along with these symptoms, it could be a hypertensive emergency and needs immediate medical attention.
1: लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई चीज इतनी खतरनाक है तो भी इतने सारे लोग उसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए. वो अंकल जो जब भी कोई उनसे हेल्थ चेकअप करवाने को कहता है तो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है. और वो ऑफिस जाने वाले फ्रेंड्स आपके जो चेकअप हेल्थ नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उसे काम ज्यादा जरूरी लगता है. और हम सबकी माँ जो सबकी सेहत का ध्यान रखती है लेकिन कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाती.
0: बिकॉज व्हाट इफ द बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इज द वन दैट स्टेज कंप्लीटली साइलेंट. दिस ईयर्स थीम फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेज इट क्लियरली. कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर. And that word together matters deeply because controlling hypertension is not only a doctor's responsibility.
1: बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत घर से ही होती है. डाइनिंग टेबल पर, सुबह की सैर के दौरान, काम करने की जगहों पर यानी वर्क प्लेस पर, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर, और उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं.
0: And today nearly 1.4 billion people across the world are living with hypertension. Yet many don't even know they have it. Some discover it only after a heart attack, a stroke or a serious kidney problem.
1: और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ब्लड प्रेशर की जांच में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ मिनट जिंदगी के कई साल बचा सकते हैं. गांव में एक साधारण स्क्रीनिंग कैंप, काम की जगह पर एक नियमित स्वास्थ्य जांच,
0: और अ डिजिटल बीपी मॉनिटर एट होम, एंड दिस स्मॉल एक्शंस कैन प्रिवेंट लाइफ चेंजिंग कॉम्प्लिकेशंस. बट लिसनर्स, द गुड न्यूज इज दैट हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड, एंड दैट टू नॉट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स, नॉट थ्रू एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस, बट थ्रू स्टेडी प्रैक्टिकल हैबिट्स.
1: बिल्कुल, और ये जो प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं ना, बहुत छोटे छोटे हैं, बिना किसी खर्च के, जैसे कि कम नमक का खाना, ज़्यादातर घर का बना हुआ खाना चुनें, लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय रोज़ पैदल चलना सीखें, तंबाकू से बचें और शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें, और डॉक्टर द्वारा बताई गई जो दवाएं हैं ना वो भी नियमित रूप से ले लें. और ये जो छोटे छोटे कदम है ना, इनसे ही हम अपनी जीवन को बचा सकते हैं. लेकिन जब हम एक साथ मिलते हैं और ये तो ये दिल, दिमाग और जो किडनी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाते हैं.
0: And take the example of a school teacher in her late 40s. She constantly felt tired but blamed it on a busy schedule. And during a routine community health camp, her blood pressure turned out to be dangerously high. With the regular medicines, morning walks and some dietary changes, her condition came under control within months.
1: और एक हेल्थ चेकअप ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी. लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद क्या होता है? क्योंकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना कोई एक बार का काम नहीं है. इसके लिए जिंदगी भर की देखभाल, रेगुलर फॉलोअप, सस्ती दवाएं और लगातार मदद की जरूरत होती है. किसी भी मरीज को दवाएं खरीदने और घर के खर्च चलाने के बीच किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए.
0: Indeed, a person living in a rural area should not struggle to access basic blood pressure screening. Healthcare must reach everyone equally, and that is why strengthening primary healthcare systems is so important.
1: और विश्व हाइपरटेंशन दिवस सिर्फ जानकारी फैलाने के बारे में नहीं है या कुछ करने के बारे में है. ऐसा काम जो परिवारों को एक दूसरे को हेल्थ चेकअप की याद दिलाने के लिए प्रोत्साहित करे, ऐसा काम जो समुदायों को ब्लड प्रेशर की जांच के कैंप लगाने के लिए प्रेरित करे, ऐसा काम जो लोगों को यह समझने में मदद करे कि नॉर्मल महसूस करने का मतलब हमेशा स्वस्थ होना नहीं होता है.
0: सो टुडे आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू चेक्ड योर ब्लड प्रेशर, एंड मे बी मोर इम्पोर्टेंटली, Have you reminded your parents, your friends, or your loved ones to check
1: क्योंकि इस खामोश कातिल को हराने की शुरुआत जागरूकता से होती है, तो यह नियमित निगरानी के साथ जारी रहता है और यह तब सफल होता है जब हम सब मिलकर काम करते हैं।
0: So to conclude our discussion today on World Hypertension Day, Jaya, this World Hypertension Day, let us not wait for symptoms to speak. Let us listen before the body is forced to cry for help. Check your blood pressure regularly. Encourage others to do the same, because a small habit today can protect countless tomorrows.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
0: Yes, PM Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to India. And well, India and Sweden are in different hemispheres of the globe, but a very common and simple tradition connects them. That is the love for the beloved beverage, and it is chai for India and coffee for Sweden. And it is not a beverage, but a ritual to bridge the barriers and to have a warm conversation. We have a report.
2: Tea is not just a drink for Indians. We serve those who visit us. We offer tea to those with whom we talk, discuss and share things. There is no time decided for it. It may be just a drink, but big decisions are built over a cup of tea. Same, but with a coffee. And we are witnessing the fika culture of Sweden. Fika in Sweden is not just about coffee and snacks, but a cultural ritual of slowing down and spending meaningful time with others. Whether in the office, homes or cafes, fika is considered an important part of social and professional life. Cafe will be bursting with chatters and people joining in for conversations everywhere. The best part is that fika is institutionalized, encouraging employees to step away from work briefly to refresh and reconnect. A representation of shared warmth, inclusion and togetherness. India's chai culture and Sweden's fika may come from different parts of the world, but both reflect a shared philosophy, taking time to connect, pause and build relationships over a warm beverage. With Sakshi Singh's report from Sweden's Gothenburg, Subhadra Ramachandran for Parikrama.
1: और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां स्थित भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं तो मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद। इस विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला को मां सरस्वती यानी मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 15 मई को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस परिसर का धार्मिक स्वरूप मां सरस्वती के मंदिर के रूप में है और वक्त के साथ यहां हिंदू पूजा की परंपरा कभी नहीं टूटी। अदालत ने ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक सबूतों और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों को आधार बनाते हुए यह नतीजा निकाला। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया है। मुस्लिम पक्ष, जो इस जगह को कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है, उसे कोर्ट ने कहा है कि अगर वे धार जिले में मस्जिद या नमाज की जगह के लिए जमीन चाहते हैं तो राज्य सरकार से आवेदन कर सकते हैं। फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा,
4: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
3: भोजशाला ASI के संरक्षण में एक ऐतिहासिक परिसर है। साल 2003 से चली आ रही व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की इजाजत थी। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सहित कई याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे और 2024 में ASI ने 98 दिनों तक परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया। इसके बाद कई दिनों तक कोर्ट में बहस हुई और आखिर में 15 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से अभिनव गोयल।
0: Prime Minister Narendra Modi's clarion call urging citizens to rethink non-essential foreign travel is expected to boost tourism in Odisha, which is known for its rich cultural heritage, spiritual legacy and pristine beaches. Stakeholders of Odisha's travel and tourism industry are hopeful of a sharp rise in domestic tourist arrivals. We have more from a correspondent.
5: Tourism stakeholders believe the appeal could particularly benefit destinations such as Puri, Konark Sun Temple, Chilka Lake, Simlipal National Park, Satkosia Tiger Reserve and Bhitarkaringa National Park. Commenting on the opportunities, Benjamin Simon, founder of Odisha-based Travel Link, says,
6: "The recent clarion call by the Honorable Prime Minister asking Indians to skip foreign travel for a year due to the uncertainty prevailing around the globe is an opportunity for the tourism and hospitality industry to take it in a positive note and promote tourism within the state, which has the fascinating beauty of our natural and cultural heritage that can be showcased to our own people to explore the backyard and have their travel experience fulfilled. So I see a very positive growth for this, for all the segments."
5: Odisha is widely known for its religious heritage and cultural tourism. Coastal and marine tourism have also emerged as a high growth sector, supported by Odisha's diverse seascapes, heritage sites and adventure tourism potential. Tourism contributes nearly 13% to the state's gross domestic product and supports thousands of livelihoods linked to hospitality, transport and allied services. In a bid to strengthen its tourism identity, the State Tourism Department has recently unveiled a new brand tagline, "Think India, Think Odisha." With 378 tourist destinations spread across all 30 districts, Odisha offers visitors a unique blend of pristine beaches, majestic temples, waterfalls, forest and vibrant tribal culture. The Odisha Tourism Amendment Policy 2026 also aims to transform the state into a leading eco and cultural tourism hub in Asia by 2047, with a target of attracting 5 crore domestic tourists and 7 lakh foreign tourists annually. As more tourists look to discover the beauty of our own country, Odisha stands ready with its timeless heritage, natural wonders and warm hospitality to welcome travelers from across the nation. For Parikrama, Nirmalya Behra for Akashvani Cuttack.
1: और कटक से चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को गोडावण दिवस मनाया जाएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इस पक्षी के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। विलुप्त होते इस पक्षी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है, सुनते हैं रिपोर्ट।
7: विलुप्त प्राय पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित ब्रीडिंग सेंटर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में इजाफा हो रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा और सम में बने इन प्रजनन केंद्रों में नेचुरल मेटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक के जरिए नए चूजे पैदा हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से अब तक 26 चूजों का जन्म हो चुका है। इसके साथ ही इनकी संख्या 86 हो गई है। भविष्य में इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने इनकी संख्या में बढ़ोतरी पर खुशी व्यक्त की थी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
1: अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कल शिलान्यास किया। 393 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम गोरखपुर के ताल नदौर में बनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के बगल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा की है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 60 एकड़ भूमि में बनेगा। एक रिपोर्ट।
8: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां 46 एकड़ भूमि में 30,000 दर्शकों की क्षमता का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बनेगा ही, इसके बगल की 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। इसमें हर तरह के इंडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहां हॉकी और अन्य आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे। श्री योगी ने कहा कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास होटल, रेस्तरा और बाजार की नई श्रृंखला विकसित की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश और प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गोरखपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम युवाओं के सपनों और संभावनाओं को नई दिशा देगा। ताल नदौर में बनाए जा रहे इस स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट मैच भी हो सकेंगे। स्टेडियम निर्माण का कार्य लगभग 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेम चंद्र गुप्ता।
1: और अब बात करते हैं कुछ खेल खबरों की। थाईलैंड ओपन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कोर्नाडो और डेनियल मार्थिन की जोड़ी से 21-12, 25-23 से हार का सामना करना पड़ा।
0: And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru were 170 for 3 in 16.2 overs against Punjab Kings in Dharamshala when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. In another match, host Delhi Capitals will face Rajasthan Royals this evening. The match will begin at 7:30 p.m.
1: श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
9: We remember freedom fighter Daulat Rao Naik, who was killed by the British police on the 17th of May 1879. He was an active member of the Ramoshi group founded by legendary Marathi freedom fighter Vasudev Balwant Phadke.
10: Daulat Rao Naik hailed from Satara, Maharashtra. He joined Vasudev Balwant Phadke's Ramoshi revolutionary group in 1879. He participated in several operations on British businessmen in Pune to obtain funds for managing the revolutionary activities. Daulat Rao Naik was killed in a skirmish with the British police at Talegaon on the 17th of May 1879. We salute the great martyr. We also remember martyr Sher Muhammad Khan, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He also organized a group of independence activists to attack the British establishments for seizing their properties and arms. He was caught by company troops in an encounter and charged with plundering the government properties and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for life with hard labor and irons. Sher Muhammad Khan died at the cellular jail in the Andaman Islands on the 17th of May 1858. We salute the great son of the soil.
9: The Treaty of Salbai, which ended the First Anglo-Maratha War, was signed on the 17th of May 1782 between the British East India Company and the Marathas. Salbai is situated in Gwalior district, Madhya Pradesh.
10: Maratha ruler Mahadaji Sindhya made an agreement with the English in October 1781 by which he agreed to negotiate with the Pune Council for a treaty with the English. The negotiations started in early 1782. According to the terms of the treaty, the English retained Salseth, an island in Maharashtra. Mahadaji Sindhya got back all his territory west of the river Yamuna, and that both parties returned each other's territory conquered during the course of war in South India.
9: The Treaty of Salbai formed a turning point in the history of English rule in India. While the English only gained the island of Salsette, it emboldened the British as they had gained the upper edge against the strongest power in India at that point of time.
1: इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें मूर्तियों में जीवंतता फूंकने यानी कि बोलती हुई मूर्तियां बनाने के लिए याद किया जाता है। कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1961 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से अलंकृत किया था। उनकी बनाई प्रतिमाएं आज भी कई शहरों के मुख्य चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रही है। और सबसे खास बात यह है ना कि फड़के केवल एक मूर्तिकार नहीं थे, बल्कि वे कला के अन्य रूपों में भी पारंगत थे। वे एक कुशल चित्रकार थे और लेखक थे। वे एक बेहतरीन तबला वादक और संगीत विशेषज्ञ भी थे।

0: Yes, Mario Benedetti passed away on this day in 2009. He was a celebrated Uruguayan journalist, novelist, and poet, regarded as one of Latin America's most influential and beloved writers of the late 20th century. A key voice of Uruguay's intellectual generation of 45, he authored over 80 books, spans poetry, drama, fiction, and essays. While his colloquial, accessible writing style garnered massive commercial success and sell-out crowds across the Spanish-speaking world, his work remains less widely known in English.
1: आज का दिन हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास के लिए भी एक महापर्व है. आज जयंती है हिंदी भाषा विज्ञान के जनक, महान इतिहासकार, साहित्यकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पहले विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की. श्रोताओं, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर कवियों और कहानीकारों को याद करते हैं, लेकिन भाषा को एक वैज्ञानिक आधार देना, उनका इतिहास लिखना और उसे दुनिया के सब सामने एक प्रामाणिक के रूप में पेश करना कितना मुश्किल काम है, यह हमने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के काम को देखकर समझ आता है. 1897 में उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि पाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का मान बढ़ाया. साल 1933 में आई उनकी किताब हिंदी भाषा का इतिहास आज भी भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है.
0: Yes, and we're also remembering Johnny Guitar Watson, who passed on this day in 1996. He was an American musician and singer-songwriter whose prolific 40-year career bridged the worlds of blues, rhythm and blues, R&B, soul and funk. A flamboyant showman, Watson was both a virtuosic guitarist and a skilled pianist. He is widely celebrated as a massive influence on modern music, inspiring generation of artists ranging from Frank Zappa and Jimi Hendrix to Prince and the pioneers of hip-hop. Let's listen in to a hit track of his.

0: Yes, and Prakash Mehra passed away on this day in 2009. He was a legendary Indian film director and producer, often regarded as a pioneer of the Bollywood masala film. He is best known for his highly successful collaborations with Amitabh Bachchan, which famously established Bachchan's iconic angry young man persona. Let's listen a dialogue. Listen into a dialogue from the film Namak Halal.
1: बाबू जी हम चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है, लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पासिंग गांव में सबसे अपन नंबर आए थे। हमारे गांव में हमारे दद्दू और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े, बाकी कोई चौथी पास नहीं। खैर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको तीन बातें सिखाई। पहली बात, पराई औरत पराई दौलत में हाथ नहीं रखना। हाँ, दूसरी बात, जिसका नमक का उसकी नमक हलाली करना। तीसरी बात, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना। बोलो हमारे दद्दू।
2: आज बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की भी जयंती है जिन्होंने अपने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और प्यारी से मुस्कान से 70 और 80 के दशक में सिनेमा घरों में खूब ठहाके लगवाए। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिंदी सिनेमा के पितामह अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि की लाडली बेटी और बेहतरीन कॉमेडियन प्रीति गांगुली जी की।

क्या बात है, फिल्म खट्टा मीठा का नाम आते ही सबसे पहले चेहरा याद आता है वह गोल मटोल और चुलबुली लड़की फ्रेनी सेठना का। श्रोताओं, प्रीति जी के खून में ही एक्टिंग और एंटरटेनमेंट था। हालांकि उन्होंने कभी अपने परिवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर खेल खेल में चोर के घर और दामाद आहुति जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया।

0: बिल्कुल, इस गाने ने हर भारतीय के घर घर में अपना जगह बनाया और गजल को महफिलों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने वाले पंकज उदास जी को आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से संगीत के सफर का 4 दशकों से अधिक लंबा समय बिताया।
1: So with that, we'll wrap up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us from Jaya Bharti.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघीटी, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, गढ़गांव, बैगहवा, बैडाण, कंडराजा, चोरकी, पानी के क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विवेक सोनार का बांसुरी वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर, इसमें आजकल में आप सुनेंगे लक्ष्य निर्धारण और उसे हासिल करने की रणनीति, इस पर चर्चा। आज मेरी बारी है में बारी होगी हिमल पांडे की और आप सुनेंगे नए तराने। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में आज सुनिएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडे जिले की चिट्ठी, आलेख विनायक नागवंशी का। कानून की बात, इसमें आप सुनेंगे जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार, इस विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से भेंटवार्ता। यह आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी, प्रसारण समय शाम 6:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे श्रोताओं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज शाम 7:21 पर किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, इसमें आप सुनेंगे आज की बात में अच्छे स्वास्थ्य खातिर पोषण पर गृह वाटिका अपनाएं, इस पर चर्चा। आज की सलाह में फसलों में रोग पहचान के आसान घरेलू तरीके। डॉक्टर सोनल कुमार चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा दुर्ग की सलाह। इसके अलावा आप सुनेंगे गीत संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी सुमन शुक्ला। और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुति शीतल अटकड़ी की होगी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ के लोक सुर, आलेख संपादन और प्रस्तुति वीरभान साहू की, संयोजक होंगे पंकज मेश्राम। कल सुबह 9:00 सुनिएगा कविता पाठ, कवि होंगे विजय दिल्लीवार। सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के कलाकार होंगे अंबर कुमार देव। और शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा शंकर शंभू को। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा दया शंकर और साथियों का बजाया शहनाई वादन, राग होगा गुजरी तोड़ी। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित पृथ्वी राजकुमार का पखावज पर बजाया ताल धमार। 11:05 पर आप सुनेंगे फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। दिन में 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमर गोट। दिन में 12:30 पर लोकरंजन कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंथी गीत, कलाकार होंगे बिसभुआ राम जांगड़े और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया दिन में 1:30 पर, इसमें आज की बात में समय के साथ खुद को बदलना। आपकी चिट्ठी आई और सुनेंगे एक ही कलाकार, इसके अलावा आप सुनेगा कुछ टिप्स। शाम 5:10 पर

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। विज्ञान मंच में सुनिएगा रोबोटिक्स और मानव जीवन, इस विषय पर ईशा पांडे की वार्ता और आप सुनेंगे शामी गजल। ये थे श्रोता हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की युवाणी।
0: मैं हूं अंजलि।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त राजलक्ष्मी। आप सभी श्रोता साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: राजलक्ष्मी, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सबके पास सपने बहुत होते हैं। कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई खुद को पहले से बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है?
1: क्या?
0: उस सपने के लिए रोज मेहनत करते रहना। क्योंकि शुरुआत में जो उत्साह होता है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। पहले दिन लोग पूरी कॉपी भर देते हैं, अब से सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, और 2 दिन बाद वही मोबाइल हाथ में लेकर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं कि जीवन में अनुशासन कैसे लाएं।
0: हाँ, मतलब काम कम और मोटिवेशन ज़्यादा। लेकिन सच यही है कि लक्ष्य पाने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलता, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और साथियों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इंसान अपना लक्ष्य स्पष्ट रखे। कई बार लोग बस इतना कहते हैं कि कुछ बड़ा करना है। अब क्या बड़ा करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं होता।
0: बिल्कुल। अगर रास्ता ही तय नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य हमेशा साफ और समझने लायक होना चाहिए।
1: और मुझे लगता है कि छोटे लक्ष्य बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है।
0: हाँ, जैसे अगर किसी विद्यार्थी का लक्ष्य है उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो वो एक ही दिन में पूरी किताब खत्म करने की जगह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़े, धीरे धीरे वही तैयारी मजबूत बन जाती है।
1: लेकिन आजकल एक और समस्या है अंजलि, ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। पढ़ाई शुरू करो तो अचानक याद आता है कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, और वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाता है पता ही नहीं चलता।
0: सही कहा, मोबाइल खुद बुरा नहीं है, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारा समय ज़रूर ख़राब कर देता है। कई बार हम अपना आधा दिन दूसरों की ज़िंदगी देखते हुए निकाल देते हैं और अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य पीछे रह जाते हैं।
1: वाह, ये बात तो बहुत सही कही तुमने। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है वो है धैर्य, क्योंकि हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता साथियों।
0: हाँ, आजकल सबको जल्दी सफलता चाहिए। अगर 2 दिन मेहनत की और तुरंत परिणाम नहीं मिला तो लोग सोचते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं।
1: जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ा काम समय मांगता है। एक पौधा भी एक दिन में पेड़ नहीं बनता।
0: और असफलता, उससे डरना नहीं चाहिए। कई बार हार हमें वो सिखा देती है जो जीत कभी नहीं सिखा पाती।
1: लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति और उसे हासिल करने की होड़ में हमें एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों।
0: और वो क्या राजलक्ष्मी?
1: तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है अंजलि?
0: हाँ, आज उच्च रक्तचाप दिवस है ना।
1: अपनी व्यस्त दिनचर्या और सपनों में लोग अपने स्वास्थ्य को भूल ही जाते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कब उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, और उन्हें फिर उन्हीं गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
0: लेकिन पता है साथियों, ये गंभीर बीमारियां अचानक नहीं आती, लेकिन इनके लक्षण इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। इसलिए उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
1: छोटे रूप से सरदर्द या चक्कर आना, सिर में दर्द या सांस लेने में तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें और नियमित रूप से रक्तचाप जांच कराएं।
0: हाँ राजलक्ष्मी, जैसे तुम रोज 35 किलोमीटर आना जाना करती हो, अपनी जॉब के लिए मेहनत करती हो, अक्सर मेहनताना लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं।
1: सही बात है अंजलि। इसलिए साथियों, अपना लक्ष्य

0: तय करिए, मेहनत करिए, पर साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए।
1: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों आज है संडे, समय है आप सबके पसंदीदा क्रम आज मेरी बारी है का। क्रम आज मेरी बारी है में आज बारी है हिमल पांडे की, जिसमें आप सुनेंगे हिमल पांडे के विचार और उनके पसंद के गीत। प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।
6: नमस्ते दोस्तों, जय जोहार, मैं हूँ आपकी हिमल पांडे। आज है मेरी बारी युववाणी आकाशवाणी से। आप सबके समक्ष एक बहुत ही सुंदर विषय जीवन साहित्य और हम पर चर्चा करने आई हूँ। क्या आप सभी को आपकी पहली किताब याद है? क्या वो आपके पास अभी भी है? मुझे मेरी पहली किताब अच्छे से याद है, जो थी स्टोरीज बाय स्वामी विवेकानंद जी। एक पतली सी किताब जिसमें सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। कहानी आज के टाइम पे मुझे जितनी भी याद रहे, लेकिन वो चित्र मुझे आज भी याद है। अक्सर स्कूल के लंच ब्रेक में या फिर गर्मियों की छुट्टियों में मेरा अधिकतर समय किताबों के साथ ही गुजरता था। पढ़ने की आदत ने मुझे कहानियाँ एवं कविताएँ लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया। मैं एक छोटी सी लाइन सुनाना चाहूँगी जो कि एक मेरी कविता से है। सुझावों के शोर में मशवरा खामोशियों ने दिया। जी हाँ, वही खामोशी जो हमें सोचने और समझने की शक्ति देती है। हम किताबों एवं उनसे जुड़ी बातों की चर्चा कर रहे हैं और इस बीच मुझे एक बहुत ही मधुर गीत की याद आ रही है। ये गीत है फिल्म परिणीता से, वही फिल्म परिणीता जो कि इंस्पायर्ड है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास परिणीता से। और इस फिल्म के गीतों के कॉम्पोजिशन के समय में इंस्पिरेशन लिया गया रविंद्र संगीत से। देखा, साहित्य यहाँ भी अपनी सुंदर छाप छोड़े हुए है। प्रस्तुत है आप सभी के लिए गाना सूना मन का आंगन फ्रॉम फिल्म परिणीता, जिसके गायक है सोनू निगम जी।

भारतीय सौंदर्य शास्त्र एवं नृत्य नाटक ड्रेमेटोलॉजी में विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है, जिसे कुछ विद्वान पांचवें वेद के रूप में भी संबोधित करते हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें रस सिद्धांत को बेहद गहराई से समझाया गया है। अल्पकालिक यानी कि अस्थिर मनोभाव की व्याख्या है, जो कि स्थायी भाव जो कि होता है मेन इमोशन उसको प्रभावित करते हैं। ये अभिनय एवं अभिव्यक्ति में वैरायटी लेकर आते हैं। कभी समय मिले तो इस अद्भुत ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित सीता बेंगरा गुफा, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला एम्पी थिएटर मानी जाती है, पुरातत्व विदों के अनुसार इसका ढांचा बिल्कुल वैसा ही है जैसा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक रंगमंच के लिए बताया गया है। कला की इस चर्चा के साथ आइए चलते हैं अपने अगले गीत की ओर, जो है फिल्म बाजीराव मस्तानी से मोहे रंग दो लाल। गायन श्रेया घोषाल जी एवं कथक के बोल आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय बिरजू महाराज जी के।

हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के भागा दौड़ी में उलझे रहते हैं, अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपनी किताब, उसको समय देना भूल जाते हैं। यूँ तो हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, जिसे आज के टाइम में डूम स्क्रोलिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यूं ही सोशल मीडिया में घंटों स्क्रोल करते हुए समय बिता देना। हम सबके फ़ोन में एक डिजिटल वेलनेस ऐप होता है, कभी वहाँ जाकर आप अपना समय चेक कीजिएगा, आप खुद चौंक जाएंगे कि आप सोशल मीडिया में इतना समय बिता देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मनुष्य एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति के साथ रहने वाला जीव है, और जब वह सिर्फ कंजम्पशन करता है, यानी कि सोशल मीडिया में सिर्फ रील्स देखते रहता है या सिर्फ चीज़ें कंज्यूम करते रहता है, तो उसकी रचनात्मक शक्ति बहुत गहरे ढंग से प्रभावित होती है और वो थोड़ा चिड़चिड़ा या डल महसूस करने लगता है। वहीं जब हम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं एवं उनके किरदारों को, विचारों को समझने में अपनी सृजन शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी एवं मनःस्थिति बेहतर होती है। हमारा दिमाग शार्प और रिलैक्स्ड महसूस करता है। क्यों ना आज से हम एक छोटी सी प्रतिज्ञा लें कि दिन का कुछ हिस्सा हम अपने किताबों को देंगे, कुछ मिनट्स जर्नलिंग करेंगे और हम अपने आप को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इन विचारों के साथ एक बहुत ही प्रख्यात लेखक, गीतकार, अभिनेता, कलाकार श्री पीयूष मिश्रा जी का बहुत चर्चित गाना याद आता है, जिसका नाम है आरंभ है प्रचंड। ये आप सबके सामने प्रस्तुत है।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान।

0: जान ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है

दया का भाव, यहाँ की शौर्य का चुनाव, यहाँ की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, यहाँ की शौर्य का चुनाव, यहाँ की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। यहाँ की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ

0: सुनते रहिए आकाशवाणी युववाणी। मैं हिमल पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे क्रम आज मेरी बारी है में हिमल पांडे के विचार और उनके पसंद के गीत। प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: जरा सोच के देखो राजलक्ष्मी, आज के समय में अरेंज मैरिज कैसे होता होगा ना। जब दो अनजान लोग एक दूसरे की आंखों में अपना पूरा जीवन देख लेते हैं। सोचिए जब पहली बार दो लोग एक दूसरे के सामने आते हैं जो कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, तब दिल में कैसी धक धक होती होगी ना।
1: बिल्कुल, मन में एक प्यारी सी उलझन कि मिलकर आखिर क्या बोलेंगे। एक तरफ नई उमंग होती है तो दूसरी तरफ चेहरे पर थोड़ी सी शर्म और झिझक भी।
3: आज हमारे शहर के कोने कोने में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो अरेंज मैरिज के रिश्ते में बनने जा रहे होंगे। ये वो खूबसूरत पल होता है दोस्तों, जहां सिर्फ दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार भी आपस में मिल जाते हैं।
1: वो पहला फ़ोन कॉल, वो पहली नज़र, वो चाय का कप और बातें, सब कुछ कितना जादुई होता होगा ना। तो इस जर्नी की शुरुआत करने वाले अपने झिझक को पीछे छोड़िए और बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी दो अनजाने अजनबी ही जिंदगी भर के हमसफर बन जाते हैं।
3: इस अनकहे एहसास के साथ चलिए शुरू करते हैं क्रम नए तराने।
1: सुनिए क्रम नए तराने का ये प्यारा सा गीत और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ।

0: जैन ने।
1: और फरमाइश थी इन श्रोता साथियों की, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, देवरी भाटा पारा से मुकेश कुमार रजक, युवान, हाविया रजक, तनु रजक, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारणी सूरज, ज्योति ठाकुर, बनिया पारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, राहुल, सविता, स्वाति माखीजा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, कुल्हारी कोट से नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप, ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, लल्ला, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा साहू, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल।
0: वैसे ये क्या अजब गजब का मौसम है ना अंजलि। सुबह घर से निकलो तो सूरज देवता अपने पूरे रौद्र रूप में दर्शन दे रहे हैं।
1: हाँ, और 10 बजते तो लगता है कि सीधे आग की भट्टी में खड़े हो।
0: बिल्कुल, और जैसे ही शाम होती है आसमान में बादल और फिर अचानक छपाक।
1: सुबह धूप, चश्मा और शाम को छाता,
0: सुबह एसी और शाम को गरम चाय और पकौड़े। भाई मौसम चाहे जो भी हो, रायपुरियंस का स्वैग कम नहीं होना चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना दोस्तों?
1: फिलहाल राजलक्ष्मी, समय है हमारे दोस्तों के मनोरंजन का, तो चलिए इन्हें सुनाते हैं क्रम नए तराने की ये प्रस्तुति।

0: साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म कलंक का यह गीत। स्वर दिया था अरिजीत सिंह ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धमदा दुर्ग से तोरण साहू, याचना शिवानी जयदेव साहू, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, ग्राम भानपुरी से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी होमू, मनीश्वर यादव, मगरलोड जिला धमतरी से उम्मीद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन निषाद, सांगरपुरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई उमाशंकर, रागिनी साहू, फूलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान कोकिला साहू, तिलदा नेवरा से गजेंद्र सेन, गणेश सोनी, वीरेंद्र यदु, बलराम यादव, शनि निषाद, पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू। साथियों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे इस बदलते ठंडे गर्म मौसम की, और ऐसे समय में बेहद ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना।
0: बिल्कुल, सुबह की लू से बचें और शाम के पानी से बचें, वरना सर्दी खांसी तो तय है।
1: वैसे अंजलि, ये जो सुबह की तपिश और शाम की ठंडक का संगम है, ये रायपुर की एक अपनी ही अलग कहानी है ना?
0: हाँ राजलक्ष्मी, कैसे रोज शाम का ये बदलता मौसम इतना अच्छा लगता है ना, कि अब तो हर सुबह बस इंतज़ार रहता है कि कब शाम होगी।
1: हाँ हाँ, मैं समझ पा रही हूँ बिल्कुल कि तुम किस शाम का इंतज़ार कर रही हो क्योंकि शाम हो, कब ठंडी हवाएं चले, हल्की बूंदें गिरे और दिन भर की सारी थकान मिट जाए, है ना?
0: हाँ, लेकिन फिलहाल राजलक्ष्मी, समय है नए तराने की अगली प्रस्तुति का। लीजिए सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: राहत फतेह अली खां की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी मेरी कहानी का ये प्यारा सा गीत। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने।
1: और फरमाइश थी इन श्रोता साथियों की परसा टोला मोहला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी मसिया, भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, चंपा करण राहुल साहू, लुकाओ पाली छतवन बलोदा बाजार से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला निहारिका सिंह पंकज सिंह सूर्यवंशी।
0: दोस्तों चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं क्रम नए तराने की ये अंतिम प्रस्तुति।

0: अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म शिवाय का ये प्यारा सा गीत। गीतकार थे सईद कादरी और संगीत से सजाया था मिथुन ने।
1: और फरमाइश करी थी हमारे इन श्रोता साथियों ने, सोहा मालगी कबीर धाम से कृष्ण कुमार सिंह रॉल, शीतला हनु हर्ष विवेक सिंह रॉल, डूमर टोला से भगवानी राम कांटे आशीष मनीष।
0: दोस्तों इसी के साथ समय हो चला आपसे विदा लेने का। जाने से पहले बता देते हैं कल के आकर्षण, कल की युवाणी सजेगी हिंदी में जिसमें आप सुनेंगे विज्ञान मंच और शामे गजल। इसी के साथ आपकी दोस्त राजलक्ष्मी
1: और अंजलि को
0: दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हमारा
1: नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी में लीजिए सुनिए खैरागढ़ छुई खदान गंडे जिले की चिट्ठी। आलेख विनायक नागवंशी का है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं सुशासन त्योहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों सरोधी गांव के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार सरकार की जवाबदेही और जनता तक सीधे पहुंचने का माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। कार्यक्रम में वन अधिकार योजना के तहत हितग्राहियों को व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए गए। श्रोताओं कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने हाल ही में जिले में संचालित विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नियत निल्लानार योजना 2.0, समग्र शिक्षा अभियान, कैच द रेन अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्रोताओं जनगणना 2027 के तहत जिले में 1 मई से शुरू हुए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य, इसके तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य का 33% से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुल 7 चार्ज क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें खैरागढ़ छुईखदान गंडई और साल्हेवारा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पंचायत छुईखदान और गंडई शामिल हैं। जनगणना कार्य के दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। श्रोताओं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा बीते 9 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस और आपराधिक मामलों सहित 39,000 से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इस दौरान लगभग 3,46,00,000 रूपये का अवार्ड पारित हुआ। श्रोताओं खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित एक गौशाला में गौ विज्ञान, प्राकृतिक खेती और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पुस्तक गाय एक अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। गौ विज्ञान और प्राकृतिक कृषि पर कार्य कर रहे अखिल जैन ने बताया कि गौशाला में गौ आधारित उत्पादों और जैविक खेती पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं फसल अमृत और मनोहर ऑर्गेनिक गोल्ड जैसे जैविक उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रोताओं खैरागढ़ छुईखदान गंडई पुलिस द्वारा बीते 7 मई को जिले के सभी थाना और चौकियों में प्रथम थाना दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के समक्ष लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में गातापार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को साइबर ठगी, महिला सुरक्षा, यातायात नियम और नए कानूनों की जानकारी दी। श्रोताओं खैरागढ़ नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। सीएमओ पुनीत वर्मा के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न वार्डो में जाकर लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने तथा नियमित रूप से कचरा संग्रहण में सहयोग करने के लिए जागरूक किया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। श्रोताओं जिले के 5 केंद्रों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई तक चलने वाले इस शिविर में करीब 130 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जूडो, फेंसिंग, साइकिलिंग और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की चिट्ठी। आलेख विनायक नागवंशी का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
4: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली रायपुर मा आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मन ला पठो ही हरा झंडी दिखा के। छत्तीसगढ़ जनगणना काम के चलत

0: अब तक ले 60% ले ज्यादा घर कुरिया मन के गंती के काम कर लेगे है पूरा और प्रदेश के जनजाति गवई मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर काली ले 25 मई तक चलाए जाही जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपन 2 दिन के दौरा बेरा काली बिहनिया रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड ले आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मल्ला हरा झंडी दिखा के पठोही। एकर बाद केंद्रीय मंत्री बस्तर जिला के नेतानार जाही जिहां लेओमन जन सुविधा केंद्र के शुभारंभ करही। तहां पाछू श्री शाह जगदलपुर के अमर वाटिका मा अमर शहीद मल्ला श्रद्धांजलि देही। केंद्रीय गृह मंत्री ह कालीच जगदलपुर के बादल अकादमी मा एक ठिन संवाद कार्यक्रम मा शामिल हुई जिहां उमन शहीद मन के परिवार वाले नक्सल मोर्चा मा तैनात CAPF और राज्य के विशेष सुरक्षा बल पुलिस अधिकारी नक्सल पीड़ित अवस्थानी समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट मुलाकात करके गोड बात करही। अपन दौरा बेरा के दूसर दिन श्री शाह 19 मई के जगदलपुर मा होया मध्य क्षेत्रीय परिषद के बैठका के पगरैती करही। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के चलत अब तक 60% ले ज्यादा घर कुरिया के गंती के काम पूरा कर लेगे है। ये अभियान में डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम ले अब तक 48,700 ले ज्यादा ब्लॉक मन ले 29,600 ले ज्यादा ब्लॉक में गंती हो गए हवे। गंती काम के मामला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला सबले आगू है जिहां 100% टारगेट पूरा कर लेगे है। ये जिला है अपन सबो 528 ब्लॉक में मकान लिस्टिंग के काम तय समय ले आगुज पूरा कर ले है। उन्हें जसपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में गंती के काम पूरा हुआ है। एकर संगे नगर निगम क्षेत्र मन में ये काम के रफ्तार धीमा गति ले दर्ज करेगे है। ये मामला में रायगढ़ नगर निगम सबले निचला पायदान में है जिहां केवल 4% ले ज्यादा के काम पूरा हो है। उन्हें राजधानी रायपुर में 1,900 ले ज्यादा ब्लॉक मल ले खाली 203 ब्लॉक मा गंती के काम होए हवे। यहां ये बता दन के प्रदेश मा 1 मई ले घर कुरिया के गंती के काम हा शुरू होए है जो उन्हें 30 मई तक चलही। सुशासन तिहार के चलत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरा बेरा क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के शुभारंभ करीन। ये प्रयोगशाला के शुरू होए ले रायगढ़ शक्ति और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिला मन के पुलिस जांच व्यवस्था ला मजबूती मिलही। ये मौका मा मुख्यमंत्री हकीन कि रायगढ़ मा ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला के शुरू होए ले पुलिस ला सहूलियत मिलही और अपराध अनुसंधान ज्यादा सुघर होही। अपन रायगढ़ दौरा बेरा मुख्यमंत्री हा काली कुसमुरा गांव मा करीबन 103 करोड़ रुपया के कैठिन विकास काम मन के लोकार्पण और भूया पूजा करीन। रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ विकास खंड के गंवर घुटरी गांव में 100 ठीन दसना वाले अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जाही। एला अजीज प्रेमजी फाउंडेशन हा बनाही। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग डहर ले जारी आदेश मुताबिक ये अस्पताल बर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ला 2 हेक्टेयर भूइया 30 बछर बर अस्थायी लीज मा दे गे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है अपन रायगढ़ दौरा बेरा फाउंडेशन ला भूइया आवंटन आदेश के कापी सौंपिन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा ए बछर 1 जुलाई ले कक्षा 9वीं के पढ़ैया लइका मन बर 3 भाखा के पढ़ाई अनिवार्य कर दे है। CBSE हा क्लियर करिस कि कक्षा 10वीं मा 3 भाखा R3 बर कोनो बोर्ड परीक्षा नहीं होही। उही R3 बर पूरा मूल्यांकन स्कूल स्तर मा होही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बू बांचे समाचार डहार। प्रदेश के जनजाति गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 मई ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होही। 25 मई तक चलैया ये अभियान हा प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन मा चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान मा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गाँव मन ला शामिल करेगी है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला मन में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुँचाया जाही। अधिकारी मन गाँव गाँव में जाके जन सुनवाई करही और वादी सेवा केंद्र मन में मामला के निपटारा हुई। ए दौरान सिकल सेल और टीबी जांच पर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। राज्यपाल रमिंडे कहा कबीरधाम जिला के दौरा बेरा आज ढोलबज्जा गांव में बैगा विद्यार्थियों बिहान योजना ले जुड़े बैगा माइलोगिन मन ले मुलाकात करीन। ए दौरान उमन पढ़ैया लैका मन के उखर सपना पढ़ाई लिखाई और भविष्य के योजना मन ऊपर गोड बात करत उमन ला आगू बाढ़े बर प्रेरित करीन। श्री डे कहा शिक्षा दूत के रूप में काम करैया शिक्षक और जवान लैका मल्ला कहीन कि ओमन ड्राप आउट यानी स्कूल त्यागे लैका मल्ला एक घाव फेर ले स्कूल में लाए के प्रयास करें। राज्यपाल हा भोरमदेव मंदिर के घलो दौरा करीन और भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करके प्रदेश के रहवैया मन पर सुख समृद्धि के बिनती बिनोइन। उन्हें राज्यपाल हा बेमेतरा जिला के घलो दौरा करीन। ए दौरान उमन सर्किट हाउस कैंपस में एक पेड़ माँ के नाव अभियान के चलत पौधा लगाइन। भिलाई स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संग्रह उद्यम NSPCL हा बालिका सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ठीन आवासीय वर्कशॉप शुरू करे है। एकर शुभारंभ NSPCL के मुख्य महाप्रबंधक और व्यापार प्रमुख नील कुमार शर्मा हा करीन। ए वर्कशॉप में तीर्थखार के गवई जगह के 10 बछर ले 13 बछर तक के उम्र की नोनी मन भाग लेवत हैं। श्री शर्मा हा बतैन की करीबन एक महीना तक चलैया ये आवासीय ट्रेनिंग हा नोनी मन के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रही। NTPC लिमिटेड के लारा और सीपक प्रोजेक्ट घलो बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू करे है। रायगढ़ जिला के लारा में ये अभियान के शुभारंभ उप पुलिस महानिरीक्षक शशि मोहन सिंह करीन। उन्हें बिलासपुर जिला के सीपत में बालिका आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंहा करीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के मौका में आज आकाशवाणी जगदलपुर डहाल ले वॉकथन राखेगीस। ये वॉकथन हा दंतेश्वरी मंदिर ले शुरू होके कई ठिन रद्दा ले होवत आकाशवाणी केंद्र जगह पहुंचीस। ये आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी उद्घोषक कंपेयर श्रोता और कर्मचारी मन के परिवार वाले के संगे लोगन मन भाग लीन। ये मौका में आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर हकीन की वॉकथन के माध्यम ले आकाशवाणी हा स्वास्थ्य अनुशासन सामाजिक सहभागिता के आरोदे के प्रयास करे है। बस्तर के लैका मन के खेल प्रतिभा ला निखारे बर जगदलपुर में बहुत जल्दी बस्तर के पहला आवासीय खेल अकादमी शुरू करे जाही। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम हा काली जगदलपुर पहुंच के अकादमी के तैयारी बारे में जायजा लीन। ओमन खेल अधिकारी मन संग बैठका में आवास भोजन खेल सामग्री शिक्षा परिवहन और अन्य सहूलियत के समीक्षा करीन। ए अकादमी में लैका मन ला एथलेटिक्स फुटबॉल और तीरंदाजी के ट्रेनिंग दे जाही। एडमिशन पर बहुत जल्दी चुनाई ट्रायल रखे जाही। इमा 13 से 17 बछर के उम्र वाले खिलाड़ी मन भाग ले सकी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मल्ला पठोही हरा झंडी दिखा के। छत्तीसगढ़ जनगणना काम के चलत अब तक ले 60% ले ज्यादा घर कुरियामन के गंती के काम कर ले गए है पूरा। और प्रदेश के जनजाति गवई मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर काली ले 25 मई तक चलाए जाही जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग
3: नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसन्धौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वालिसेटी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्च देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः, हरितपरिवर्तनं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः, रक्षा, अंतरिक्षं, जलवायु परिवर्तनं, जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षा अस्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः, यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय संबंधान नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34th संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई जी ओ वी ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800117800 अनेन दूरभाष संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामि संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसन्ध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यकरणं तथा नौवहन स्वातन्त्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुमर्हति। सः वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रवाहस्य सुरक्षा विषये संयुक्तराष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः विशेष सभायां भाषणं कुर्वन् आसीत्। श्रीहरिशस्य एषा टिप्पणी ओमान तटस्य समीपे भारतीय ध्वजयुक्तायां वाणिज्यिक नौकायां जातस्याक्रमणस्य कतिपय दिनानन्तरम् आगता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ

0: केन्द्रीय नवीकरणीयोर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी अवदत् यत् भारत देशेन एकस्मिन्नेव दिने 4.65 गीगावाट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचारपत्रेण सह वार्तालापे श्रीजोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः 33% नवीकरणीयोर्जा स्रोतैः पूरितम्। तेनोक्तं यत् भारतस्य विद्युत संरचना अधुना अधिका सुदृढा भविष्याय च सज्जा अस्ति। मंत्री अग्रे उक्तवान् यत् एतत् परिवर्तनं ऊर्जा क्षमतायाः तीव्र विस्तारं विद्युतिकीय सुदृढीकरणं तथा च राष्ट्रस्य विकासपथे स्वच्छोर्जायाः वर्धमानं योगदानं प्रदर्शयति। त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलयानस्य पृष्ठभागे जातस्य अग्निकाण्डस्य उच्चस्तरीयान्वेषणस्य आदेशः रेलमन्त्रालयेन प्रदत्तः। अद्य प्रातः प्रायः 5:15 कोटा संभागस्य नागडा क्षेत्रस्य समीपे त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली राजधानी इत्यत्र एकः गार्डकोचः एकः AC 3-tier इत्येतयोः द्वयोः कोचयोः अग्निप्रकोपः अभवत्। मन्त्रालयः अवदत् यत् कोचमध्ये सुरक्षा व्यवस्थायाः तक्षणमेव कार्यं कृतम्। रेलयानं च स्वयमेव स्थगितम्। रेलचालकदलेन तक्षणमेव प्रभावितौ उभौ कोचौ पृथक् कृतं तथा च अस्यां घटनायां यात्रिणः क्षतेः कापि सूचना नास्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रसृतं कोरोना विषाणोः प्रकोपं अंतर्राष्ट्रीय स्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालरूपेण घोषितमस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः टेड्रोस अधानोमा घेब्रेयसस इत्यनेन 300+ संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्युनां विवरणानन्तरं एषा निर्णयः प्रदत्तः। WHO संस्थया सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः COVID-19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति तथा च अन्तर्राष्ट्रीय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिवुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रवसंस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजतपदकं विजितवती। अद्य नेपालदेशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा 32 माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 50-वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कानून की बात में लीजिए सुनिए, जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार। इस विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से ली गई भेंटवार्ता। ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय है जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री सौरभ सेंद्रे जी, अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल दुर्ग। तो सेंद्रे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदी कौन होते हैं?
1: जी बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति पर किसी अपराध को किए जाने का आरोप लगता है और उस व्यक्ति जिसे हम आरोपी कहते हैं उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत किया जाकर प्रथम सूचना पत्र या FIR दर्ज की जाती है, या किसी न्यायालय में व्यक्तिगत शिकायत जिसे हम परिवाद कहते हैं लाया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध वह आपराधिक मामला जब तक न्यायालय के समक्ष लंबित रहता है, या साधारण शब्दों में कहे कि न्यायालय में चलते रहता है, तो वह आरोपी उस मामले में जब किसी भी जेल में निरुद्ध रहता है तो उसे विचाराधीन बंदी या अंडर ट्रायल या हवालाती कहते हैं।
0: जी,
1: इसी प्रकार जब उस आरोपी का अपराध विचारण न्यायालय के सामने प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रमाणित हो जाता है और उस न्यायालय के द्वारा जिसके सामने केस चल रहा होता है उस आरोपी को सजा दे दिया जाता है, जिसके बाद उसे निर्णय या जजमेंट के अनुसार सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेज दिया जाता है, तब सजा भुगताने वाले व्यक्ति को हम दंडित बंदी या सजा प्राप्त बंदी कहते हैं।
0: जी सर, जैसे कि हमारा विषय ही है आज का जेल में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार, तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि विचाराधीन बंदी एवं दंडित बंदी को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए सर।
1: भारत के संविधान के प्रावधानों अनुसार भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा न्याय दृष्टांतों, जिसे हम साधारण भाषा में रूलिंग कहते हैं, के द्वारा भी नागरिकों एवं परदेशी व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार जेल निरुद्ध विचाराधीन बंदी एवं सजा प्राप्त बंदियों के भी अधिकार भारत के संविधान एवं माननीय न्यायालय द्वारा सुरक्षित किया गया है। सर्वप्रथम अन्य प्राप्त अधिकारों में से एक अन्य प्रमुख अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का होता है।
0: जी,
1: जेल में बंद व्यक्तियों के लिए यह एक समस्या होती है कि उचित समय पर उनको सही रूप से उनके मामले में क्या कार्यवाही किया जाना है या उनके मामले में आगे क्या कार्यवाही हो सकती है, इस बारे में मालूम नहीं हो पाता है। तब जेल में बंद व्यक्ति, जेल में जो हर सप्ताह बंदियों के लिए परेड होती है, तो विधिक सहायता के लिए वह बंदी जेल अधिकारियों के समक्ष विधिक सहायता लिए जाने की मांग कर सकता है। इसी प्रकार जो हवालाती या विचाराधीन बंदी होते हैं वे न्यायालय में चल रहे अपने मामलों के संबंध में जेल विजिटिंग लॉयर से भी उचित कानूनी सलाह ले सकते हैं। यदि हवालाती बंदी किसी कारण से अपने मामले में निजी अधिवक्ता या प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाता है तो विधिक सहायता से उसे अधिवक्ता मिलने का भी अधिकार होता है। ठीक इसी प्रकार सजायाफ्ता बंदी या कैदी को अपने प्रकरण में अपील किए जाने के लिए वरिष्ठ न्यायालयों में, जैसे सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाए जाने हेतु उचित विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है।
0: जी,
1: इस विधिक सहायता के अधिकार के अतिरिक्त जेल नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए विचाराधीन एवं सजा प्राप्त बंदियों को अन्य अधिकार, जैसे परिवार के सदस्यों एवं उस विचाराधीन बंदी या सजा या प्राप्त बंदी के अधिवक्ता से मुलाकात करने का समय दिया जाना व उनसे उचित रूप से मुलाकात हेतु उचित व्यवस्था किया जाना, जेल से चिट्ठी पत्र लिखे जाने का अधिकार, न्यायालय में चल रहे मामलों में त्वरित सुनवाई का अधिकार, विचाराधीन बंदी और सजा याफ्ता बंदियों के लिए उचित मेडिकल जाँच स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाने का अधिकार, अकारण हथकड़ी या जंजीरों से बांध कर नहीं रखे जाने का अधिकार, ये समस्त अधिकार बंदियों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखा जाना है कि महिला जेल बंदियों के लिए एक अलग प्रकोष्ठ होगा, उन्हें किसी भी प्रकार से पुरुष बैरक के समीप नहीं बनाया जाएगा। इसी

0: सरकार 18 से 21 वर्ष वाले बंदियों के जेल निरुद्ध की व्यवस्था उन विचाराधीन या सजा प्राप्त गंभीर अपराध करने वाले बंदियों से अलग रखना है, ताकि युवा बंदियों पर किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव न होने पावे।
1: जी सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया था हवालाती एवं सजायाप्ता बंदियों के बारे में, तो सर क्या माननीय न्यायालयों एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा हवालाती एवं सजायाप्ता बंदियों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी सर, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों के माध्यम से हवालाती एवं सजायाप्ता बंदियों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। पूर्व में जैसे बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रूलिंग दी जाती है, तो रूलिंग जो है वो बाध्यकारी होती है। यह बताना आवश्यक है कि माननीय राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, उनके द्वारा विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया गया है, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों के वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। जेल में पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है, जिसका एक दायित्व यह भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बंदी का विधिक प्रतिनिधित्व, लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसके न्यायालय में चल रहे मामले में उचित रूप से हो एवं उस जिले में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमित रूप से अवगत कराते रहे। जेल विजिटिंग लॉयर्स की भी व्यवस्था की गई है
1: जी,
0: जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों को उचित विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श मिल सके। इसी प्रकार माननीय नालसा द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम अंतर्गत डिफेंस काउंसिलों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें वे आपराधिक मामलों में जेल में बंद हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों को उचित विधिक सहायता, परामर्श एवं समाधान प्रदान कर सके।
1: जी सर, जैसे बंदी हैं जो जेलों में कैद है, उनको क्या निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सकती है या उनको आवश्यक क्यों है?
0: जी सर, जेल में जो बंदी निरुद्ध रहते हैं, अमूमन हमें ये देखने आता है कि वो विभिन्न प्रकार से या विभिन्न कारणों से वो निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं, या उनको अपने प्रकरण में चल रहे जो कार्यवाहियाँ हैं उसके बारे में अपडेटेड जानकारी, अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती है, उचित समय में उनको सही परामर्श नहीं मिल पाता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही माननीय नालसा एवं सालसा के द्वारा जो SOP जारी किए गए हैं, उसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता का उनको अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्रवृत्त कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसे हम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कहते हैं, उसके प्रावधानों के अनुसार भी जो व्यक्ति जेल में निरुद्ध है उसको विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
1: जी,
0: और जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती है, आर्थिक परेशानियां रहती है, कई बंदियों के परिवार से संपर्क स्थापित नहीं हो पाते हैं, उनके परिवारजनों को मालूम नहीं रह पाता है कि वो किस जेल में निरुद्ध है या वो व्यक्ति का केस किन न्यायालयों में चल रहा है, तो यही सब कारणों को देखते हुए निःशुल्क विधिक सहायता देना उनको उचित प्रतीत होता है, और इसी कारण से उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता रहते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी, विचाराधीन बंदियों को जमानत का अधिकार किन परिस्थितियों में मिलता है, इसके बारे में बताइए सर।
0: जी बिल्कुल सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जेल जाना एक अपवाद है और जमानत दिया जाना नियम है। उसी सिद्धांत के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के लिए यह व्यवस्था है कि वो अपने प्रकरण में जल्द से जल्द जमानत लगाए जाने का व्यवस्था अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से या विधिक सहायता के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उसमें ये भी प्रावधान बताया गया है कि यदि व्यक्ति का एक से अधिक मामला है तो जमानत उसको मिलना मुश्किल हो जाता है।
1: जी,
0: उसके लिए थोड़ा सा जमानत मिलने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जमानत दिए जाने के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वो परिस्थितियाँ ये रहती हैं कि 7 साल से यदि कम की सजा वाला व्यक्ति है, विचाराधीन है
1: जी,
0: तो उस पर माननीय न्यायालय, माननीय विचारण न्यायालय विचार कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जमानत दिया जाना उचित है कि नहीं है। इसी प्रकार जमानत के जो अन्य ग्राउंड अन्य आधार होते हैं वह यह होते हैं, वह व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम है, उसके प्रकरण में जो अपराध किए जाने का आरोप लगा है वो गंभीर प्रकृति का नहीं है, यही ग्राउंड्स पर माननीय न्यायालय द्वारा भी जमानत का लाभ आरोपी को या विचाराधीन बंदी को दिया जाता है।
1: जी जी सर, अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को सम्मानजनक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति जेल निरुद्ध हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों के संवैधानिक व वैधानिक अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं व उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर दोषियों को उचित सजा भी दी जाती है। आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि आगामी दिनांक 12 सितंबर 2026 को तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसमें राजीनामा योग्य मामले, जिसमें पारिवारिक मामले, चालान के मामले, कम गंभीर प्रकृति के अपराध वाले मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व आदि मामले का निराकरण होता है। श्रोतागण से यही अपील है कि लोक अदालत के माध्यम से अपने न्यायालय में चल रहे मामलों को निराकृत किए जाने का प्रयास करें।
1: जी सर, आपने जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर इतनी विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: तो श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री सौरभ सेंद्रे जी, अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल दुर्ग के। इसी के साथ ही कानून की बात का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार। इस विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से भेंटवार्ता। ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?

0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर आज शाम पहुंच रहे हैं रायपुर। राजधानी रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज धमतरी में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कल सुबह रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड से आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बस्तर जिले के नेतानार जाएंगे, जहां वे जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर की अमर वाटिका में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल ही जगदलपुर के बादल अकादमी में एक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे शहीदों के परिजनों, नक्सल मोर्चे पर तैनात CAPF और राज्य के विशेष सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ितों तथा स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंच रहे हैं। वे 19 मई को जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
6: माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 3 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ का, आज शाम में वो आ रहे हैं। अगले 2 दिनों तक जगदलपुर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हैं। और 19 को मध्य क्षेत्र परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेश को लेकर एक परिषद है, उसकी मीटिंग है और उसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं, श्री अमित शाह जी करते हैं।
5: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समाधान शिविर में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री साय ने कुरुद के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए और PM श्री आत्मानंद स्कूल के भवन के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के तहत रायगढ़ प्रवास के दौरान क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला के होने से रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं श्री साय ने रायगढ़ में सिंदूर पार्क का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

0: मंत्री ने कहा कि रायगढ़ के विकास के लिए लगातार नए कार्य किए जा रहे हैं और सिंदूर पार्क उसी सोच का परिणाम है। अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कल कुसमुरा गांव में करीब 103 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के गवरघुटरी गांव में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल का निर्माण अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अस्पताल के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को 2 हेक्टेयर भूमि 30 वर्ष के लिए अस्थायी लीज पर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान फाउंडेशन को भूमि आवंटन आदेश की प्रति सौंपी। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल 18 मई से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांव में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत अब तक 60% से अधिक मकानों की गणना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस अभियान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब तक 48,700 से अधिक ब्लॉक में से 29,600 से अधिक ब्लॉक में गणना का कार्य पूरा हो चुका है। गणना कार्य के मामले में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला सबसे आगे है, जहां 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जनगणना के मामले में राज्य में ग्रामीण और दूरस्थ जिलों में काम की रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में जनगणना कार्य की रफ्तार चिंताजनक रूप से धीमी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई से मकानों की गणना का कार्य शुरू हुआ है, जो 30 मई तक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका ने अपने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान आज ढोल बज्जा गांव में बैगा विद्यार्थियों और बिहान योजना से जुड़ी बैगा महिलाओं से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने पीएम जनमन आवास योजना के तहत बैगा परिवार को आवास की चाबी सौंपी। राज्यपाल ने भोरमदेव मंदिर का भी दौरा किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं राज्यपाल ने बेमेतरा जिले का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। भिलाई स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम NSPCL ने बालिका सशक्तिकरण मिशन के तहत एक आवासीय कार्यशाला शुरू की है। इसका शुभारंभ NSPCL के मुख्य महाप्रबंधक और व्यापार प्रमुख नील कुमार शर्मा ने किया। इस कार्यशाला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग की 80 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। श्री शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले इस आवासीय प्रशिक्षण में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: हम सब ने मिलकर इस बार करीब 45 लोकेशंस पे 10,000 बच्चियों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं, 4 वीक का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम उनकी ग्रूमिंग के लिए करेंगे और जो उनके जीवन में जो लक्ष्य हैं, जो उनके सपने हैं, उसमें उनको बुनने में हम उनकी सहायता करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कला और बाकी मार्शल आर्ट्स, योगा, इस तरह की बहुत सारी और भी विधाएं उन बच्चों को सिखाएंगी।
0: NTPC लिमिटेड के लारा और सीपत परियोजना में भी बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए जगदलपुर में जल्द ही बस्तर की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू की जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम ने कल जगदलपुर पहुंचकर अकादमी की तैयारियों का जायजा लिया। इस अकादमी में बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए जल्द ही चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, कर्मचारियों के परिजन तथा आम नागरिक ने भाग लिया। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि वॉकथॉन के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा वॉकथॉन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और आकाशवाणी की जनसेवा की परंपरा को और अधिक मजबूत करना था। आकाशवाणी जो है वो पिछले 9 दशकों से समाज, संस्कृति और जन भावनाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है और इसी श्रृंखला में ये आयोजन भी जन जागरूकता एवं जनसंपर्क का एक प्रयास था हमारा।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और चक्रवात के कारण आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजमेरगढ़ गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने शोक व्यक्त किया है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जाँच करें और इस बीमारी को हराएं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कमी करने और रसोई गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। दुर्ग जिले में भिलाई नगर में आज तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 1 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम द्वारा 20 मई को सुबह 10:30 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और जांजगीर चांपा जिले के कनस्ता और केवा गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन करते 4 वाहनों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर आज शाम पहुंच रहे हैं रायपुर। राजधानी रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज धमतरी में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत। गीतकार थे जलिस राशिद, संगीतकार अल्लू अरविंद। अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में लीजिए सुनिए माशूक फिल्म का गीत। गीतकार हैं गौहर कानपुरी, संगीतकार श्याम सुरेंद्र।

माँ अशोक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार थे गौहर कानपुरी, संगीतकार श्याम सुरेंद्र। अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म का गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं रानी मलिक, संगीतकार नदीम शमण।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत का सफर एक बार फिर से जारी रहेगा रात 8 बजे से रात 8:15 तक। आकाशवाणी का जो रायपुर और सरायपाली केंद्र है, किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: निधि दीदी राम राम।
1: राम राम लक्ष्मीकांत। संगे संग चौपाल सुनैय जम्मू संगवारी मनला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: लक्ष्मीकांत।
0: हाँ दीदी।
1: ये तो हम सब जन जानबे करथन के स्वास्थ्य ले बढ़ के कुछ नहीं होवे, माने सेहत सबले बड़े धन आए जेखर जतन हमन मल्ला करना चाहिए।
0: और स्वस्थ तन निरोगी काया है ना, ऐसे कही थे वैसे होते। कहे के मतलब है स्वस्थ शरीर में रोग राई मन कोसो दूर रही थी।
1: लक्ष्मीकांत देख, गोड बात तो सिर तो ना है, लोगन मन मानते गला का है, फिर एकर बर जरूरी है हमर खान पान। भाई कई ठन बात ला हमन मानथन, हाँ घलो बोला थन, फिर का हमन वैसने करथन का नहीं करन। एकर बर खान पान बहुत जरूरी है, ऐसन खान पान जेहन नह पोषण ले भरपूर रहे, जेमा जम्मू प्रकार के पोषक तत्व के जिनिस मिलत रहे।
0: और घर के जन दुआरी है हमर, हमर बारी बखरी है, ओमा जरूरी मौसमी फल फलहारी साग भाजी जोन हवा वो हमर तीर यदि हवा तो हमार बर हमार शरीर बर बड़ लाभ के परिवार बर।
1: हाँ। देख कैसन का होते के ये जम्मू बात के तो हमन गुड बात कर लेन, लाभ भी का कहे तेनो हमला मालूम करना पड़ी, कबर की लाभ ला जानबो तबो को थी हमन काम करबो। ये पोषण जिन वाटिका है जला हमन गृह वाटिका घलो के थन, इमा स्वास्थ्य खातिर ताजा साग भाजी हमन मल्ला मिल जाते। और घर द्वारी में लगाए के सेती ओमा जिन कीटनाशक है ना वो रहित होते, माने उनमें कीटनाशक नहीं रहे,
0: हाँ, देख
1: वो पूरा पूरा जैविक
0: रहे
1: थे। हाँ हाँ, पोषक ले वो भरपूर गलो मिलते वो।
0: और देख दीदी, हम पोषण वाटिका के हमार जो गृह वाटिका के हम गोट कर रथन, तय हर हमार पर सिर्फ हमार परिवार के हमार जो स्वास्थ्य के ध्यान ही रखे, हमार आर्थिक ध्यान गलो रखते के थन। आर्थिक बचत के हिसाब ले हमार जो घर के बजट हवे, हाँ एकर हिसाब ले भी हमार लाभ के है, ज्यादा पैसा नहीं लागे हमला एकर। हम गृह वाटिका में अगर कुछ लगात भी हैं तो हाँ रोज की जरूरत के हिसाब ले हमला साग भाजी मिर्चा धनिया टमाटर भाजीपाला जोन भी चीनी से बोला हम ओकर खातिर हमला बाजार नहीं जाए लागे, तो भाई ओकर बिसाए के जोन पैसा है बाँचीस तो हमार बर तो आर्थिक लाभ आई छे।
1: हाँ बिल्कुल सही गोट करे लक्ष्मीकांत। ये जम्मो जिनिस के होले हमर घर के तीर्थकार के जोन वातावरण है तेनो हरा भरा शुद्ध रही थे।
0: अब देख हमर घर में तो कतकुन काम बूता लगे रही थे, खेती किसानी के संग्रह घर में गृह वाटिका माने जोन हम गोठियावत हन हमर पोषण वाटिका एकर बने ले हम बेरा के जोन थोकन उपयोग हो जाते हैं हमला। हाँ। कि हम खाली समय में अपन का करन सोचथन तो हम अपन खाएन पियन आराम करन ओकर बाद जोन भी समय बांचे तेला वहाँ बीतान।
1: हाँ अब भाई अपन शरीर भर तो करत हन, ओकर जतन गृह वाटिका के या पोषण वाटिका के जतन माने हमार खुद के जतन है ना, अपन खान पान के तो हमला ध्यान रखना ही पड़ी। और घर के काम बूता के संगे संग पोषण वाटिका के जतन हो जाते। और सबले बड़ी बात का है मालूम है, शारीरिक कसरत हो जाते। अब तब घर में बोलबे तो जरूरी जरूरी जिनिस लग करबे ओकर बाद कुछ नहीं काम रहे, ढेरिया बैठ जाबे। लेकिन गृह वाटिका पोषण वाटिका लगाए ले समय के उपयोग तो होते छे, संगमा हमार शारीरिक कसरत हो जाते। और आजकल के बेरल देखबे ना लक्ष्मीकांत, ता देख अभीच के बेरल देख मौसम में कतका कन उतार चढ़ाव आवत है, बिन मौसम बरसात हो जाते है ना, तो जेउन हमार खान पान है तेनो बदल जाते। और हमन मल्ला तो ये कहना चाहिए कि मौसम अनुसार हमन मल्ला खान पान लेना चाहिए। अब अभी के बेरा में गुड बात करन तो भाई जुन्ना सियान मन है चाहे लड़का मन है, मत सब्जी मन मिठाई नहीं धरे, सबले पहले पूछते का साग रांधे हस है ना। तो भाई ऐसन है कि साग में जब स्वाद नहीं रहे, और पहली के बेरा में देखना पहली के बेरा में का रहे मिर्चा और पताल के चटनी घनों बार तेनो मिठावे अब्बड़
0: सिरतुन कहा था बड़ मिठावे। और ओकर कारण का है जानता दीदी
1: का?
0: देख अभी के बेरा में देखथन तो ज़्यादातर संगी मन है रासायनिक उर्वरक खातों के उपयोग बहुत बढ़वार में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, ज़्यादा उत्पादन खातिर कीटनाशक के जो रसायन के उपयोग हुआ थे वो आज के वक्त में हमार जो नुकसान के कारण बना थे। हमार स्वाद है तो नहीं समझ आए कि कहते छस, फिर ओकर ले हमार शारीरिक स्वास्थ्य ल भी नुकसान होते रासायनिक खाद।
1: और दूसरा का है मालूम लक्ष्मीकांत,

0: सतर्क रहिए।
1: लक्ष्मीकांत, सिंचाई के गुड़ बात करें अभी, है ना, कि भाई बने पोषण वाटिका में सिंचाई मिले तो हमारे जिन फसल है, साग भाजी के उत्पादन है, बने ढंग ले हुई। अभी के बेरा मा, माने गर्मी के बेरा मा, हम देखथन कि पानी की किल्लत बहुत होते।
2: बहुत
1: ए बखत मा हमन मल्ला अपन जिन पानी के स्रोत है ना, जैसे कुआं, नरवा, तरिया, ये जम्मो जगह के हमला जतन करके पहली ले रखना चाहिए। माने जैसे बारिश के पानी आते ना, तो वही बखत ले हमन ला ओकर जतन के शुरुआत कर देना चाहिए। तो जैसे अटके सटके बेरा गर्मी के दिन में उही पानी हमन मन के
2: हमार पर काम के होते, और भूजल स्तर है तो गिरते जाते हमर। हाँ। जो है ना हमला एकर तरफ हमर विशेषज्ञ मन भी एकर पर बताते।
1: हाँ।
2: तो एकरे ले जुड़े सुघर गीत ला सुनथन दीदी। हमार गावा थे चतुर राम साहू कांति यादव गीता भट्ट मन।

0: संगवारी हो सुघर गीत सुनत रहें जिन लगाए रहीन चतुर राम साहू कांति यादव गीता भट्ट मन।
1: और लक्ष्मीकांत।
0: हाँ दीदी।
1: पानी के बचत के गोट अमर संगवारी मन अभी सुनी है। और पानी ले भाई भुइया ही पानी ले खेती किसानी घलव है। और ये खेती किसानी में हमन कतको रुख राई लगल लगाथन फसल लेथन कतको जतन करन तभो ले कभू कभार रोग राई तो लगी जाते। और बेरा रहा जब हमारे मतलब ओकर लक्षण नहीं मालूम रहे कि ये कौन से रोग है एक उपचार का होही तो हमन कैसे जतन करबो। त समय में फसल में रोग राई के पहचान कौन ढंग से हम आसान घरेलू तरीका से कर सकथन एकर बारे में आज हमन जानकारी बापू जानकारी देवत हैं डॉक्टर सोनल चंद्राकर आप मन सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा ले हवो। तो सुनथन ये वार्ता। संगवारी हो हम फसल तो लगाथन फिर फसल लगाथन तभो भी कतको भी बचाव करे के बाद घला हमर फसल में रोग लग जाते। ये रोग के पहचान हम कौन ढंग से करन और ओला भी आसान घरेलू तरीका से हम कौन ढंग से पहचान सकथन जेखर ले हम बेरा रहत ओकर निदान कर सकन। तो संगवारी हो आवो ई विषय ले जुड़े जम्मो जानकारी ला आज हम पाबो हमर विशेषज्ञ मन ले। हमर संग में आज जुड़े हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल कुमार चंद्राकर आप मन सहायक प्राध्यापक पौध रोग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा पाटन ले हो।
2: किसान साथियों हम मेहनत से फसल बोते हैं खाद देते हैं सिंचाई करते हैं लेकिन कई बार अचानक फसल मुरझाने लगते हैं पत्तियां पीली हो जाती है धब्बे दिखने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रोग है और क्या उपचार करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी विषय पर फसलों में रोग पहचान के आसान घरेलू तरीके ताकि आप समय पर सही निर्णय ले सके और नुकसान से बच सके। रोग पहचान जरूरी क्यों है किसान भाइयों? अगर रोग की पहचान गलत हो जाए तो गलत दवा का छिड़काव पैसा बर्बाद फसल को और नुकसान हो जाता है। याद रखिए सही रोग पहचान से सही उपचार होगा कम खर्च होगा और साथ ही साथ ज़्यादा उत्पादन होगा। फसलों में मुख्य रोग कितने प्रकार के होते हैं? फसलों में चार प्रकार के रोग होते हैं फफूंदी जनित रोग जीवाणु जनित रोग विषाणु जनित रोग और कुछ बीमारियां होती है जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अब आइए इन्हें घरेलू तरीकों से पहचानना सीखते हैं। फफूंदी जनित रोग की पहचान फफूंद रोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मुख्यतः फसलों में होने वाला प्रमुख रोग होता है ये। पहचान के लक्षण हैं पत्तियों पर भूरे काले या सफ़ेद धब्बे बनते हैं पत्तियों पर तनों पर फफूंद जैसी परत दिखाई देती है जैसे आपको फफूंद पाउडरी मिल्डू या जिसे हम फफूंदी रोग कहते हैं जड़ या तने का सड़ना फल या फूल पर गलन। घरेलू पहचान तरीका क्या है? सुबह सुबह आप देखेंगे पत्तियों पर तो आपको ओस के साथ सफ़ेद या भूरे जैसे कुछ धागे नुमा फफूंद या कवक दिखाई देंगे तो समझिए यह बीमारी फफूंद के कारण हुआ है। इसका कुछ उदाहरण है लीफ में धब्बा बनना पत्तियों का झुलसना पत्तियों पर सफ़ेद फफूंद का बन जाना। ये सब बीमारियों को रोकथाम के लिए हम कवकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। जीवाणु जनित रोग की पहचान ये रोग अक्सर अचानक फैलते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों पर पानी जैसे धब्बे बनते हैं पत्तियां दबाने पर चिपचिपा रस निकलता है और उस रस के साथ बैक्टीरिया का जीवाणु का दुधिया पदार्थ भी निकलता है साथ में पूरा पौधा अचानक मुरझा जाता है कटे तने से दूध जैसा द्रव निकलने लगता है। इसे कैसे पहचानें? इसे पहचानने के लिए हम तने को काट कर साफ पानी में डालते हैं। अगर साफ पानी में उस तने से यदि दुधिया लकीरें पानी में फैले तो जान लीजिए यह जीवाणु के कारण हुआ रोग है। उदाहरण इसके कुछ उदाहरण हैं आपका उकठा झुलसा जो कि जीवाणु के कारण होता है साथ ही यहाँ पे पत्ती का झुलसा भी इसके कारण होता है। इसको रोकथाम के लिए मुख्यतः हम जीवाणुनाशी का उपयोग करते हैं। इसके बाद है विषाणु जनित रोग की पहचान। वायरस रोग का कोई सीधा इलाज नहीं होता है इसलिए इसकी पहचान बहुत जरूरी होता है। वायरस रोग को मुख्यतः पौधों पर पत्तियों पर पीले हरे छितकबरे निशान या पत्तियों का मुड़ना मुरझाना ऊपर नीचे होना पौधा बौना रह जाना जो उसका जो प्राकृतिक जो हाइट ऊंचाई है उसका ना हो पाना, साथ में ही उसमें फल फूल कम लगने लगते हैं। घरेलू पहचान का तरीका क्या है? अगर दवा डालने पर भी रोग ना रुके और साथ में ही उस पौधों के आसपास आपको किसी भी प्रकार की कीड़े जैसे माहू, सफ़ेद मक्खी, जेसिड दिखाई दे, समझिए यह वायरस रोग है। इसके कुछ उदाहरण हैं येलो मोज़ेक, पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियों का मुड़ जाना, ये मुख्यतः आपको भिंडी, आपका मिर्च, ये बीन्स, आपकी जो बीन्स वाली फसलें होती हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसके बाद आती है पोषक तत्व की कमी की पहचान। पोषक तत्व की कमी की पहचान की लक्षण भी बीमारियों के समान ही दिखाई देता है। फार्मर्स किसान भाई कभी कभी इसको बीमारी है समझकर इसके विरुद्ध कवकनाशी या जीवाणुनाशी का उपयोग कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसकी मुख्य लक्षण इस प्रकार है, हर पीली पत्ती रोग नहीं होती, पहचान के लक्षण हैं, पूरे फसल में एक जैसी समस्या दिखाई देती है, साथ में पत्तियां पीली लेकिन धब्बे नहीं बनते हैं उसमें, नई या पुरानी पत्तियों में फर्क दिखाई देता है। साथ में यह यदि आप आपके खेत में या फील्ड में देखो तो यह एक समान रूप से आता है, जबकि यदि बीमारी के कारण कुछ पीलापन हो रहा है तो वह कुछ पौधों में दिखाई देगा, कुछ पौधों में नहीं दिखाई देगा। तो पोषक तत्वों की कमी होने वाले लक्षण आपके जो फील्ड में, आपके खेत में जो लगा हुआ है प्लांट पौधा, उसमें आपको एक समान रूप से दिखाई देता है। इसकी घरेलू पहचान क्या है? यदि खेत में कोई सड़न नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है और आपके खेत में जैसे पहले बताया मैं एक समान लक्षण दिखाई देता है तो यह जरूर पोषक तत्व की कमी है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन होता है, जिंक होता है, आयरन की कमी, ये सब न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है आपके विभिन्न लक्षण दिखाई देती है। रोग पहचान के 5 सुनहरे नियम हैं। पहला तो खेत का नियमित निरीक्षण करें। निरीक्षण का तात्पर्य यह नहीं कि आप खेत गए, मेड़ के पास खड़े हैं, 2-4 पौधे देख लिए, हो गया, ऐसा नहीं। खेत में आपको उतरना है, पौधों के बीच चलना है। उससे क्या होता है कि हमको रियल में जो यदि पौधों के निचले हिस्से में भी कोई यदि बीमारी हो रहा है तो हमको वो दिखाई देती है, अन्यथा बीमारी हमें तभी दिखाई देगी जब उसमें मृत्यु होगा या उसमें पौधा मरने लगेंगे, तब तक आप ये बहुत लेट हो जाएगा और आप उसका नियंत्रण करने में कठिनाई होगी। साथ में ही रोग को शुरुआत में ही पकड़ें। यदि आप शुरुआत में ही रोग को पकड़ लेंगे तो इसको नियंत्रण करना आसान हो जाएगा, इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। 1-2 पौधे नहीं, पूरे खेत को देखें। शक हो तो कृषि वैज्ञानिक से सलाह ले, कृषि केंद्र से सलाह ले, कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ले,

0: उच्च सैंपल्स को प्लांट्स को उखाड़ कर नज़दीकी संस्था पे जाए, कृषि महाविद्यालय में, उद्यानिकी महाविद्यालय में, और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से उसके बारे में चर्चा करें कि उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी तो नहीं लगा है या पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। और साथ में बिना पहचान के दवा का छिड़काव ना करें, क्योंकि आप दवा छिड़क रहे हो चीज़ पौधों में जो बीमारी है किसी और के कारण है, आप दवा किसी और का डाल रहे हो, तो आपसे आपको इससे पौधों को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आपकी लागत बढ़ेगी और आपके जो कुल उत्पादन है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि आप गलत दवाई छिड़कोगे तो आपके उत्पादन में आपका जो यील्ड आना चाहिए, जो उत्पादन होना चाहिए, वो नहीं होगा। किसान साथियों, फसल हमारी मेहनत की कमाई है, अगर हम रोग को पहचानना सीख जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। याद रखिए, समय पर पहचान, सही उपचार और सुरक्षित खेती।
1: चंद्राकर जी, आप मन हमर संगवारी मन ला अतका उपयोगी जानकारी देओ कि कौन ढंग से हम फसल मा होए रोग के पहचान ला कर सकथन और वह घरेलू आसान तरीका ले, और जब हम सही बेरा मा रोग के पहचान करबो तो ओकर निदान घलो हम जल्दी कर पाबो, कुल मिला के जो हमार मेहनत है तेना खराब नहीं हो ही। तो संगवारी हो, ये उपयोगी जानकारी से आप मन निश्चित ही लाभ ले हो। सर, आप मन आए हो हमारे संगवारी मन ला जानकारी दे हो, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई कृषि विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।
2: संगवारी हो, अभी सुघर जानकारी ला सुनत रहें फसल में रोग के पहचान के आसान घरेलू तरीका। अब जानकारी ले सुने ले हमला हमार पर लाभ के होते, हमार विशेषज्ञ सुघर बतावत रहिन हैं कि हम गलत रोग रही के पहचान करके गलत दवाई डारथन तो हमार आर्थिक नुकसान हो सकते हमला, और हमार जोन रोग हवा है जिला हम पहचान नहीं पाएन होकर निदान भी हम गलत तरीके ले करथन। तब सुघर सुघर जानकारी हमार विशेषज्ञ हमला देवत रहते। अभी के जानकारी ले हमार देवत रहीन डॉक्टर सोनल कुमार चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सांकरा दुर्ग ले।
1: अब संगवारी मल्ला हमन सूचना बता देतन जिन जुड़े है हमर क्रम हेलो किसान वाणी। संगवारी हो, अवैया मंगलवार 19 मई 2026 के प्रसारित होने वाला जो क्रम है हेलो किसान वाणी कार्यक्रम, एकर ये बखत के विषय है धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। ये विषय में आप मन अपन समस्या जिज्ञासा के समाधान खातिर हमन ला स्टूडियो में फोन कर सकते हो। हमारे स्टूडियो में ये कार्यक्रम पर विशेषज्ञ रही मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप मन अपन जिज्ञासा शंका के समाधान पाए खातिर हमारे मनला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है 400-3482, दूसरा यह टेलीफोन नंबर है 400-3483, और तीसरा यह टेलीफोन नंबर है 400-3484, और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक के करे जाही, और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 बजे करे जाही। संगवारी हो, हमन मल्ला आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही सूचना यहीं तक।
2: दीदी, हमारा कृषक प्रश्न मंच के बेरा हुआ थे, तो कृषक प्रश्न मंच में संगवारी मन ला झटकुन आज के प्रश्न बता देतन। संगवारी हो, आज के प्रश्न ला झटकुन लिख लो।
1: आज के हमारे प्रश्न है फसल मा मुख्य रूप ले कतका प्रकार के रोग हो सकते, एक घाव और लिख ले वो संगवारी हो, कोनो छूट गई हुई था। हमारे प्रश्न है फसल मा मुख्य रूप ले कतका प्रकार के रोग हो सकते, और सही जवाब आप मल्ला आज के दिन माने अवैया इतवार के आप मल्ला हमर क्रम में मिली। सही जवाब खातिर हमर ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। चिट्ठी पाती खातिर हमर पता लिख ले वो, चौपाल प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़।
2: और दीदी, पाछू हफ्ता आज के जोन प्रश्न रही सर जोन सही जवाब दे रही हूँ, नाम पता हम बताथन। ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट प्रबंधन कैसे कर सकथन, संगवारी हुए हमारे प्रश्न रही से, एकर सही जवाब है समय कीट प्रबंधन ले हम इला कर सकथन। और सही जवाब हमर भेजे हैं संगवारी मन नर्मदा धाम सुरसुरी ले हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, केजूराम मालेकर, ठाकुराम, अश्वनी मालेकर हमें मगरलोड जिला धमतरी हमर छत्तीसगढ़ ले हैं, देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, मुकेश रजक, इवान हाविया तन्नू रजक हैं, डुमर टोला मंगचुआ जिला बालोद ले भगवानी राम काटे, कुमारी गोपिका, भावेश माधुरी देवी काटे हैं, अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, गुड़िया और रेयांश ठाकुर हैं, नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा शारदा वर्मा, आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल हैं, हरमो भोरम देव ले जीवन लाल साहू, राजबाई लोकनाथ, वेदिका साहू, जयलाल साहू हैं, नागर कोहरा ले हैं जग्गर राम साहू, बबलू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, आराध्य साहू, बंगला मटिया बालोद ले हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, पीहू, लीना अंगारे, रिंगनी ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लोरमी चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू, भीम खोज तरपोंगी ले हैं संतोष गुप्ता, हितेश गुप्ता, होमेश गुप्ता, रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा, शुभम और सेजल साहू, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, कौशल, अरविंद, मुरली वर्मा, परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुसराणी मसिया, संगवारी मन हमला जवाब लिख के भेजे रही नहीं एक जवाब ले हमारे कार्यक्रम सुघरा थे आप मन सही जवाब भेजे हो एकर खातिर
1: लक्ष्मीकांत ये जम्मो संगवारी मन ला बहुत बहुत बधाई है काबर के संगवारी मन हमारे पिछला जो कार्यक्रम रही से है ना रविवार के जिमे पूछे गए जिन प्रश्न रही से कि ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं है ना तेका सही उत्तर लिख के भेजिए और सही उत्तर है समेकित कीट प्रबंधन ले तो संगवारी हो हमन आशा करथन कि अवैया बेरा में घलो आप मन हमन मल्ला अब बड़कन पाती और ईमेल भेजू तो भाई आपे मन के पाती ले हमार कार्यक्रम सस्ते समर्थे
2: दीदी देख हमार जो छत्तीसगढ़ है मैं फसल विविधीकरण के परंपरा रहीस पहले तहिया के समय में हमार जोन पुरखा के मन के ऋण है किसिम किसिम के अनाज फसल ले अपन बारी मा बकरी मा जमो किसिम के जिनिस उगावे
1: मने कहां तो कोनो भी जिनिस बर कोनो ऊपर अमन नहीं ले रहा है हाँ, अपन काम ला खुदे काट डरन चाहे वो मिर्चा के गोट करें या तो फिर रिकिम रिकिम के दाल होए उरीद होए मूंग चना जम्मू के थोड़ थोड़ खेती कर जमे यहाँ तक के जिन गन्ना हुआ के गुड़ घलो निकाल डरें
2: सिर तो कहा था सब देख छत्तीस के जो हम छत्तीसगढ़ हावे कर जो जलवायु है वह बहुत से फसल बर अनुकूल हावे जैसे मड़िया रागी कोदो कुटकी है ना सावा चीना अब हमार हमन ल एकर जोन मिलेट सकथन हम लघु धान्य है ना मोटा अनाज भी कहते हैं कोनो संगवारी एकर हम उपयोग के हमार विशेषज्ञ हमला बड़ सुघर सलाह देते रही थी अब एकर बर हमार जोन जलवायु अनुकूल भी हैं फिर अब एकर जोन खेती हेते है नंदागिरी से अब वापस आए के शुरू हुआ थे हमार तीन हाँ तब हमार हम कोशिश करन कि हम एला लगा सकथन या एकर बारे में हमला जानकारी नहीं है तो हमार जोन कृषि विज्ञान केंद्र है हमार है ना कृषि विश्वविद्यालय है महाविद्यालय है एकर ले जोन भी तरीका से या हमार हमार जोन कृषि विस्तार अधिकारी होते हमार गाँव के उनका ले जानकारी जुटावन और फिर ले खेती करे कोशिश करन हम आर्थिक लाभ कमा ही सकथन
1: का होते लक्ष्मीकांत देख बेरा भदे बदल जाते फिर का होते जिन जुन्ना संगवारी मन हा जिन पोषक तत्व के महत्व ला जाने पहचाने जुन्ना सियान मन जोन बताते पहले तो खावे फिर अब का है जिन जिन ये मिलेट से मोटा अनाज है तेकर ले रिकिम रिकिम के जीन्स घलो बनाए जा सकते लेजर लेका मन के जिन पसंद का होते बिस्कुट हो गए डोसा हो गए इडली है ना इडली हो गए जब वो रिकिम रिकिम के स्वादिष्ट बहुत तकन हम व्यंजन बना सकत हन और ये शरीर भर फायदा के लाभ के पोषक ले भरपूर तो मन के मन अब जागरूक हो गए हैं और ये कोती बढ़त है
2: और हम छत्तीसगढ़ के जलवायु पर हमार जोन फसल अनुकूल जोन बतात रहे ना गोठियात रहे तो ज्वार बाजरा मक्का गेहूं धान राहेर उरीद तिंवरा चना इसने कतकोन हमारा करा अनाज है दलहन तिलहन है जेकर पर हमार जो हमार जलवायु हवा वो अनुकूल है फिर आज किसान भाई मन विधिकरण ला भुला गए हैं फसल चक्रीकरण ला भुला गए हैं हाँ तो धान के उत्पादन हमार का होते अभी रिकॉर्ड बनावा थे वह बहुत ज्यादा उपज हुआ थे है ना अब एक एला हम ऐसे कह सकते कि हमार आदत पर है कि वही लोग आवत हन तेकर कहन कि हमार जो धान के जो मंडी भाव बढ़वा रहे आर्थिक लाभ होही सोच के करत हन। अब ये तो दूसर विषय हो जाते, फिर हम एक

0: अक्सर लोग आवत हैं जो हमारे माटी पर नुकसान के आते हैं।
1: बिल्कुल सही बात करत हस्ते हैं लक्ष्मीकांत, लेकिन देख संगवारी मन अब जागरूक होत हैं। अब काए भूइया के कहीं हमन मल्ला उर्वरा शक्ति ला बढ़ाना है तो हमन मल्ला बदल बदल के फसल लेना पड़ी। क्या है कि फसल चक्र ला अपना के हम फसल के पैदावार ला तो बढ़ा ही सकते हैं, संग मा अपन माटी की उर्वरा शक्ति ला घलो हम बढ़ा सकते हैं। और ये मा का हो मालूम है, माटी के जिन क्षमता है तेनो बाढ़ी। और माटी के हमन गुड़ बात करे हन तो सुनथन ये मोर धरती मा कौन कौन से हम का उपजा सकथन और मोर धरती महान कैसे हवे, इला स्वर दे हमें गीतला उधोराम साहू और भगवती साहू मन हा।

0: ये सुघर गीत ला गावत रीन है उधोराम साहू भगवती साहू मनहा।
1: और संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे, जाए पहली काली कार्यक्रम बता देथन। काली चौपाल आज के बात में गोठो ही दीर्घकालीन उत्पादकता खातिर प्राकृतिक संसाधन के बचाव। भेंट वार्ता में पौध संरक्षण ऊपर जानकारी दी ही पी रजनी राव, पादप रोग विशेषज्ञ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। गीत संगीत के जन मधुरता है हमार गाँव गली संग चौपाल में तको माही संगवारी हो देव विदा। कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मन ला लक्ष्मीकांत
0: अवनिधि के
1: राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दिल देके देखो, इस फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए सुनिए उम्मीद फिल्म का गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार रवि।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे उम्मीद फिल्म का गीत। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए एक कली मुस्काई, इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं सुमन शुक्ला। पहले सुनिए जियालाल बसंत की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए ईश कुमार ईश की रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी सुमन शुक्ला। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:30 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया और देश के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल का 74वां संस्करण आयोजित किया गया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेडो और डैनियल मार्थिन से 12-21, 23-25 से हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
2: भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड ओपन में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में शुरुआती गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए जूझते दिखाई दिए और इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले गेम को 21-12 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और गेम को आखिर तक खींचा, जहां लगातार 5 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे आखिरकार 23-25 से हार गए। इससे पहले सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गुओ सेफेई और नूर इजुद्दीन को हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल में जगह बनाई थी। सात्विक और चिराग तीसरी बार थाईलैंड ओपन के खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। इससे पहले वे साल 2019 और 2024 में इस खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स।
0: शायद उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खिताब जीतने पे होती, लेकिन कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे एक शानदार टूर्नामेंट और एक शानदार प्रदर्शन भारतीय स्पेयर की तरफ से।
1: शक्ति, ये तो जीतना चाहिए था। दो कारण, एक तो फॉर्म में थे और टॉप सीडेड हैं, सो बस का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी उम्मीद थी ये जो है ये जोड़ी जीतेगी और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। हालांकि टॉमस कप में ब्रॉन्ज मिला, बट फिर भी इस वक्त मैं कहूँगा कि एक अच्छी बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों। पर हाँ, आप इस जो क्रूशियल मुकाबला था उसमें पीछे रह गए।
0: जी, पीछे रह गए, क्योंकि हमने इस जोड़ी के साथ देखा पिछला वर्ष भी जिस तरह का रहा, एक फाइनल था खाली, लेकिन इंजरीज ने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे एक रोल अदा किया है, क्योंकि चिराग शेट्टी या साईराज में से कोई भी एक खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है तो फिर पेयर बिगड़ता है और वो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं जाता है। तो कह सकते हैं कि इंजरी जो पिछले साल हुई इन खिलाड़ियों के साथ लगातार, जिसने साथ नहीं छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अभी भी लय तलाशने में दिक्कत कर रही हैं।
1: हाँ, पर वापसी तो हो ही गई थी। थॉमस कप में परफॉर्मेंस अच्छा था, तालमेल भी अच्छा था। पर ये आपने बात सही कही कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपके मन में एक वो डर रहता है कि फिर से इंजर ना हो जाऊं, क्योंकि उस लेवल पे इंजर्ड होना और इंजरी से वापस आना बहुत कठिन होता है।
0: जी बिल्कुल, और ये तो डबल्स की बात रही। अगर हम सिंगल्स की बात करें इसी प्रतियोगिता में, पीवी सिंधु शुरुआत में बहुत अच्छी लय में नजर आई, एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक अच्छे एंड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, चाहे वो लक्ष्य सेन हो सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर बाहर होना। सिंगल्स में वो किताबों का सूखा काफ़ी हद तक नज़र आता है, क्योंकि एक दौर आया बीच में भारत में जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार पार्टिसिपेट करते थे और टाइटल्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब टाइटल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पूल तो बड़ा है लेकिन वो मेडल्स में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है।
1: जी हाँ, डबल्स में आप देखिए ना, 2024 में जीते थे यही जोड़ी, और आपने ये बात सही कही, सिंधु तो बहुत निराश कर रही हैं, उनको अपने गेम के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा।

0: कितना और खेलना चाहेंगी वो, क्योंकि बार बार हारना मतलब उनके रिपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं में अगर आप देखें, नेहवाल और सिंधु, इन्होंने इंडियन बैडमिंटन को एकदम कहाँ से कहाँ
1: जी
0: पहुँचाया है।
1: बिल्कुल,
0: फिर जब वो शुरुआत में हार जाती है पहले दौर में दूसरे दौर में, तो बहुत ख़राब लगता है। और लक्ष्य सेन तो खिलाड़ी हैं इसमें, जो जो पिछले मान लीजिए 10 साल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए हैं। ऑल इंग्लैंड जीतना चाहिए था, ओलंपिक में चूक गए, पर वो यंग हैं अभी, उनके साथ उम्र है। सो आप उम्मीद रख सकते हैं इस सीज़न में अपनी लय पालेंगे।
1: जी बिल्कुल, हमने सीनियर्स खिलाड़ी की बात की, अब कुछ बात नए उभरते खिलाड़ियों की भी हो। जहां भारत की श्रेयांशी वल्ली शेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, सुपर 100 टूर्नामेंट है बहरहाल, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के लिए काफ़ी कुछ देके जाएगा यहाँ से।
0: सीखा होगा बहुत, क्योंकि आप ये एक एक समझ लीजिए शक्ति, कि वर्ल्ड बैडमिंटन में चाइनीज हमेशा स्ट्रांग होते हैं,
1: जी
0: चाहे किसी भी लेवल पे हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सिंगल हो, डबल्स हो, और यहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट।
1: जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक जो नई पौध इंडियन बैडमिंटन की यहाँ पे खड़ी हो रही, जिसमें उन्नति शर्मा हैं, जिसमें उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, ऐसे उन्हीं सूची में अपना नाम दर्ज कराती हुई श्रेयांशी भी। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी।
2: धर्मशाला में आज क्वालिफिकेशंस का औपचारिक मार्ग हासिल करने की उम्मीद लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर ने वेंकटेश अय्यर की 40 गेंदों पर नाबाद 73 रन और विराट कोहली के 37 गेंद पर 58 रन की बदौलत 4 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरप्रीत बरार ने पंजाब के लिए सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 223 रन का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। टीम के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि मार्कस स्टोनिस और कूपर कॉनली ने 37-37 रन का योगदान दिया। लेकिन ये पारी पंजाब को विजय लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रही। आरसीबी के लिए रसिक डार ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। ये पंजाब की सीजन में लगातार 6ठी हार है, जबकि आरसीबी ने 13 मैचों में 9 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और औपचारिक तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अधिक बात की जाए पहले मुकाबले पे, ये जो प्लेऑफ की 4 सीटें हैं इस पे एक सीट पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैठ गई है, अब 3 के लिए दावेदारी है,
0: जिसमें मुझे लगता है हैदराबाद और गुजरात को आप गिन सकते हैं, मतलब
1: जी
0: रेस में तो है ही हैं, और राजस्थान को भी जीतने पड़ेंगे दोनों मैच। लेकिन आप शक्ति, आप सोचिए कि पंजाब इतनी बेहतरीन शुरुआत और एकदम जो है जो डिक्लाइन आया है कि आप 6 मैच हारते हैं लगातार उस लेवल पे, जब आपके फैंस आपसे उम्मीद रख रहे हैं और टीम की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, आपके पास एक बहुत अच्छा कप्तान है, पर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये 6 मैच लगातार आप हारते गए?
1: जी बिल्कुल, और जिस तरह की शुरुआत हुई थी, पंजाब सीजन में फेवरेट्स मानी जा रही थी, आपने 6 मैच खेले, एक बारिश के कारण धुला, लेकिन 5 में आपकी जीत और अब 6 हार, कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन पे अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे, जब तक आपकी 5 हार थी आप टॉप 4 में थे, लेकिन आज आपने वो टॉप 4 का स्थान भी गंवा दिया है। आज की अभी के मुकाबले की बात की जाए, दिल्ली कैपिटल्स डू और डाई मैच है नो डाउट। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से एक ऐसी टीम रही है जो सितारों को नहीं लेती है, सितारे बनाती है, एक टीम से बढ़कर एक एकेडमी है, और युवा खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टीम उस रेस में कितनी करीब और कितनी दूर पाई जाती है जो प्लेऑफ के लिए जारी है?
0: प्लेऑफ के लिए तो रेस में तो है राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर वो जीत जाती है अपने मैचेस तो टॉप 2 में आ जाएगी, उम्मीद रख सकते हैं। और फिर वही बात, उनके पास बैटिंग, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है राजस्थान के पास, सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी है जो अपने दम पे निकाल देता है मैच, और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है टीम का। सो मैं समझता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल मैच होगा दिल्ली के साथ।
1: जी बिल्कुल, और दिल्ली भी उम्मीद करेगी कि इतना जल्दी अपने सफर को समाप्त

0: होने दिया जाए और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी संभावनाओं को आगे के लिए जिंदा रखा जाए। अहमदाबाद के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने एक रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में पांचवा स्थान हासिल किया। उन्होंने कुल 386 किलोग्राम का भार उठाया, जिनमें से स्नैच में 174 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का भार शामिल था। चैंपियनशिप में भारत के लिए पदकों की शुरुआत कोमल कोहर ने महिला वर्ग के 48 किलोग्राम के क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीतकर की थी। इसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्नैच में रजत और कुल भार में कांस्य पदक अपने नाम किया था। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था, जबकि कल संजना ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 3 कांस्य पदक जीते थे। पुरुष वर्ग में अजीत नारायण भारत के लिए पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। उन्होंने पुरुषों के 71 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीते। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: एक बहुत लंबे इंतजार के बाद गुजरात को भारत को मेजबानी मिली थी, क्या इससे प्रदर्शन कुछ और बेहतर हो सकता था? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, 10 पदक हमारी झोली में आए। मीराबाई चानू नहीं थी इस दल का हिस्सा, इतनी बड़ी खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद भी क्या, क्योंकि होम कंडीशंस थी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पक्ष में थी, कई बड़े देश कंपटीशन से बाहर थे, क्या और बेहतर की उम्मीद थी?
2: आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईरान जो सुपर हाउस पावर हाउस माना जाता है वेट लिफ्टिंग का, उनकी 2 ही एंट्री थी, जिन कारणों से मालूम है आपको वॉर सिचुएशन। पर भारत ने 10 मेडल जीत के अच्छा ही किया है, कम से कम आप आगे देख सकते हैं गर्व के साथ। और अजीत ने तो मतलब बहुत समय के बाद 2011 के बाद भारत को एक जो है मेडल दिलाया है। और मैं समझता हूँ लवप्रीत का जो पांचवा स्थान है वो आप अगर फील्ड देखेंगे जो उनका ग्रुप था उसमें बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और मैं ये आगे के लिए आपकी अच्छी तैयारी है जो जिससे उम्मीद की जा रही थी। आप देखिए मीराबाई नहीं थी शुरू में, एक बड़ा एक झटका लगा था भारत को, पर जो उम्मीद थी बाकियों से वो उस पर पूरे खरे उतरे।
0: जी बिल्कुल, उम्मीदों पे खरे उतरे। और एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि काफी युवा खिलाड़ियों जैसे कोमल का जिक्र किया जाए, बेहद कम उम्र की खिलाड़ी हैं, मीराबाई की जगह पर आई और एक पदक लेकर के जा रही हैं, 2 पदक, और कई नेशनल रिकॉर्ड हमने टूटते हुए देखे हैं या इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। तो कह सकते हैं कि आने आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एक बेहतर उम्मीद जगी है इस आयोजन से।
2: बिल्कुल जगी है। और देखिए ये सब ओवरनाइट नहीं है, तैयारी हो रही है, जा जाके बहुत इनकी ट्रेनिंग होती है, बाहर भी जाके कैंप करते हैं, भारत में इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा संकेत है और आप उम्मीद रख सकते हैं इन खिलाड़ियों से।
0: जी बिल्कुल, उम्मीद होगी आने वाले बड़े आयोजनों में जहां पे ये खिलाड़ी कुछ और पदकों के साथ देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 74वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दिल्ली में जीएसटी और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको जहां भी जब भी मौका मिले साइकिल जरूर चलाएं।
3: हम लोग हर संडे इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। साइकिल आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जहां हमें न केवल फिटनेस पे ध्यान देना है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हमें ईंधन भी बचाना है, तो साइकिल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, साइकिलिंग जरूर करें।
0: तो नए नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं साइकिल से, कि पर्यावरण, इकोनॉमी और फिटनेस एक साथ कई सारे निशानों पे तीर साधती हुई है साइकिल।
2: जी हाँ, और शक्ति मुझे तो याद आता है समय कि जब बहुत साइकिलें देखने को मिलती थी सड़क पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन लोग साइकिल करते थे। जैसे अभी हमने सुना फिटनेस के लिए ज़रूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक अच्छी आदत है। और ये तो बहुत लोकप्रिय हो गया है, जो संडे साइकिलिंग है पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय है ये।
0: जी बिल्कुल, और संडे की सुबह सुबह शहर की सड़कों पे लोग अपनी नींद और बिस्तर को छोड़ के साइकिल लेके उतरते हैं और अच्छे संदेश के साथ अपनी सेहत के लिए भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां तीसरी नेशनल डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में विलवन सेंथिल कुमार

0: कृष्णा चिन्नप्पा ने दोहरी जीत हासिल की। उन्होंने अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल पुरुष और महिला डबल्स के खिताब जीतने के बाद एक साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया। टॉप सीड वाली जोड़ी ने अभय और सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरी बार मैच डबल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंथिल कुमार और जोशना ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता और जोशना राधिका ने महिलाओं के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी तमाम खबरों के साथ। विजय, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
2: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
5: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
0: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में

आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता V.D. सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे अवतार फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। दिल भी तेरा हम भी तेरे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं के.एल. परदेसी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना न भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए चोरी चोरी फिल्म का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी इस फिल्म का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए सुनिए आंसू बन गए फूल इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं गोविंद मुनीस, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आए मिलन की बेला, इस फिल्म का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए 10 नंबरी, इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे 10 नंबरी फिल्म का गीत। गीतकार थी मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए अपना देश इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवा रिजवी, संगीतकार ओपी नैयर।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mohotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mohotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mohotsav Goa, Gunjan Sangeet Mohotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-grade artist for Indian classical flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar. Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight, Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Drutagat, set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adhiya,

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in